0: achieve so much, and they keep going. They go at a pace that's unstoppable.
1: In rugby with Shift 4, Don Tricker is returning to New Zealand Rugby as the High Performance Director. He held a similar role between 2010 and 2018 and has spent the past 5 years at Major League Baseball side the San Diego Padres in the US. And in football, Manchester City's Premier League title hopes have been dented by a 3-3 draw away to Everton this morning.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: वेदर के हालचाल जान लेते हैं. 19 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 15 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला, 20% चांस है बारिश के आज, लेकिन 5:33 पीएम पे होगा आज का सनसेट.
3: द बीट ऑफ बॉलीवुड
5: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: लंच बॉक्स विद केतन.
6: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
3: लंच बॉक्स विद केतन.
4: नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच वॉक शो में. ट्यूसडे इट इज एंड बहुत ही खूबसूरत दिन है आज भी. यार ये लास्ट का हफ्ता और इस हफ्ते की शुरुआत जो है काफी खूबसूरत हुई है. नो डाउट थोड़ा क्लाउड्स हैं, लेकिन फिर भी बारिश जो है वो कम हुई, यानी कि आपके गार्डन्स को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी इस बार. मैनुअली आप पानी डालिए और एकदम मस्त शावर दीजिए उनको. बट यस, बने रहिए, मेरा नाम केतन है. अभी से लेके 3 मिनट तक मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे अपडेट भी देने हैं आपको. सो यस, इस आर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मैं बताऊँगा. वेल यस, सबसे पहले तो आप मुझे एक ऐसे कंटेंट की बात बताइए जो मैं आपसे थोड़ी देर में जाना चाहूँगा, जो कि है होम सिक रेमेडीज़. उस लिस्ट के साथ रेडी रहिए, बिकॉज उसमें बात करेंगे ऐसी चीज़ें जो आप मिस करते हैं बीइंग फ्रॉम योर एनी सिटी और कंट्री यू आर फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ आप मिस करते हैं. तो डू लेट मी नो, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग. और उसके बाद ऑफिस शाउट आउट की भी बात करेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए. कुछ गाने ऐसे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, मैं डेडिकेट करूँ आपको, तो यस डू लेट मी नो, आप मुझे भेजिए. एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें. बट एंजॉय करिए गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए.
3: बचाओ क्या,

की है, वेल कोई मेमोरीज हैं आपकी जुड़ी हुई जो आप अपने शहर से या अपने देश से कनेक्टेड हैं? वेल मेरे लिए तो काफ़ी कनेक्टिंग है ये, बिकॉज 5 मई से ऑफिशियली हमारे लिए समर की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाती थी, और यानी कि बीइंग फ्रॉम इंडिया, राजस्थान उदयपुर में हमारे स्कूल्स जो हैं वो 3 या 5 व्हाटएवर द लास्ट फ्राइडे इज, तो तब से होता था। तो यस, आज के दिन देखिए 5 तारीख है, मंडे इट इज़, सॉरी ट्यूसडे इट इज़, बट 5 तारीख से हमें जो पहला मंडे आता था तब से हमारी छुट्टियां शुरू हो जाती थी गर्मियों की, जो एंड ऑफ जून तक होती थी। फिर जो भी फर्स्ट मंडे आ रहा है इन जुलाई तब से हमारे स्कूल शुरू होते थे, यानी कि 2 महीने के लिए मजे ही मजे। तो ये मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है, बट आप भी मुझे बताइए आपकी क्या मेमोरीज जुड़ी हुई है आज की तारीख के हिसाब से। बट यस, होम सिक रेमेडीज में आपका स्वागत है, और यहाँ पे बात करते हैं जो मैसेजेस आए हैं मुझे, आपने मुझे भेजे हैं, दैट व्हाट इज वन थिंग यू मिस अ लॉट बीइंग फ्रॉम एनी सिटी और वट एवर कंट्री यू आर फ्रॉम, चाहे फीजी हो, इंडिया हो, या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से या पाकिस्तान से आप मुझे सुन रहे हैं, एज एन अगर आप वहाँ से हैं तो मुझे बता सकते हैं, और जो आपने भेजे भी हैं। पूजा कहती है, ऑनेस्टली व्हेन आई गेट सिक हियर आई जस्ट मिस माय मॉम जिंजर टी, आई ट्राइड मेकिंग इट myself बट इट जस्ट doesn't हिट द सेम, आई थिंक द मेन ingredient was हर shouting, ड्रिंक इट while इट्स हॉट, वो भी है, वो भी है। रितेश कहते हैं, मुंबई से हैं ओरिजिनली, कहते हैं कि बैक होम द सेकेंड आई स्नीज समवन वुड गिव मी अ टर्मरिक मिल्क हियर, आई हैड टू गूगल द रेसिपी बट बाय टर्मरिक एंड स्टिल एंडिंग अप मेकिंग समथिंग दैट टेस्टेड वेरी सस्पिशियस, दैट्स सो नाइस। उसके बाद कविता कहती हैं, व्हेन आई वाजंट वेल इन फीजी माय ग्रैंडपा यूज्ड टू मेक दिस हर्बल ड्रिंक एंड जस्ट सिट नेक्स्ट टू मी, हियर आई कैन मेक द ड्रिंक बट ये इट्स द सिटिंग नेक्स्ट टू मी पार्ट आई रियली मिस, दैट्स सो नाइस यार। सबने सिकनेस के बारे में आज ही मैसेज भेजा है। हेंडरसन से अर्जुन है, दिल्ली ओरिजिनल से हैं ये, कहते हैं कि एट होम बीइंग सिक मेंट फुल VIP ट्रीटमेंट, नाउ इन ऑकलैंड आई एम सिक एंड स्टिल रिप्लाइंग टू ईमेल्स लाइक नथिंग रॉन्ग, लाइफ हैज चेंज्ड गाइस। वेल यस, कुछ और मैसेजेस भेजिए यार, ये तो सारे सिकनेस के ऊपर ही है। अच्छा यार, मतलब दिन भी अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यस, सो यस, डू लेट मी नो, आप 555599 भेज सकते हैं मुझे। व्हाट डू यू थिंक? लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हां।

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
2: हम है क्रूगेयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
3: Crewcare offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crewcare also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crewcare on 0800 800 209.
4: At Woolworths, whether it's a Sunday roast or midweek wraps, we've got chicken for every occasion. Now you can grab our fresh chicken thighs, bone in, skin on special for just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
5: Say no to windows crying condensation. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
6: बॉस देखा है ना, अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो। मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो।
7: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है।
6: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना 7 PM ऑनवर्ड्स। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz।
8: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन नीलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दविन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट्स सिर्फ $20 है। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में।
9: सोना संसार पापा टोयोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोयोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
12: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
12: Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
16: Office shout out.
17: वेलकम बैक। ऑफिस शाउट आउट में आपका स्वागत है। वेल यस, कुछ मैसेजेस मिले हैं मुझे, बात कर लेते हैं उनकी। जी हाँ, सबसे पहला मैसेज आया है राज का फ्रॉम मनुकाओ। राज हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट मैसेजेस जो मुझे भेजते हैं। वो कहते हैं जस्ट रैपिंग अप अ हैक्टिक मॉर्निंग एट द ऑफिस, हैवंट हैड लंच येट बट योर शोज कीप मी गोइंग, चीयर्स फॉर द गुड वाइब्स मेट। थैंक यू सो मच राज भाई। वेल जस्ट गिव एन अपडेट, अगर आप नए लिसनर हैं तो मैंने बेसिकली ऑफिस शाउट आउट में क्या करता हूँ, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं रिगार्डिंग आप अकेले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खा रहे नहीं खा रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं, प्लस कहाँ से खा रहे हैं, एज एन कहीं से ऑर्डर किया है या फिर घर का खाना है, प्लस आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे भेज सकते हैं 5599। प्लस किसके साथ खा रहे हैं, अगर खा रहे हैं तो ये भी आप मैसेज करें। प्लस आप कोई स्पेशल गाना अगर डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी को शाउट आउट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो उसी बेस पे ये सारे मैसेजेस आए हैं। वेल यस, दूसरा मैसेज आया है प्रिया का। वो कहती है माउंट रॉस्कल से सुन रही है, एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, ट्राइंग टू स्टे फोकस बट ऑल्सो स्नीकिंग इन सम किचन ब्रेक, जस्ट मेड माई सेल्फ अ क्विक सैंडविच, लव हैविंग हम रेडियो ऑन इन द बैकग्राउंड। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यो केतन, अमन हियर फ्रॉम पापा टोयोटो ब्रो, I'm driving between jobs right now, no proper lunch yet, just grabbing a pie from the dairy, and your energy solid makes the drive way better. क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। बस ड्राइव करते करते ध्यान रखिए अपना भी, और मेक श्योर कि आप फ़ोन कम ही यूज़ करें, और ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, आई नो आप शायद कार चलाते होंगे, मे बी काइंड ऑफ डिलीवरी और समथिंग, बट यस. Hey Ketan, Neha here from Albany. Office life today, finally on my lunch break and enjoying some homemade dal chawal. Your shout outs always feel so real. Keep it up. Thank you so much, Neha ji. Well, aakhri jo message hai, inhone actually dedicate bhi kiya hai. Kaha hai ki ye gana please play karna, to main bata dun kaun sa. But yes, Vijay, not our boss Vijay, not Vijay Pooja wale Vijay, but Vijay this side from Henderson and... working from home today, but honestly missing the office bus a bit. Just heated up leftover and tuning in. Feels like I have got company. Definitely, definitely. You definitely have got company. Just stay connected. Listen to me until 3. Yeah. वैसे आपने कहा है कि please play the song which is one of my favorite. तू ही दिसदा. Oh, तू ही दिसदा. वैसे मैंने सुना नहीं है, but I'll try best to play for you over here. Hopefully. You will love it. जी हाँ, just give me, let me just put it on while I'm responding to you as well. And there we go, that's where we find. Oh, okay, Arijit Singh and Nikita Gandhi ne ye gana gaya hai. Nikita Gandhi, is it? Junita Gandhi's behen? No, I don't know. Well, yes, enjoy kari gana humari taraf se. Only from hum. 104.2 FM.
18: Of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेल यस, रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन ऐप या फिर अपने सिस्टम में, यू नो एनी वे यू वॉन्ट टू गो। अगर आपके घर पे लैपटॉप है या यू नो कुछ iOS प्रोडक्ट है तो उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। बट यस, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए। बहुत सारी चीज़ें हम पॉडकास्ट हो गई, सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं वहाँ पे, आप सुन सकते हैं ये सारी चीज़ें। जी हाँ, वेल यस, अभी हाल फिलहाल आप $100 जीत सकते हैं हर दिन। कैसे? कीवी वर्ड विजर्ड के थ्रू, जो कि एक चर्डल गेम है रो ऐप पे, वो आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट यस, ईच डे हर एक दिन आप गेम खेलिए और वर्ड्स जो है उसे गेस करिए, और जितनी कम गलतियों के साथ करेंगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे टू गेट इन टू ड्रॉ एंड टू विन $100 अ डे। $7,000 तक के प्राइजेस हमारे पास है, इतना पैसा है हमारे पास देने के लिए, तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। और काफ़ी जो लिसनर हैं वो हमारे, हम लिसनर हैं वो जीते हैं ऑलरेडी। आप भी ट्राई करिए और सुनते रहिए।

0: वेलकम बैक। वेल, एक अनफॉरगेटेबल इवेंट होने जा रहा है यहाँ पे, जो एक बहुत ही बढ़िया मेमोरीज के लिए भी बेस्ट है। और प्लस अगर आपको कव्वाली सुनना पसंद है तो हमारे बीच लेजेंडरी आ रहे हैं राहत फतेह अली खान। जी हाँ, बट यस, उन्हें सुनने के पहले ये गाना सुनिए और मैं थोड़ा सा ही चलूंगा और आपको फटाफट से मुझे लाइन भेजनी है। इसके जो लिरिक्स हैं उसकी लाइन भेजनी है।
1: तुझे देख देख सोना।
0: वेल यस, ये जो गाना है आप मुझे भेज दीजिए 5599 पे। क्या इसके लिरिक्स है? चार लाइन जो है मुझे भेज दीजिए जल्दी से। RFK, राहत फतेह अली खान का इनिशियल है RFK, वो हमें 5599 पे भेज दीजिए कंप्लीट लिरिक्स के साथ, जो आपको ड्रॉ में शामिल होने का मौका देंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, जो एक डबल पास जीतने का भी मौका देगा आपको। जी हाँ, और जो सही जवाब देगा वो ही ड्रॉ में शामिल होगा एक डबल पास जीतने का। बढ़िया। JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव एंड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं dryTickets.com, जो हाँ टिकट है आप खरीद सकते हैं वहाँ पे। लाइव एट द ट्रस्ट एरिना 25th of July इस साल। जी हाँ, तो यस, जल्दी से शुरू हो जाइए और खरीदिए टिकट अभी जाके।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: हैं? इसके पीछे वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: find. Sif Rovapur.
1: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
3: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
4: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
5: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
6: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: Moisture और ventilation का problem लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 80.
10: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
12: Lunchbox with Ketan.
13: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri awaaz gunjegi.
14: चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है। फटाफट से न्यूज पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस पर जोर दिखाया। कह रहे हैं कि अनसर्टेन दुनिया में इकोनॉमिक पार्टनरशिप और भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एक दूसरी खबर यह है कि बेबी सोल की डेथ की मिस्ट्री अभी भी 10 साल बाद सॉल्व नहीं हो पाई है, जिससे फैमिली और कम्युनिटी में एक अब भी सवाल बना हुआ है। हैमिल्टन से 11 साल के एक लड़का जो है वो मिस हो चुका है, मिसिंग है, और पुलिस पब्लिक से मदद मांग रही है। तो अगर आपको दिखता है तो आप ऑनलाइन चेक करें उनकी फोटो और पता कर सकते हैं। यू जस्ट लेट द पुलिस नो। इंटरनेशनल न्यूज में न्यू जर्सी टर्न पिके पर एक फ्लाइट ने पोल को स्ट्राइक किया, जिससे एक डिलीवरी ट्रक डैमेज हो चुकी है। फॉर्चुनेटली कोई मेजर इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है। एक और इंसिडेंट में करेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान एक अटैक में एक एजेंट को बैक शॉट से चोट लगी और प्रोसिक्यूटर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अपडेट में ब्लैक कैप्स के केल जेमिसन को आईपीएल में एग्रेसिव सेंड ऑफ के लिए पेनलाइज किया गया है, जो कि इन्होंने किया था राजस्थान रॉयल के वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने पर। फॉर्मूला वन में यंग ड्राइवर एंटोनेल ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया, जबकि न्यूजीलैंड के लियाम लॉसन रेस से क्रैश के बाद बाहर हो चुके हैं। सुपर रग्बी में कुछ प्लेयर्स ने जो ऑल ब्लैक सिलेक्शन से बाहर हुए थे, अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींच रहे हैं। और आखिर में फंगनुई ईवी ने एक लैंडमार्क डील साइन की है, जहां पास्ट के इमेंस हार्म के लिए ऑफिशियल अपोलॉजी भी दी गई है।
12: दिल

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: वेल यस, जो मैंने न्यूज़ बताया उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो थी, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग ये थी कि ट्रंप साहब जो नॉर्थ अमेरिका के सॉरी यूएसए के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने बताया है कि यूएफओ को लेके उन्होंने काफ़ी दिलचस्प बातें बताई हैं कि वो यूएफओ फाइल्स जो है उसे ओपन करने वाले हैं. क्या बात है, एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, वेरी इंटरेस्टिंग. जी हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पेंटागन के प्रिपेयरिंग टू रिलीज सम वेरी इंटरेस्टिंग यूएफओ फाइल्स अनकवर्ड बाय हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि काफ़ी बज लेके आ चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड. या फिर ये कहें, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि शायद ये कुछ और रीज़न देने वाले हैं ताकि लोगों का ध्यान भटके, बिकॉज ऑफ द वॉर जो है हो रहा है. लोग काफ़ी कह रहे हैं कि यूएस इज़ नॉट इन द स्ट्रॉन्ग पकड़, उस वजह से ये ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. बट लेट्स सी यार, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अगर यूएफओ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है तो, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट रहता है ये एक्चुअली मेरा जॉनर है. सो यू लेट मी नो, आप भी मुझे बताइए अगर आपका भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है. इफ़ यू नो एनी थिंग, डू यू थिंक यूएफओ एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एलियंस और ये सब एग्जिस्ट करते हैं? 555 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर क्या हाल चाल, आज 20 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 15 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 20% चांस है बारिश के, लेकिन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत दिन होने वाला है आज। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। आज का सन रहेगा 5:33 PM पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: आप बने रहिए, सुनते रहिए अंटिल 3। 12 बजे से यहाँ पे था मैं, एंड ऑफकोर्स मैं रहने वाला हूँ अंटिल 3। बहुत सारी बातें होने वाली है साथ में, भी काफी दिलचस्प बातें होने वाली है, एंड यू ऑल नो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि लंच टाइम रेंट लाइन, ऐसी कुछ खबरें जो सचमुच इतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है बट आपको इरिटेट करती है, तो आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे अभी से। उसके साथ बॉलीवुड की भी खबरें होगी, एंड आपको मौका भी देने वाला हूँ फ्लाई फ्रेंजी में, जी हाँ, जहाँ पे आपको कोड बताऊंगा, उस कोड को आपको डालना है रो ऐप पे डालेंगे तो आपको मौका मिलेगा बहुत ही बढ़िया टू फ्लाई एंड टू गेट इन टू ड्रॉ एंड टू विन। वन लकी पर्सन जीतेगा ये रिटर्न फ्लाइट टिकट टू फिजी। वाओ, बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो में आज के
0: बचाओ क्या।

0: वेल यस वेलकम बैक। बट आप सभी के लिए टॉपिक तो क्या, एक्चुअली मैं फ्री हैंड आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए। एंड इफ यू ऑल्सो फील कि ऐसा कोई चीज़ जो सचमुच यू नो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या ना हो चलेगा, बट समथिंग विच मेक्स यू फील सो इरिटेटेड बट यू आर हेजिटेट टू कम आउट फॉर इट, यू नो आपके पास देर इज नो ऑप्शन फॉर यू टू talk about, or maybe you might be sharing with someone, some of your colleagues, but you cannot tell to that person. So aise kuch cheeze bhejiye, jaise ki ek for example main batata hu ki aapke office mein koi aisa shakhs hai jo you know fish leke aata, for example a fish ki smell, you know that how it is, wo khud kha raha hai, chalo theek hai, achhi baat hai, kha bhai, koi dikkat nahi hai, but then he is using the you know not personal but office wala microwave, मतलब पर्सनल, मतलब पर्सनल तो होता नहीं किसी का, बट उससे क्या होता है, वो स्मेल जो है ना दूसरों के खाने पे भी जाएगी, यू नो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर सम पीपल जो वेजिटेरियन है स्पेशली। नो डिसरिस्पेक्ट टू बाई फिश लवर, बहुत ही यमी होता है, आई नो दैट, बट यस काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, और मे बी आप कर सकते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता होगा भाई कैसे करें। तो इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है आपको, तो यस आप उस पर मुझे टेक्स्ट भेजिए और उस पर बात होगी थोड़ी देर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम। May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए, call 0800 46 26 26 today.
5: Available at selected branches.

0: dishes. T's and C's apply.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein
5: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas, har bar. Classic ho ya ragi, multigrain ya medu vada batter, sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
6: Lunchbox with Ketan.
7: मुझे पसंद है लड़का.
6: हम. Lunchtime Rant Line.
8: Well. Lunchtime Rantline में के सेगमेंट में आपका स्वागत है. जैसा कि मैंने कहा था कि आप कुछ ऐसे टॉपिक मेरे साथ शेयर करिए, कुछ ऐसी बातें जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वाइल एट ऑफिस और वाइल एट होम और वाइल गोइंग समवेयर एल्स, जो सचमुच काफ़ी इरिटेटिंग है, बट यू मे और मे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑफ दैट, राइट. वेल, सबसे पहले मैसेज आया स्नेहा का, कहती है माउंट वेलिंगटन से, माय रेंट इज अबाउट दोज कलीग्स हु सेज आई विल जस्ट टेक वन बाइट फ्रॉम योर लंच एंड देन एंड अप ईटिंग हाफ, प्लीज गेट योर ओन फूड. वेल, इस पे तो यार एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता है मेरे को लगता है. बढ़िया सा, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, लाइक डू यू नो एनी पर्सन हु डज दैट द सेम थिंग विथ यू, और अगर होता है करते हैं तो आप क्या करते हो, जवाब दीजिए मुझे 5591 पे. अमन कहते हैं, यो केतन, मनुरेवा से आई एम लिसनिंग टू मेट, आई डोंट गेट पीपल हु लीव लाइक 2 मिनट्स ऑन द माइक्रोवेव एंड जस्ट वॉक अवे, देन इट बीप्स फॉरएवर एंड नो वन स्टॉप्स इट, सो अनोइंग. हाँ, वो तो होता है अनोइंग, तो खैर मेरी बीवी भी है, मैं खुद भी भूल जाता हूँ घर पे कभी कभी माइक्रोवेव रख के, एंड देन आई लाइक कंप्लीटली गेट बिजी ऑन माई वर्क एंड फिर वो मेरे को उधर से कुछ भाषण सुनने को मिलता है. बड़ी यस, नेहा कहती है अगला मैसेज टाकापुना से सुन रही हैं, माइन इज स्मॉल बट सो इरिटेटिंग व्हेन पीपल डोंट क्लीन अप आफ्टर देमसेल्फ इन द शेयर्ड किचन, लाइक हाउ हार्ड इज इट टू वाइप द बेंच, दैट इज सो ट्रू. यार ये तो हाइजेनिक की बात भी है, प्लस ऑफ कोर्स व्हेन यू ईटिंग जस्ट क्लीन अप लिटिल बिट, यार पूरा डस्ट थोड़ी ना करना है, बट जहां आप खा रहे वो तो कर ही सकते हैं, राइट नेहा. वेल यस, थैंक यू. इमरान कहते हैं ओटाहू से, ब्रो लंच टाइम मीटिंग्स व्हाई, लेट अस ईट इन पीस मैन, एवरी टाइम आई सिट डाउन विद माय फूड बूम मीटिंग इनवाइट. वेल, इनका सुन के तो ऐसा लग रहा है ये जैसे मेरे को ही बोल रहे हैं डायरेक्टली, बट थैंक यू इमरान भाई आपके मैसेज के लिए. कविता का आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं हम फटाफट से. कविता कहती है हेंडरसन से, माय रेंट इज अबाउट लाउड ईटर्स इन द ऑफिस. अरे बाप रे, तो मेरे को भी इरिटेटिंग हो लगता है न्याम, न्याम, न्याम, न्याम, न्याम, न्याम, ऐसा. लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय माई लंच एंड ऑल आई हियर इज क्रंच क्रंच क्रंच, दैट इज एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग यार. मतलब मुझे पर्सनली, मेरी तो बहस भी हो गई थी 2-3 बार मेरे दोस्तों से, वो जिस तरह अब ऐसा साउंड करेगा आपको तो कैसा लगेगा, नॉट गुड, राइट. वेल यस, 5591 पे बताइए अगर आपके साथ भी सिचुएशन हुई है और आपने क्या किया है, जी भेजिए.
6: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

Well, yes, attention music lovers, final reminder, जल्दी करो, सिर्फ आपके पास 300 से 350 टिकट ही बचे हुए हैं. Actually, अब तो और कम हो चुके हैं, ये तो कुछ दिनों पहले की बात है. But yes, it's Friday, 8 मई को तैयार हो जाओ एक unforgettable music night के लिए. Star Alliance Entertainment लेके आ रहे हैं रफी और में एक grand tribute legendary मोहम्मद रफी को, live by the incredible Javed Ali. Wow! Well, yes, बहुत ही बढ़िया होने वाला है. For the very first time in New Zealand, सोचो रफी साहब के timeless classics और जावेद अली के सुपर हिट गाने सब कुछ एक ही स्टेज पर फुल लाइव बैंड के साथ डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हैं. Well, वेन्यू जो है वो है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. टिकट जो है सिर्फ $59 से शुरू हो रही है. फूड स्टॉल एंड इजी पार्किंग भी अवेलेबल है वहां पे. अगर आपको मेलेडी पसंद है और ये रफी साहब के गाने दिल के करीब है आपके, तो ये शो मिस करना मतलब रिग्रेट करना. तो अभी बुक करो बिफोर इट गेट सोल्ड आउट. StarAllianceEntertainment.com पर जाइए और खरीद लीजिए टिकट आज ही.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Well, अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि वेलिंगटन से एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ अपडेट आई है. वेलिंगटन में एक नया मिसल्स केस कंफर्म हुआ है, जिसका सोर्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और ये किसी प्रीवियस केस या ओवरसीज ट्रैवल से डायरेक्ट लिंक भी नहीं लग रहा है. वैसे हेल्थ अथॉरिटीज अब अफेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, और मल्टीपल लोकेशंस ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया गया है जहां वो इन्फेक्शियस पीरियड में गया था. वैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग भी दी है कि मिसलीज एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है, और इसलिए लोगों को अपनी वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करनी चाहिए, और सिम्टम्स जैसे फीवर, कफ, रनिंग रोज और रैश पर ध्यान देना चाहिए. जी हाँ, तो यस, एक बार मैं तो कहूँगा कि आप कनेक्टेड रहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है वी विल डेफिनेटली गोइंग टू अपडेट यू, बट आप ऑनलाइन भी जाके एक बार पता कर लें.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
0: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: बेटा, मेरा फोन किधर है?
4: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है.
5: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश. हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी. Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
6: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
7: Right now at Woolworths, collect double bonus points on every $50 shop. Plus, boost your budget and collect 10 times points on some of your favorite brands. Boost in the app, shop in store or online, and scan your everyday rewards card at checkout before Sunday 10th of May.
8: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
9: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
10: At Bunnings Trade, we can help you build big. We've got a wide range of landscaping supplies and building materials to help you get the job done. From Green Life decking and fencing to irrigation, top brand power tools and loads more. Plus, our trade team's here to help you get back on site fast. Shop the range in-store or online today, or call 0800 134 872 for fast quotes and delivery to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
11: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का.
12: हम है क्रू केयर. सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत.
13: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
14: Professional Financials है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
15: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
14: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
15: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 0984699934 और सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply. We'll be right back.
16: Lunchbox with Ketan.
17: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
18: इसके पीछे
16: लंच के मंच पे।
2: वेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। कुछ मूवी रिलीज हुई है अभी, वैसे पेंडिंग बता रहा है वर्डिक्ट अबाउट राजा शिवाजी। जी हाँ, ओपनिंग उनकी 3.10 रही और ओवरऑल कलेक्शन अभी करीबन 6.5 के करीब है। एक दिन इज नॉट डूइंग सो वेल, 1.9 उनका कलेक्शन रहा है। और उसके साथ ही द दिवाली वियर्स प्रादा 9 करोड़ पे है। और उसके साथ द वार्ड्रोप 0.01, मर्सी 0.10, श्री बाबा नीब करोरी महाराज इनकी भी फिल्म आई थी 0.01 करोड़। माइकल का अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं, इंडिया से कोई खास कलेक्शन हुआ नहीं। 32 करोड़ हुआ है वैसे अभी तक तो, बट मेरे को लगता है हो गया, मतलब हिट तो हो गई होगी। उसके बाद भूत बंगला 128.8 करोड़ के साथ इज डूइंग ग्रेट यार, ग्रेट कलेक्शंस, नाइस। और अभी कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं। भाई किधर गया, हाँ ये रहा, सॉरी माय बैड, कभी कभी वेबसाइट ओपन नहीं होती तो इट्स जस्ट गेट हार्ड। दादी की शादी इज रिलीजिंग ऑन 8th में। और उसके बाद पति पत्नी और वो दो, एक नहीं दो नहीं भाई तीन तीन लड़कियां संभाल रही हैं आयुष्मान खुराना, जो 15 तारीख को आप देख सकते हैं। पैडी 4 जून को रिलीज हो रही है। और है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को रिलीज हो रही है, आप देख सकते हैं।

पर दो चीजें आपके लिए बहुत ही स्पेशल इवेंट्स हैं जो इस मदर्स डे के दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप मदर्स डे के लिए एक कंपटीशन जहां पे आपको हमें लाइव सुनना होगा, और हम लिसनर आपको कभी भी एक मौका दे सकते हैं जहां पे एक सिनेरियो क्रिएट करके आपको मौका देंगे टू कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, और उस पर कॉल करके आपको सिनेरियो क्रिएट करना है जो सबसे हिलेरियस और सबसे फनी होगा, सबसे अच्छा लगेगा, वो ड्रॉ में शामिल होगा जो जाएगा उस शो के लिए जो आपको मौका देगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके जहां पे आप जीत सकते हैं इनाम, यानी कि पहला मौका फर्स्ट प्राइस हो सकता है $300, दूसरा हो सकता है $200, तीसरा हो सकता है $100, यानी कि तीन ऐसे पोजीशन है जो आप जीत सकते हैं कोई भी एक। ब्रेकफास्ट शो में इसका डिस्क्लोज होगा कि विनर कौन है 8 तारीख को। और इसके अलावा एक और मदर्स डे है जो कि आप एक क्रिएटिव हो सकते हैं, नहीं भी है तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, एक वाउचर बनाना आपको जिसमें फूल हो, पत्ते हो, कुछ ब्रेकफास्ट हो, जो भी आपकी मॉम करती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप डेकोर करिए, चाहे खुद के हाथों से या फिर ऑनलाइन, इट्स ऑल अप टू यू, बट ये सारी चीज़ें करके एंड देन ऑफकोर्स आप यू नो जस्ट गिव इट अ गो। एंड जैसे आप करेंगे आप बस हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, हम 104.2 FM पे जाके अपलोड करिए, टैग करिए अपने फ्रेंड को और ड्रॉ में शामिल हो जाए, बिकॉज इस ड्रॉ के थ्रू भी आप जीत सकते हैं $200, जिसका डिस्क्लोज होगा द ड्राइव शो में 8 तारीख को।

हरियाणा नमस्ते सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज और ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जी हाँ, बहुत सारी बोले तो इतनी सारी की जैसे यू विल हैव अ ग्रेट डे यार। यानी कि सार में आपके लिए आपके साथ बात होने वाली कुछ ऐसे पलों की, कुछ टेक की बातें एंड ऑफ कोर्स एक मौका जो आपको फीजी लेके जाएगा। जी हाँ, वो भी रिटर्न टिकट। एक काम करता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी हाँ, वेल यस, वो कोड जो है, आप अपना फोन रेडी रखिए और इस कोड को डाल दीजिए रूएप में और अभी से लेके आपके पास 60 मिनट हैं, इसके बीच आपको करना है। जी हाँ, सो यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और जो वर्ड है वो है सनसेट, SUNSET। ये कोड है आपका, आप इसे जल्दी करिए और पहुंच जाइए ड्रॉ में। जी हाँ, your time starts now. बचाओ क्या?

वेल ये जो गाना आपने सुना है आशियाना, इतना प्यारा गाना है। वेल ये थी आवाज एजे साउंड, जी हाँ, जो कि अर्जुन के नाम से है, अर्जुन का ओरिजिनल नाम है और एजे साउंड के नाम से काफी पॉपुलर है यहाँ पे। वेल मैं इन्हें 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और काफी अमेजिंग सिंगर है, अमेजिंग कंपोजर है, अमेजिंग डायरेक्टर है, उनके बारे में हम थोड़ी देर में पता करेंगे। बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं या फिर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो गाना लिखना या फिर बनाना पसंद करता है, उनके पास है ट्रैक्स तो उन्हें कहिए, या फिर आपको भी मैं कहता हूं कि आप हमें buzz@

0: फैमिली फ्रेंड्स को कि शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे तो आपको मौका मिलेगा फीचर होने का रोवा ऐप पे। जी हाँ, टॉप थ्री होंगे ऐसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट जो फीचर हो सकेंगे वहाँ पे, और काफ़ी अवार्ड्स, काफ़ी गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे वहाँ पे। बट यस, अभी के लिए आप जल्दी से buzz@hamfm.com पर आप मुझे भेजिए अपने ट्रैक्स, बेस्ट ट्रैक्स और अपनी बायो भी, ताकि हमें पता तो पड़े कि आप कौन है। वेल, आज के जो सिंगर हैं अर्जुन के नाम से, अर्जुन का नाम है और अका एजे साउंड के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। आप इन्हें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करिए, काफ़ी बढ़िया लिखते हैं, गाते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, लीडरशिप, इनफैक्ट ही इज़ वन मैन आर्मी है। वेल, मुंबई में पैदा हुए हैं लेकिन पले बड़े न्यूजीलैंड में हैं। आप इनके गाने सुनिए और इन्हें इन्हें यू नो make it viral. You never know यार, आज हो सकता है ये लोकल है बट कल ये सेंसेशन हो फॉर द वर्ल्ड, यू नेवर नो। सो स्टार्ट सपोर्टिंग देम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हम यू गेट माय नेक गेट Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
4: Do they have parking?
3: There is some.
5: Are there biscuits?
3: Of course.
6: Can I do it during work hours?
3: Don't know. Talk to your manager. Probably.
7: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
8: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
1: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
9: Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliance.com or call Edwin on 0211-382184.
10: Ek din tera ho jaunga.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ। अच्छा,
11: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह।
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: लंच बॉक्स विद केतन।
16: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
17: इसके पीछे
15: स्किप या रीप्ले।
0: वेल, एक बहुत ही बढ़िया मौका है एक ऐसे शो पे जाने का जो काफ़ी लाइट है, काफ़ी यू नो आपका स्ट्रेसफुल जो लाइफ हो रही है, अगर होपफुली ना हो बट अगर हो रही है तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लाइव शो देखने का। डांडो लाइव एट ब्रूस मैसन सेंटर ऑन 23rd of May, जो लेके आ रहे हैं इंडियाज बोल्डेस्ट कॉमिक मुनावर फारूकी, जो कि ऑकलैंड आ रहे हैं एक रॉ रियल और अनफिल्टर्ड बातें लेके आप सभी के बीच। बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास इस चीज को विटनेस करने का। टिकट मास्टर

0: ticket.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट। बहुत ही फियरलेस बंदा है और सचमुच जिस जगह से आए हैं, जिस लाइफ से आए हैं, बहुत ही कहानी है उनके पास, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और दुनिया भी देखी है उन्होंने बहुत। जी हाँ, काफ़ी जगह इंटरनेशनली उन्होंने सोल्ड आउट शोज किए हैं। बट यस, इस बार आप यहाँ पे जाइए, ब्रूस मेसन सेंटर, ऑकलैंड की बारी है। जी हाँ, वैसे यस, आपके पास मौका है एक डबल पास जीतने का। कैसे? आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए 104.2 FM और टैग करिए उस ऐसे शख्स को, ऐसे दोस्त को जिसके साथ, जो एक्चुअली सबसे पहले आपके दिमाग में आता है जब आप रील देखते हैं। जी हाँ, मुझे पता है मेरे जहन में कौन आता है ना। आई ऑलवेज शेयर एनी काइंड ऑफ थिंग टू दैट पर्सन। तो वैसे ही अगर आपको भी लगता है कोई ऐसा शख्स है जो आपके दिमाग में आता है फट से, तो उसे टैग करिए और डबल पास के ड्रॉ में शामिल हो जाइए। ड्रॉ जो है वो हैपन होगा 11th मई को, तो मेक श्योर करना आप हर दिन ट्राई करिए। यू नेवर नो, मतलब जितने ज़्यादा आपके नाम होंगे, जितने ज़्यादा आपकी लिस्ट रेडी होगी, आप हो सकता है जीत जाएं, है ना। 11th मई को इसका डिस्क्लोज होगा और 23 मई को इनका इवेंट है ढांडो। जी हाँ, ढांडो मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ ना, ढांडो, लाइव एट ब्रूस मेसन सेंटर।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेल यस, एक नई लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ। न्यूजीलैंड ने सिंगापुर के साथ एक इम्पॉर्टेंट डील जो है साइन कर ली है, जिसका एम है क्राइसिस के टाइम पर एसेंशियल गुड्स का सप्लाई कंटिन्यू रखना। इस एग्रीमेंट के अंडर दोनों देश के दूसरे पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। मतलब न्यूजीलैंड सिंगापुर के फूड सप्लाई करेगा और सिंगापुर न्यूजीलैंड को फ्यूल जैसे जरूरी रिसोर्सेज देता रहेगा। ये डील ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में भी जरूरी सामान की कमी ना हो, जो कि होपफुली अच्छी बात हो अपने आने वाले दिनों में।

0: वेल क्रिकेट जगत की बात बता देता हूँ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टूर से पहले एक बहुत ही बड़ा झटका मिल चुका है। टीम के की प्लेयर ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर शोल्डर इंजरी की वजह से कम एक महीने के लिए आउट हो चुके हैं। ये इंजरी उन्हें आईपीएल मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त हुई थी और अब वो आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट और इंग्लैंड सीरीज की शुरुआती मैचेस मिस करने वाले हैं। वैसे इस सेटबैक से न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस पर असर पड़ सकता है, स्पेशली जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं। देखते हैं यार, होपफुली यार इस बार भी रिजल्ट अच्छा रहे। वेल देयर इज नो रैंकिंग अवेलेबल फॉर दिस वन एज ऑफ नाउ। बहुत ही जल्द ये शुरू होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आपको क्या लगता है इस बार का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीतेगा? इंडिया के तो चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं मुझे, बट यू नेवर नो यार, यू नेवर नो कब जीत जाए, यू नेवर नो। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा, पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
4: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
5: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
4: वीकडेज 6 to 10 a.m.
6: Time out.
7: Okay, Macca's new Dunk McCrispy is here. Juicy chicken dunked in Korean sticky barbecue sauce. Plus Macca's sauce doesn't miss. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
8: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
9: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. Ye sona wahi Sona Sansar hai jahan Delhi se lekar Dubai tak ke sabhi gold jewelry designs milte hain, samjhe?
8: Sona Sansar Papa Toto, jahan tha wahan abhi bhi hai. Shop inside with Asa Design Studio, corner of Great South Road and East Tamaki Lights, Papa Toto.
10: Sona Sansar, 138 Great South Road, Papa Toitoi. Sona Sansar, you're never too old for gold.
11: Scammers want you to go fast, because when you rush, you can make mistakes. Like signing up for work email with a love you. Jumping into a stranger's car, thinking it's your Uber.
12: Oh, wrong one.
11: Choosing a tattoo.
13: I think it's a dragon.
11: Or transferring funds to a new bank account you've just received in a text. Mm-hmm. Security features in the BNZ app help to slow you down when scammers want you to speed up. Bank of New Zealand. Let's find a way.
14: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
15: अच्छा
14: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
15: मिसेस सिंह,
16: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
17: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
18: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
19: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 09278860.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: Non-stop Bollywood.
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
4: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
19: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
4: इसके पीछे
7: हम.
12: Talk.
0: Welcome back. Tech Talk के segment में आपका स्वागत है. Well, क्या आपने कभी सोचा है कि काश घर की टेक्नोलॉजी खुद ब खुद काम करे और दिखाई भी ना दे. जी हाँ, तो सुनिए, मार्केट में एक नई चीज आई है, इनविजिबल टेक. वेल, सबसे पहले बात करते हैं ईवी सिस्टम्स के सेंसर की. भाई वैसे इसका जो कमाल है वो देखो पहले आप, ना कोई वायर, ना कोई चार्जिंग और ना ही बैटरी बदलने की टेंशन. तो भूल ही जाओ आप इसका, जो टेंशन है वो तो भूल जाओ. ये सेंसर्स धूप और हवा से अपनी एनर्जी खुद बना लेता है, बस एक बार अपने दरवाजे या खिड़की पर चिपका दो और ये बिना थके आपके स्मार्ट होम को सिग्नल देते रहेंगे. आपको बस ऐश करनी है घर में बैठे बैठे. और दोस्तों, अगर आप धूप से परेशान हो तो एक स्मार्ट ग्लासेस है जो कोई आम कांच का नहीं, बेसिकली वो जो चीज़ बनी है वो कोई आम मिरर नहीं है, आम कांच नहीं. आपके ग्लासेस जो लगते हैं कि विंडो के, वो जैसे ही आप बाहर गर्मी बढ़ती रहेगी तो ये ग्लासेस अपने आप चश्मे की तरह डार्क हो जाएंगे, जैसे कि आपके जो होते हैं, और आपके घर जो है थोड़ा ठंडा रहने वाला है एसी के बिना. एसी है तो भी उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ना पर्दे गिराने की टेंशन, ना ही बटन दबाने की. बस एक बार जैसे धूप ज़्यादा बढ़ी वो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएंगे और रात को फिर से खुल जाएंगे. वेल यस, तो बस अब टेक्नोलॉजी को चलाओ नहीं, उसे महसूस करो, क्योंकि अब टेक दिखेगा नहीं, सिर्फ काम करेगा. है ना सही टेक? अगर आप चाहते हैं यूज करना, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ टेक, लेट मी नो. आप 5599 पे मुझे भेज सकते हैं वेदर यू लव दिस टेक और नॉट. 5599 इज द नंबर.

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, आज की बातें और आपके साथ दिलचस्प कहानियां जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप भी मेरे साथ शेयर करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपने मैसेज भेजे हैं मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस बने रहिए, अभी सैंडी थोड़ी देर में आपके साथ ज्वाइन होने वाली है इन फॉर द कॉफी ब्रेक, और उसके बाद रुजबी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। बट मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव।

0: with Kaitan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.

0: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डाले, पता करे कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओटुगेदर ओकलैंड।
1: Say no to windows crying condensation. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
2: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 0984699934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. ACT is proposing to let pharmacists order blood tests and assess skin lesions. Leader David Seymour has unveiled a policy to ease pressure on GPs. He says pharmacies can handle more thanks to automation.
10: 10 years ago, people said, oh, you couldn't possibly let pharmacies do vaccination. Now they do the majority of it and they've managed to absorb that.
9: It has been confirmed a New Zealander is on board a cruise ship facing a possibly deadly outbreak. 3 passengers have died, 1 is critically ill, and 3 others are suspected to be infected with Hunter virus. The government says it is making progress on improving systems to better identify and report child abuse. It follows a 14 recommendation review after the violent death of 5-year-old Malachi Subek in 2021. An interagency hub set up this year has handled 73 reports so far. And an emotional moment for Beyoncé at the Met Gala. She's donning a piece in the shape of a skeleton crusted with silver crystals on top of a sheer nude gown. It's her first return to the event in 10 years, and she told Vogue it was extra special to do so with her daughter, Blue Ivy.
11: It feels surreal because my daughter's here. It's incredible to be able to share it with her, and I think she looks so incredible.
9: To football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, the All Whites have reportedly lined up a World Cup warm-up match against Haiti in Florida on June the 3rd. New Zealand football has not yet confirmed the game. And in the NRL, with the PNG Chiefs and Perth Bears on the horizon, clubs are moving to secure their talent. The Warriors are reportedly in negotiations with their in-form halfback, Tanner Boyd, for a multi-year contract extension.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 19 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. इट इज क्लाउडी, बिट क्लाउडी टुडे, थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ वेदर है वैसे. कल बारिश होने के चांसेस बने रहेंगे. सनसेट आज का 5:33 पर.
8: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
12: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड 5 तारीख है. इट इज 5/5/26 टुडे. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? मंगलमय दिन जा रहा है कि नहीं? इट इज़ ट्यूसडे. अगर आज आपका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे अपनी बर्थडे ग्रीटिंग्स जो है किसी को अगर आप विश करना चाहते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर, तो बर्थडे शाउट आउट्स या बाकी शाउट आउट्स भी हम यहाँ पे करते हैं। वेल, और भी बातें आपके साथ, मदर्स डे आने वाला है, बहुत ही क्लोज है, तो ये लास्ट वीक है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा पार्टिसिपेट। इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इस वीकेंड पे एक्चुअली में इवेंट होने वाला है, बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके स्टार यहाँ पे पहुँचने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो उनके बारे में भी बात करेंगे एंड पॉसिबल होगा तो उनसे भी बात करेंगे जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे। जावेद अली के बारे में बात कर रही हूँ। सो इस इवेंट के बारे में और भी डिटेल्स, कितनी टिकट्स बाकी है, विल लेट यू नो।

0: 3:11 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे आज बर्थडे है दो क्वींस का, सो मॉम अपनी दोनों बेटियों को विश करना चाहती है। उन्होंने बोला है कि माय ब्यूटीफुल डॉटर जिया राठौड़ एंड माय अमेजिंग वाइफ मोनिका, ओके सॉरी हस्बैंड विश करना चाहते हैं अपनी बेटी को और अपनी बीवी को। दो क्वींस लिखा तो ऐसा मन में आया कि शायद यू नो दो बेटियों के बारे में बात हो रही है, बट या गुड ऑन यू। सेम डे डबल द सेलिब्रेशन डबल द लव, सो ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ यू एवरी सिंगल डे। आपने अपना नाम यहाँ पे नहीं बताया, आपने विश तो कर दिया दोनों क्वींस को आपकी लाइफ की। सो जिया राठौड़ एंड मोनिका, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी

0: banayenge aapke sapne ko ek haqeeqat.
1: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.

0: most wanted.
1: Gundi khad gao ya seedha andar aao.
2: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: 3:16 हो चुके हैं. मोस्ट वांटेड गाना भी आप सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेल्स के बारे में बात करते हैं. ट्रेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेल, मैंने इसकी फ़ोटो देखी है और मैंने इसके बारे में सर्च किया. एक्चुअली में इस ट्रेल का नाम है परारा वैली ट्रैक. एक्चुअली में काफ़ी अंडररेटेड ट्रेल है. कैरीगरी के पास ये है, जिसमें मिक्स ऑफ वैली, स्ट्रीम एंड वाइल्ड वेस्ट कोस्ट व्यूज़ भी है. सो ये एक ऐसी हाइकिंग ट्रेल है जो कि वेताकरे रेंजेस में ही आती है. हुइया के पास है ये. सो ऑकलैंड के वेस्ट कोस्ट में हुइया के पास ये है, जहाँ पे स्ट्रीम जो है, पराहा जो है, एक्चुअली में एक स्ट्रीम है जहाँ पे नेटिव फॉरेस्ट है. सो कोस्टल लैंडस्केप है. फटीपू के पास ये बढ़ता है. तो ये जो ट्रैक है, इस पार्ट ऑफ रीजनल स्पार्क इंटरकनेक्टेड ट्रेल नेटवर्क एंड जो कि ईजी बताया गया है. लेंथ इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स है. अगर आपको ये वॉकिंग करनी है, इट्स 7 किलोमीटर्स जो कि कनेक्टिंग रूट के साथ के हिसाब से कई बार वेरी भी करता है. तो क्या होता है ना कि जब आप एक ट्रैक पे चलते हैं, अगर आपको एक ही लूप कंप्लीट करनी है तो एक कुछ किलोमीटर्स रहेंगे, लेकिन आप बीच में से कोई और रास्ता लेके कोई और वे से वहाँ से निकलना चाहोगे तो उसके हिसाब से कई बार किलोमीटर्स बदल जाते हैं. डिफ़िकल्टी लेवल इसका मॉडरेट बताया गया है, जिसमें स्ट्रीम को क्रॉस करना भी है एंड अनइवन टेरेंस भी बीच में आएंगे. सो इट्स इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है जाते, काफ़ी हाइकर्स वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे सीनिक लुकआउट होता है टुवर्ड्स द टैस्मैन सी एंड नेटिव वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे काफ़ी होती है. यू नो, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे हाइकिंग ट्रेल्स कहीं पे भी आप चले जाओ, सांप आपको कहीं नज़र नहीं आएगा. कोई जहरीला जानवर आपको, इंसेक्ट भी कोई आपको नज़र नहीं आता है. तो उस वे से एक्चुअली में सेफ रहता है. बाकी आप कैसे चल रहे हैं, जूते आपने सही पहने कि नहीं पहने हैं.

You're humming along with Sandy right now. Coffee break फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. Back your backyard beats में हम different singers के गाने यहाँ पे आज आपके लिए play कर रहे हैं. So AJ Sound का गाना आज आप 5 बजे के बाद सुनने वाले हैं. And अगर आप singer हैं, it's not too late. अभी भी आप यहाँ पे अपना गाना भेज सकते हैं. buzz@humfm.com पर अपना गाना भेजिए. And हम आपका गाना यहाँ पे रेडियो पे ज़रूर प्ले करेंगे अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है. देयर फ्यू क्राइटेरियाज एक्चुअली में उस क्राइटेरिया को अगर आपका गाना मीट करता है देन आपका गाना यहाँ पे रेडियो पे ज़रूर प्ले होता है. एंड आपको चांस मिलता है यहाँ पे जो बाकी आर्टिस्ट के हम गाने प्ले कर रहे हैं उनको पसंद करने का, उनके बारे में वोट करने के लिए भी. वेल ऑल्सो बताऊँगी जावेद अली इसी फ्राइडे को परफॉर्म करने वाले हैं. जस्ट अबाउट 300 टिकट्स ही बाकी है इस शो की, तो जल्दी से अपने टिकट्स आप खरीद लीजिएगा. 8 मई को इसी फ्राइडे को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में शो होने वाला है. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $59. बहुत ही सुपर्ब इवेंट होने वाला है. बुक योर टिकट्स फ्रॉम द वेबसाइट स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट.com.

0: डिवाइन एंड राजा कुमारी का ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। 3:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे अपने बच्चों को आप बिल्कुल फ्री लेके जा सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो इवेंट है ये थर्सडे 7 मई को सुबह 10:30 से लेके 11 बजे के बीच में हो रहा है पुके कोही में, फ्रैंकलिन में ये एक्चुअली में हो रहा है, जहाँ पे 30 मिनट का थीम सेशन रहने वाला है जिसमें स्टोरीज, राइम्स, सिंगिंग, डांसिंग ये सब कुछ है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इनकरेज करना चाहते हैं अपने बच्चों को बुक्स में, वाइल बिल्डिंग लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल्स जो है वहाँ पे अगर आप उनके बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली अ साइन लैंग्वेज वीक स्टोरी टाइम। सो और भी काफ़ी जगह पे ये हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो एक्टिव डेट है वो 7 मई की है, फ्रैंकलिन का जो सेंटर है पुके कोही में वहाँ पे एक्चुअली में आप जा सकते हैं। न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ है तो इसकी सेलिब्रेशन वैसे न्यूजीलैंड में हो ही रही है, क्वींस वॉर्फ पे भी हो रही है, जहाँ पे मिक्स टेप ऑफ चॉइस, होम ग्रोन एंड 100% न्यूजीलैंड लाइनअप ऑफ डीजेस एंड कुछ लाइव सेट्स भी आप एक्चुअली में इंजॉय कर सकते हैं और इनकी एंट्री एकदम फ्री रहती है। सो देयर आर फ्यू इवेंट्स जो कि हो रहे हैं डिफरेंट डेज पे, ये जो इवेंट्स हैं ये हो रहे हैं जो आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए NZ म्यूजिक मंथ की जो वेबसाइट है ये आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेन्यूज पता चलेंगे जहाँ पे आप फ्री एकदम जा सकते हैं।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: शंकर माधवन की आवाज सुन रहे थे आप, ये बहुत ही कमाल गाना। यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे। वेल, ड्राइव शो हैज स्टार्टेड ऑलरेडी ना सैंडी।
1: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे,
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पाड़ देंगे।
3: बाद में याद आया ना,
0: 4 बजे नहीं है लेकिन मैंने बोला, मेरे को लगा मैं आ गया हूँ ऑलरेडी शो में, लेकिन
3: यस यस। हाउ आर यू रुज़बे?
0: आई एम गुड यार सैंडी, इट्स अ बेटर डे आई फील टुडे।
3: या और बाहर का जो वेदर इतना खराब भी नहीं है,
0: इतना बुरा नहीं है यहाँ पे।
3: या ऐसा
0: अब तक
3: पड़ा
0: था
3: ना, अभी तक तो नहीं हुई है, ऐसा पड़ा है कि क्लाउडी रहने वाला है ऐसा थोड़ा थोड़ा, बट इट्स जस्ट फाइन वेदर राइट
0: नाउ एंड इट्स क्वाइट वार्म आल्सो एक्चुअली।
3: या ठंड कम हो गई है
0: जी, तो कल तो और भी गर्म होने वाला है एंड फ्राइडे तक एक्चुअली वेदर अच्छा रहने वाला है, मतलब कल बारिश होगी थोड़ी, बट थर्सडे फ्राइडे इज गोइंग टू बी नाइस, सैटरडे अगेन लिटिल बिट रेन एंड संडे इज अगेन नाइस।
3: ओ संडे इज अगेन नाइस,
0: या
3: मतलब वीकेंड अच्छा है,
0: काइंड ऑफ।
3: तो हाइकिंग पे जाओगे रुज़बे?
0: बट रुज़बे
3: ने ना एक जिम्मा लिया है, मैं हाइकिंग पे लोगों को भेजूंगा। आई कैन डू द प्लानिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। तुम ऐसा प्लानिंग कर सकते होगे? वो भी नहीं करोगे? ओके, तुम सिर्फ भेजोगे, जाओ, मोटिवेट करोगे?
0: मैं मोटिवेट करूंगा तुम लोगों को,
3: इज अ मोटिवेटर,
0: प्लीज गो,
3: प्लीज गो, प्लीज को ज्यादा बड़ा नहीं था कैपिटल्स में,
0: नहीं नहीं वैसे नहीं, प्लीज गो,
3: ओके,
0: स्वीट प्लीज है ये।
3: एनीवे, सो यस, हाइकिंग के बारे में भी हम यहाँ पे जरूर बातें करते हैं, और जो रिसेंट हमने हाइकिंग की है, वैसे मैंने, अनुशीन ने अभी की है, उसकी वीडियो मैंने डाली है अनफिल्टर्ड क्रू में। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक ग्रुप है, और उसको बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कुछ इश्यू भी है, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस विद अस, आप उस ग्रुप में जाके डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे आप एनोनिमस होके पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी आपका कंसर्न है, कोई आपको हेल्प चाहिए, एनीथिंग। सो इसका नाम है अनफिल्टर्ड क्रू। अगर आप ड्राइव लिख के भेजते हैं 5599 पर, तो आपको फेसबुक ग्रुप का नाम आ जाएगा।
0: आज 4 बजे के बाद ड्राइव शो में आपके लिए ढेर सारी चीज़ें प्लान आउट की है हमने। ऐसे तो आज ट्रेंड मेकर्स में एक बढ़िया सा थीम लेकर आएंगे आपके लिए 6 बजे के बाद।
3: थीम के बारे में बताना है अभी?
0: हाँ बता दो, आपका है ये सब कुछ।
3: आज का जो थीम है ना गाइस, वो है
0: एंटी हीरो।
3: यस, विलन वाले गाने, ऐसे गाने जिसमें हमारे विलन्स हैं, मतलब मूवी में जो विलन है, कभी हीरो भी विलन होते हैं,
0: विलन नहीं एंटी हीरो ही बोलो ना आप,
3: एंटी हीरो बोल सकते हैं,
0: क्योंकि वो एंटी हीरो भी एक हीरो ही है कहीं ना कहीं से।
3: या
0: बट हाँ,
3: एंटी हीरो वाले गाने आज आप सुनने वाले हैं। अगर आपको कोई ऐसा गाना पता है जिसमें एंटी हीरो है, मतलब हीरो नहीं है वो, उसके ऊपर गाना बेस्ड है, लिख के भेजिए 5599 पर, हम कोशिश करेंगे आपका गाना इंक्लूड करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में।
0: जी, एंटी हीरो का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो एग्जांपल है ये, होपफुली इसका हमारे पास हाई हुक का हाई है।
4: जी हाँ, मैं हूँ खलनायक,
0: ऐसे टाइप के
3: गाने आप सुनने वाले हैं 6 से लेके 7 के बीच में, बड़ा मजा आने वाला है यार।
0: या सो अभी ड्राइव शो बस शुरू करते हैं आपके लिए नाउ।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
5: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल, फील्स लाइक 18 डिग्रीज, 18.3 एक्चुअल टेम्परेचर, 1 टू 2 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड, थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्लीज डाइंग आउट दिस इवनिंग, सनसेट होगा 5:33 पे, कल के दिन बारिश होगी।
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
3: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rizvi.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: 4:03 ड्राइव शो में स्वागत है आपका। आज 5 मई है, 5/5/26। सैंडी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।
5: वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज यह ड्राइव शो आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। एंड कैसे हैं आप, आपका डे कैसा जा रहा है? आज ड्राइव शो की शुरुआत हम कैसे गाने के साथ करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम रेडियो पे ये गाना पहली बार प्ले करने वाले हैं रुजबे, लेकिन हमारे सिस्टर रेडियो स्टेशन में जो कि इंग्लिश रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे हमसे पहले गाना प्ले हो गया।
1: हमारे से पहले ये गाना वहाँ पे प्ले हो गया है, हम थोड़े लेट हो गए ये गाना प्ले करने
5: हम
1: में।
5: लेट हो गए, हम बस इस गाने के ऊपर झूमते रह गए, इसके रील्स देखते रह गए हम कि हाँ ये भी रील इसके ऊपर अच्छी बनी
1: हम
5: है।
1: नहीं आप
5: हाँ, जो
1: कल से
5: मैं तो दिखाई रही हूँ
1: कर रही थी ये गाने के ऊपर और मेरे को रील्स दिखा रही थी। एंड उसके बाद हम लोग बाहर निकले शो खत्म करके 7 बजे, तो हमारी जो सिस्टर रेडियो स्टेशन है वहाँ की एक जो अनाउंसर है उसने बोला कि ओ वी प्लेड द सॉन्ग टुडे, और सैंडी भाई वहाँ पे ही ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी।
5: मैंने कहा रियली? और वो मैं इसलिए मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उसने नाम बड़े अच्छे से लिए, उसके प्रोनंसिएशन अबाउट द सिंगर दलजीत, अबाउट द सॉन्ग मोरनी, वो एकदम परफेक्ट। बट मेरे को लगता है कि जिमी फैलन का शो जो है उसके बाद काफी लोग वही स्टेप्स वायरल हो रहे हैं ना, जिसने जिमी फैलन को सिखाया स्टेप, सो वो स्टेप हर जगह पे वायरल हो रहा है, या भंगड़े वाला स्टेप।
1: मेरे को लगता है आपने भी सिखा, आपने भी करना चाहिए, अगर हर कोई वायरल हो रहा है आप भी शायद
5: हम सबको करना चाहिए
1: वायरल हो जाएंगे।
5: और मे बी हमें यहाँ पे वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, ग्रुप डांस उसके ऊपर करना चाहिए।
1: अपन दोनों करते हैं, मैं नो,
5: वेरी गुड,
1: यू प्ले दिलजीत, आई विल प्ले जिमी,
5: जिमी पहले
1: एंड देन वी लो। और देखो रंग भी मैच ही हो रहा है ऑलमोस्ट,
5: या व्हाटएवर,
1: सो लेट्स डू इट,
5: या लेट्स डू इट। एनीवे गाइस, सो इसके ऊपर काफी रील्स बनी है, अगर आपने बनाई है तो आप भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज होंगे ना हमारे लिसनर्स काफी जिन्होंने इसके ऊपर रील बनाई होगी, तो आप भी शेयर करो। बट फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Mother's Day Song, brought to you by
1: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indeliblehomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. A must food. 100% authentic and pure as mother's love. And Malava Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
2: मदर्स डे का गाना आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मदर्स डे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का मौका भी आपको दे रहे हैं हम. ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल. 0800-004-866 इस नंबर पे आपको कॉल करना है. आपको एक सिनेरियो देंगे एंड आपको हमें बताना है यहाँ पे कि ऐसे सिनेरियो में आपकी मॉम कैसे रिएक्ट करेगी.
3: या तो सिनेरियो है तुम्हारे पास
2: है, मेरे पास आज का सिनेरियो. आज का सिनेरियो इज इंस्पायर्ड बाय द नेक्स्ट सॉन्ग दैट वी आर गोना प्ले, मदर्स डे का सॉन्ग. सो इमेजिन आपने आपके मॉम के लिए एक गाना बनाया. सो व्हाट विल बी हर रिएक्शन.
3: वाओ, ये तो अलग ही रिएक्शन होने वाला है. सो आपको यहाँ पे कॉल करना है 0800-004-866. आपने अपनी मम्मी के लिए गाना बना लिया एंड वहाँ पे आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा. सो यहाँ पे कॉल करके बताइएगा 0800 हम पर. रिजबित, तुमने अभी तक अपनी मम्मी के लिए गाना नहीं बनाया ना?
2: मॉम के लिए नहीं बनाया अब तक. मॉम ने दिल नहीं तोड़ा ना अब तक. That's so mean, yeah.
3: But very mean. Very bad. वो तो कभी होगा नहीं कि मम्मी दिल तोड़े.
2: Yeah. So
3: नाराज हो सकते हो, वो सब हो चलेगा. Yeah, but yeah.
2: नहीं, गाना नहीं बनाया मैंने.
3: गाना डेडिकेट किया कभी तुमने?
2: डेडिकेट नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज मालूम है मेरी मॉम की, कि मेरा कोई भी अगर कुछ पॉडकास्ट आता है, वीडियो आता है, कुछ भी आता है, तो वो उसको देखते रहती है लगातार. Not keeping that in mind.
3: Yeah.
2: और views बढ़ते भी नहीं है, पता नहीं क्यों.
3: और क्योंकि unique नहीं होते ना, एक person का एक ही count होता है. Yeah.
2: So yeah, so that is I think how she expresses gratitude.
3: She likes to watch.
2: She likes to keep watching it. She likes to. और वो मेरे को बोलती है मेरे को भेज मेरे को ऐसा देखना है कभी भी. Photos भी अगर लिए रहेंगे ना तो मेरे को भेज, मेरे को देखना है कभी भी, मैं देख सकूँ.
3: And वो overseas में सुनते भी है ना radio.
2: कैसा
3: रिएक्शन होगा. हम ये नहीं कहते कभी आपने गाना बनाया. चलो अगर आप बना लेते हैं यू नो, या उनके लिए गा लेते हैं, अगर आप में इतना टैलेंट होता.
2: हाँ, तो ऐसा भी उनका रिएक्शन हो सकता है ना कि अरे ये तूने गाया क्या, पक्का क्या.
3: हाँ, डाउटफुल भी हो सकता है कोई. सो क्या रिएक्शन होगा, 0800 हम पर आपको कॉल करके बताना है. फ्यू अनदर मिनट है आपके पास, एक्चुअली में अनदर मिनट है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. तब तक आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वहाँ पे भी आप एक वाउचर बना के पोस्ट कर सकते हैं. हमने एक अल्टीमेट वाउचर का पोस्ट किया है, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए एंड अपनी मम्मी को जो आप गिफ्ट देना चाहते हैं ये वाउचर वहाँ पे जाके बना कर पोस्ट कर दीजिए. यू आर इन टू विन $200 कैश.
2: $200 आपके नाम हो सकते हैं. वेल, अभी के लिए मदर्स डे का ये जो गाना है हमारे कंटेंट डायरेक्टर विजय वर्मा ने बनाया शायद से.
3: यस, यूनिक है.
2: एंजॉय कीजिए गाना.

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
7: Love that chicken from Popeyes.
8: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for

0: अरिजीत सिंह और अकाशा सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना, कॉकटेल 2 का ये गाना है जो बहुत जल्दी आई थिंक थिएटर्स में रिलीज होने वाली है ना, कॉकटेल 2।
1: यस एंड टिंसल टाउन की बातें, वैसे बॉलीवुड की बातें थोड़ी देर में हम और भी करेंगे।
0: अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक और किस्सा हुआ है जहाँ पे एक स्टोर में थोड़ा रेज टाइप हुआ है, मतलब मारामारी हुई है। सो बेसिकली अपर हट में एक लिकर स्टोर है, यहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहाँ पे वायलेंट अल्टरकेशन हुआ है, मतलब मारामारी टाइप हुई है। एक कस्टमर उसको निकाला गया था स्टोर से क्योंकि वो चोरी कर रहा था स्टोर में। एंड फिर ऐसा हुआ कि वो फिर से आया और उसने फिर एक दूसरे कस्टमर को पीटा और फिर स्टाफ ने अंदर इंटरवीन किया तो स्टाफ को भी पीटा।
1: ओह नो।
0: तो या ये सारी चीज़ें हो रही है, बट ये सब में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है ये न्यूज़ आर्टिकल में। इन्होंने बताया नहीं है कि ये जो जिसने ये किया है ये सब ये कौन सी रेस का है,
1: क्या एथनिसिटी है उसकी,
0: क्या एथनिसिटी है, ये सब नहीं बताया। क्योंकि अगर समझो ये अगर इंडियन होता तो वहाँ पे लिखा रहता ना इंडियन या फिर पंजाबी या फिर ऐसा कुछ लिखा होता है ना, यूजुअली
1: स्पेसिफिक हो जाता है कई बार बहुत ज्यादा।
0: ये बार कुछ लिखा नहीं है ऐसा,
1: वो स्पेसिफिक सिर्फ उतना नहीं होता, उसके पास हिस्ट्री भी स्पेसिफिक हो जाती है।
0: हाँ, काफी सारी चीजें। हाँ।
1: फैमिली भी स्पेसिफिक हो जाती है।
0: So anyway, this is very vague news, it's not real news.
1: Okay. Well, real news वैसे है मेरे पास एक रूज पे। सीक्रेट रेसिपीज़ काफ़ी कंपनीज की होती है ना, काफ़ी आउटलेट्स की होती है सीक्रेट रेसिपीज़। तो जिस वजह से ना प्रोटेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोका कोला
0: ठंडा मतलब
1: कूल, कोका कोला, सो कूल कोका कोला की जो
0: मतलब कूल सैंडी यार क्या
1: आई नो रे। कोका कोला की जो रेसिपी है ना ये एक वॉल्ट में लॉक्ड है, so you can see but you can never open it, so only a small number of employees जो है जो को पता है कि complete formula क्या है कोका कोला की recipe का, इसको बनाने का। then there is KFC, so इसकी जो recipe है ये split है,
0: कितना पैसा मिलता रहेगा ना इनको जिनको कोका कोला की recipe मालूम होगी उनको
1: 100% यार, एंड कितना ट्रस्ट रहता होगा। ये जो रेसिपी है ये स्प्लिट है बिटवीन टू सप्लायर्स, सो नोबडी हैज द फुल थिंग।
0: हाँ, दोनों को आधा आधा बताया,
1: दोनों को आधा आधा बताया गया है।
0: वो दोनों सप्लायर्स मिल गए और केएफसी का कुछ और खोल दिया तो
1: पता नहीं। यू नो WD-40 वो जो होता है,
0: हाँ, पता है जिससे वो की आवाज नहीं आता।
1: या सो नेवर पेटेंट, सो इट नेवर हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। सो एक स्ट्रेटजी है कंपनी ने एक्चुअली में इसे स्टार्ट किया था, पेटेंट एक्सपायर आफ्टर 20 इयर्स एंड रिक्वायर फुल इंग्रेडिएंट डिस्क्लोजर। तो इन्होंने कभी इसको पेटेंट ही नहीं किया, तो इसलिए इसकी जो रेसिपी है इसका जो फॉर्मूला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आता है ना वैसे चल रहा है।
0: WD-40
1: का। देन देर इज चार्टर यूज जो कि 130 हर्ब्स एंड प्लांट्स का बनता है। ओनली 2 मॉन्क्स है जिनको इसकी रेसिपी पता है एंड दे लिव इन आइसोलेशन।
0: चार्टर यूज क्या होता क्या है ये मेरे को वो भी नहीं पता।
1: सो हर्ब्स वगैरह की एक चीज है, हर्ब्स 130 हर्ब्स होते हैं इसमें एंड प्लांट्स होते हैं। देन डॉक्टर पेपर कोल्ड ड्रिंक, 3 पीपल नो द रेसिपी एंड इट सिट्स इन अ वॉल्ट इन टेक्सास।
0: डॉक्टर पेपर कितने लोगों को पसंद आता है मुझे आज जानना है, डॉक्टर पेपर कितने लोग, क्योंकि मैंने देखे काफी बार उसके कैंस होते हैं डेली स्टोर में और ये सब, पर मेरा कभी ऐसा मन नहीं किया है लेने का।
1: तुमने कभी ट्राई किया है?
0: मैंने कभी ट्राई किया।
1: Then try it, ना?
0: But मेरे को ऐसा इतना कुछ भारी भी नहीं लगा, मतलब नाम भी उसका बकवास ही है, डॉक्टर पेपर क्या है ये नाम।
1: अगर किसी ने डॉक्टर पेपर पी है,
0: What is so
1: मैंने
0: special
1: पी है
0: about?
1: लेकिन मेरे को याद नहीं है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, लेस देन कोका कोला, मोर देन फेंटा, समथिंग लाइक दैट।
0: अच्छा, ऐसा?
1: या मुझे जो जितना याद है, मैंने इतनी ज्यादा नहीं पी है, बट अगर आपने रिसेंटली डॉक्टर पेपर पी है, अगर आप एलेबोरेट कर सकते हो कि इसका टेस्ट कैसा है टू रुजबे, तो प्लीज शेयर,
0: प्लीज बताना।
1: 0800
0: मैं बताऊं कौन सी ऐसी रेसिपी है जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है लेकिन जो मैं जानना चाहूंगा। अमूल बटर,
1: अमूल बटर,
0: अमूल चीज, ये दोनों के रेसिपीज जानना चाहूंगा मैं।
1: या बहुत यम होता है यार।
0: हाँ वही तो, अमूल बटर मतलब नेक्स्ट लेवल होता है यार, लेकिन बहुत महंगा भी मिलता है ना वो।
1: या सो और कौन सी रेसिपी है जो आप जानना चाहेंगे, आपको क्या बहुत टेस्टी लगता है, यू लाइक कि यार इसकी पता ही नहीं क्या रेसिपी है, कैसे बनाते हो
0: इसकी रेसिपी, अगर पता चल गई ना तो लाइव झिंगा लाला ऐसा।
1: या ऐसा क्या है वो भी आप शेयर कीजिए. वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, खाने की चीज हो सकती है.
0: जैसे मैंने बोला अमूल बटर और अमूल चीज, ये दोनों में से मेरे को एक्चुअली अमूल चीज फिर भी ठीक है, मेरे को अमूल बटर की रेसिपी चाहिए. अमूल चीज इज आल्सो नाइस बट आई लाइक यहां का चीज आल्सो.
1: मेरे को भी यहां का चीज अच्छा लगता है.
0: अमूल चीज मेरे को थोड़ा प्लास्टिक ही लगता है. ओह नो दैट इज रियली बैड कमेंट.
1: क्या यार.

0: Super, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए और अभी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ये
0: टिंसल टाउन।
1: टिंसल टाउन में हम आपके लिए बॉलीवुड की खबरें लेकर आते हैं और बॉलीवुड की अगर बात करें तो एक मूवी आने वाली है, आयुष्मान खुराना को काफी समय बाद हम फिर से देखने वाले हैं।
2: यस, और ये जो मूवी है ये है पति पत्नी और वो दो। पहले आई थी पति पत्नी और वो, और फिर एक और रीमेक आया पति पत्नी और वो का, एंड देन पति पत्नी और वो दो। बेसिकली इसमें क्या है, पति है, पत्नी है और उसकी दो है।
1: क्या दो
2: और
1: है?
2: और बाहर दो और
1: अच्छा?
2: है। हाँ,
1: ये अभी ये इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्या? चलो देखते हैं, सुनते पहले ट्रेलर है क्या।
3: बच्चन साहब के शहर से हैं हम। आदमी शिष्टाचारी हैं, पति आज्ञाकारी हैं, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं। समस्या? अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या?
4: कीप काम बे।
5: घर पिंजरा लगता है आपको?
6: पति ने खुद को जानवर कहा, जे भूल गए, घर को पिंजरा कहा, जे पकड़ लिया।
4: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर, शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
5: खातून कौन थी? Who was the lady?
6: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
5: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
6: कल तक पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेके सब कार्य कर रहे थे, डर नहीं था किसी टाइप का, अचानक घबराहट से होने लगी।
7: कैसे हैं आप दामाद जी?
8: कौन दामाद जी भाई?
7: चंचल को आपकी गोद में देखकर आत्मा तृप्त हो गई हमारी।
6: क्यों? सामने पत्नी है वहाँ।
9: मैं गृह जीवन के चीचा लेदर लग गए, चीचा लेदर।
6: काकी हो गए? So
10: cute. You too.
11: ये साली खाना बना कर खिलाती है क्या? कहीं नॉन वेज तो नहीं खाने लगे पांडे जी?
6: हाय।
5: काम बोल के काम वास्ता पूरी करता है।
12: ताली तेरी चोटी है।
13: अबे होटल के कमरे में गाड़ी।
1: अच्छा, काफी लोग हैं इस मूवी में।
2: So, इसमें वामिका का भी है, रकुल प्रीत सिंह, टिस्का चोपड़ा भी है, बेसिकली सारा अली खान भी है।
1: सारा अली खान भी है
2: या
1: इसलिए मन नहीं लग रहा था ट्रेलर में शायद।
2: पत्नी इज वामिका, सो वो नंबर वन इज सारा अली खान एंड वो नंबर टू इज रकुल प्रीत।
1: यार ये ऐसी मूवीज यार कपिल शर्मा करता है वही सही लगता है मुझे लगता है।
2: पता नहीं, कई बार ट्रेलर जो होता है ना पूरी नहीं ऐसा श्योर होता है।
1: आयुष्मान खुराना से इससे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं मुझे से लगता है।
2: या 100%
1: या दिस इज लाइक ऑल दैट स्टीरियोटाइपिकल डायलॉग्स। मनुष्य जात से
2: विजय राज भी है बाय द वे इस मूवी में। विजय राज वो कौवा बिरयानी एंड आल्सो
1: कौवा बिरयानी। ओ व्हाट इज दिस यार, दिस
2: अरे अगर किसी को ऐसा रेफरेंस चाहिए तो
1: कौवा बिरयानी।
2: सो वो भी है। तिग्मांशु धुलिया भी है इस मूवी में। सो या क्वाइट अ कास्ट इन द मूवी। मतलब अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, हंसी चाहिए, मेरे को लगता है कि वैसा
1: वाली थोड़ी नेटफ्लिक्स देखिए।

0: विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल की आवाज और ये बढ़िया सा गाना आप सुन रहे थे। वैसे आज फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड 5 बजे के बाद आपको कभी भी मिल सकता है। फ्लाई अवे फ्रेंजी में होगा ये कि एक कोड आपको हम देंगे, उस कोड को आपको सही जगह पे जाके फिल इन करना है और वैसा करके आपका नाम शामिल हो जाएगा इन द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल्स जो जीत सकते हैं एक रिटर्न टिकट फॉर फीजी।
1: या ये आपके नाम हो सकती है। सो 5 बजे के बाद ये रहेगा, किसी भी टाइम पे सुनते रहेगा। एंड इस समय पर वैसे मेट गाला हो रहा है रुजबे। मेट गाला में हमारे कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज लाइक मनीष मल्होत्रा, करण जौहर, ये भी सब पहुंचे हुए हैं। एंड ईशा अंबानी, शी इज ऑलवेज देयर। एंड इस बार की जो मेट गाला की थीम है ना, द थीम इज कॉस्ट्यूम आर्ट। सो कॉस्ट्यूम आर्ट इस बार की थीम है। सो हमेशा थीम होती है, तो दिस इज लाइक अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सो कोर आइडिया क्या होता है, यू बिकम अ पीस ऑफ आर्ट, यू आर नॉट वेयरिंग अ आउटफिट मेट गाला में। कई बार ऐसे बोलते रहे कि ये मेट गाला में क्या पहन के गए हैं, तो एक थीम दी होती है, उस थीम में आपको आउटफिट नहीं, आप यू नीड टू बिकम अ पीस ऑफ आर्ट इन दैट थीम। सो मतलब क्लोथ्स जो कैनवास हो गए, बॉडी आपकी गैलरी है, उस वेसेस को लेके चलिए।
0: सो आर्टिस्ट विल बिकम द आर्ट।
1: या सो इस बार की जो थीम है वो कॉस्ट्यूम आर्ट है, जहाँ पे आउटफिट्स विल बी इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग, स्कल्पचर हो गया, कल्चर आर्ट फॉर्म हो गया, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गए वहां से।
0: अरे मैंने एक को देखा यहाँ पे, उसने डॉलर का नोट अपनी आंखों पे पहना है गॉगल्स के जैसा।
1: या वो भी सही है, आर्ट है वो भी,
0: आर्ट है आर्ट।
1: या तो कॉस्ट्यूम आर्ट बेसिकली इस बार की थीम है। एंड ईशा अंबानी इज वेयरिंग, उसने
0: एक तो नाइट ड्रेस पहन के आया है यहाँ पे, नाइट गाउन है ये, देखो ना बाथरूम जैसा लग रहा है ये।
1: वैसा लग तो रहा है,
0: लग रहा है ना बाथरूम जैसा। अच्छा,
1: सो ईशा अंबानी इज वेयरिंग अ गोल्डन साड़ी उसने पहनी है, ऑफ कोर्स वहां पे कैरी की है, लेकिन उसने साथ ही साथ गजरा तो लगाया है, लेकिन हाथ में मैंगो है। मैंगो को ऐसा रस्सी बांध के थोड़ी सी, वो जैसे पर्स कैरी करते हैं ना,
0: वो आम का पेड़
1: बनी होगी। बट या सो इस वे से एक्चुअली में
0: ईशा अंबानी है भी कौन, मेरे को मालूम भी नहीं, मतलब मैं उसको शायद देखे ऐसे पहचान भी ना पाऊं।
1: ईशा अंबानी अंबानी इसकी बहू
0: है कि बेटी?
1: सॉरी बेटी,
0: ये देखो आपको खुद को कंफ्यूजन है, ऐसा ही होता है नेपोटिज्म में, पता नहीं चलता कौन क्या है,
1: पता ही नहीं चलता है। सो शी इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो।
0: या नेपोटिज्म,
1: या तो ईशा अंबानी है वहां पे। सो या ये होता है मेट गाला। सो इस बार अगर आप ऐसे थीम, ऐसी फोटोज वगैरह देखेंगे तो ये बार का, ये बार ऑफ इट,
0: ये बार का थीम आर्ट नहीं, ये बार का थीम कार्टून है।
1: वो हमेशा हर किसी को लगता है,
0: सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये
1: इट्स अ कॉस्ट्यूम आर्ट। रुजबे
0: जितने नाम मैंने देखे हैं, वो एक ऐसा है लड़की ने ड्रेस पहना है और ऐसे हाथ हर जगह से उसके ऊपर आ रहे हैं, ये क्या आर्ट है ये?
1: वो किसी पेंटिंग से इंस्पायर्ड रही होगी। सो इसमें क्या है, कॉस्ट्यूम आर्ट में यू कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पेंटिंग, एक फेमस कोई पेंटिंग है उससे भी इंस्पायर्ड हो सकते हो। तो वो किसी पेंटिंग से इंस्पायर्ड होके भी उसने अपना कॉस्ट्यूम बनाया होगा।
0: जैसे एक ऑकलैंड गाला भी हो,
1: ऑकलैंड गाला,
0: आई थिंक ऑकलैंड नीड्स ऑन ऑकलैंड गाला।
1: ऑकलैंड गाला की जगह वो करवा लो ना जो बचपन में होता था स्कूल में, तुमने कभी अटेंड नहीं किया,
0: आपने नेता की बात कर ली, अभी कोलकाता इलेक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी यार। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है कोलकाता में।
1: तो अभी तक किसकी सरकार थी वहाँ पे?
0: अभी तक ममता बनर्जी की सरकार थी वहाँ पे।
1: मतलब वो पार्टी कौन सी है?
0: एक अलग, मतलब वो कांग्रेस के साथ अलाइन होती है, बट वो आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका पार्टी का नाम क्या, आई हैव नॉट दैट मच इनटू पॉलिटिक्स। बट या ये जो न्यूज़ है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया है, हर जगह आ गया है न्यूज़, मोदीज बीजेपी विंस वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम।
1: ओके,
0: हर जगह मोदी का नाम तो पहले ही आता है, बीबीसी में भी आया है,
1: हर जगह भी आता है।
0: Conquers one of India's toughest political frontiers.
1: Oh wow.
0: जी, काफी जगह पे, तो काफी लोग आज खुश होने वाले हैं, कुछ लोग सैड भी रहेंगे आज शायद। But anyway, जो भी आपका,
1: If you are from West Bengal, क्या हो आप, खुश हो, सैड हो, मैसेज करके बता सकते हैं। What is your take on this? 5599 पे ही
0: क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, 5599 पे रखो, बेटर है। कॉल करके मत कोई शेयर करो यहाँ पे,
1: मेरे पास जीरो नॉलेज है।
0: या नॉलेज होके भी कोई फायदा नहीं है वैसे भी.
1: अनदर थिंग,
0: यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बात करना मुझे लग रहा है कि अलाउड नहीं है ना अपने को.
1: न्यूट्रल, या न्यूट्रल बात कर सकते हैं, अपना टेक दे सकते हैं.
0: हिंदी में बोल देंगे ना, किसको समझ में आएगा.
1: जरूर
0: नहीं. ओके,
1: बताती हूँ.
0: एनीवे, 5 बजे के बाद आज आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें रहने वाली है. यहाँ पे मौका भी मिलेगा आपको यहाँ पे कॉल करके बात करने का. 0800-004-866 इस नंबर को आप सेव कर लीजिए. इन अ फ्यू मिनट्स वी विल बी एंटरिंग 5 o'clock वाला आवर. बट अभी के लिए थ्रोबैक में ये मस्त गाना.

0: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
1: Brought to you by Bedzaras, Manuko and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
2: Super se upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
3: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats. Jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats. Brought to you by PFSL. Providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
4: Hum, accurate traffic.
5: Moody's giving you a Range Rover.
6: A cloudy evening across Auckland, down to a low of 15 degrees tonight. Out of the city on the southern motorway, it's just shy of an hour to drive to Drury. Looking busy, green lane to Mount Wellington and then again Tuckanini to Drury. The southwestern is slow south of Puanui Road. On the northwestern, it's pretty heavy all the way to Te Atatū, 40 minutes to Massey. The northern is slow to Esmond and at Albany.
5: Shop Moody Plant Protein Balls in supermarkets for your shot at 5K and a Range Rover. T's and C's apply.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
8: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
9: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
8: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
9: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
10: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वेस्ट सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
11: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
12: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं. ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स. कार, SUV, ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स. डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी. 4x26 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोटोए, प्लस 24-hour मोबाइल सर्विस. फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstires.co.nz और देयर फेसबुक पेज. RPS टायर्स, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट.
13: In this final hour, when lives hang in the balance, will you answer NZ Blood's call?
14: I do biscuits!
13: Of course!
15: Join forces and save lives. Plasma donations help create up to 11 life-saving products. nzblood.co.nz.
2: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. A Gloria Vale man has been sentenced to 10 months home detention for assaulting four boys he was supervising at the West Coast sect. Vigilant Stan True was convicted of seven charges, some of which were representative at the Greymouth District Court in January. RNZ reports the 43-year-old used axe and pitchfork handles to assault the boys between 2001 and 2013. Councils have been given an ultimatum to come up with their own amalgamation plans or have the government do it. Local Government Minister Simon Watts says either way, change is coming.
17: For areas that choose not to come forward, the government will implement a backstop process. And this will ensure that reform happens across the entirety of New Zealand.
16: Two people have been taken to hospital, one in a serious condition after an incident in West Auckland. St John sent four ambulances and a rapid response unit to Swanson Road in Rānui at midday. Police have been approached for comment. Art history is being celebrated through fashion at this year's Met Gala. African-American icon Angela Bassett told Vogue about the inspiration for her pink dress.
14: Well, this was based on a painting called Girl in the Pink Dress, painted during the Harlem Renaissance, 1927.
16: To Rugby League with Machinery House, the impending NRL team additions, the PNG Chiefs and Perth Bears mean clubs are moving quickly to secure key talent. Warriors halfback Tanner Boyd is reportedly in negotiations over a multi-year contract extension. And it looks as if the All Whites have secured another World Cup warm-up game. The Miami Herald is reporting that the All Whites will play Haiti in Florida on June the 3rd. New Zealand football is yet to confirm the game.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi brand nahi hai.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: Weather ka hal aaj theek hi hai, acha hi hai, matlab feels like 18 degrees right now. Aap log bahar ho, aapko pata hai better. Hume yahan se studio mein se to badhiya lag raha hai sab. 5:33 ko hoga sunset. Northeasterly is dying out this evening. Kal ka din barish bhara rahega.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
0: Hamesha saath dene wale dost.
1: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
2: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
20: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
19: 5:02, aaj panchwa din, panchwe mahine mein. Aapka swagat hai Drive Show mein. Hi.
21: Hi Rusbe, a very very good evening to you. Papa Drive at 5 aapke liye shuru ho chuka hai. Yes.
19: Papa Toto at 5?
21: Power Drive.
19: Power Drive at 5.
21: Papa Toto nahi.
19: आज इस घंटे में आपके लिए हम फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड लेकर आएंगे और आज ट्यूसडे है ना तो आज आपके लिए हम ये गेम लेकर आने वाले हैं.
2: कैरेक्टर गेस.
19: कैरेक्टर गेस में आपके लिए हम एक कैरेक्टर लेकर आएंगे और आपको गेस करना है कि ये कैरेक्टर कौन सा है. हम उसके बारे में थोड़े हिंट्स देंगे आपको.
21: या तो ये पर्सनैलिटी कोई भी हो सकता है. ये आप जिसे जानते हैं डेफिनेटली उसमें से कोई होगा. लेकिन ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, एनीवन, कोई हिस्ट्री में भी इंसान हो सकता है ये.
19: ठीक है.
21: या
19: तो सोचा है आपने कोई कैरेक्टर के बारे में?
21: मैंने अभी तक तो नहीं सोचा है. तुमने लगता है सोच लिया है?
19: नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसा सोचा जा सकता है अभी के अभी ऑन द स्पॉट.
21: ठीक है, तो बताओ आज रुज़बे हिंट देने वाला है.
19: मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ने ऐसा साथ में एक सोचना चाहिए कैरेक्टर और वो कैरेक्टर सेम निकलना चाहिए. सैंडी,
21: ऐसा हमेशा नहीं होता है. अच्छा चलो सोचो, तुम हिंट दो.
19: मैं जो कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ, ये कैरेक्टर जीवित नहीं है.
21: ये जीवित नहीं है?
19: नहीं है.
21: ओके, तो ये पॉलिटिशियन है, ये फिल्म इंडस्ट्री से है, म्यूजिक इंडस्ट्री से है,
19: कहीं से भी हो सकते हैं. ओ आपको बताना ये भी है?
21: हाँ,
19: ये भी मैं बताऊं?
21: तो एक तो कैटेगरी बताओ ना.
19: तो
21: जीवित
19: ये
21: नहीं है. ओके,
19: जीवित नहीं है और ये हमारे ये जीवित नहीं है लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द काफी है. अभी नहीं लेकिन पहले ये हमारे इर्द गिर्द काफी होते थे.
21: हमारे इर्द गिर्द काफी होते थे?
19: इर्द गिर्द काफी होते थे.
21: ये जीवित नहीं है? तुमने इंडस्ट्री नहीं बताई. कौन सी इंडस्ट्री?
19: इंडस्ट्री नहीं बताना अलाउड है.
21: क्यों नहीं अलाउड है?
19: यही तो गेम है ना. ये आप कॉल करो, यहाँ पे सवाल पूछो, फिर मैं बोलूंगा हाँ या ना.
21: ओके, सो कॉल नाउ ऑन
19: 0800 00.
21: हम जितने सवाल आप यहाँ पे पूछेंगे ना,
19: हाँ या ना वाले जवाब पूछो आप. हाँ या ना वाले जवाब होने चाहिए आपके.
21: आप पूछो क्या ये है. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉल करके पूछो कि रुज़बे जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वो एक एक्टर रह चुके हैं, इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते हैं, तो वो हाँ या ना बोलेगा.
19: तो आप, मैं उसका आंसर दूंगा.
21: ठीक है, तो कॉल नाउ 0800 00. हम
19: क्या वो एक्टर रहे हैं?
21: नहीं, मेरा सवाल तुमसे वो नहीं है. मेरा सवाल है कि ये जो पर्सनैलिटी है, क्या इन्होंने कभी एज अ लीडर रोल निभाया है?
19: एज अ लीडर?
21: या
19: हाँ
21: बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन था. और अब गाइस आपको समझ में आ गया कि लीडर है तो कौन सी फील्ड नहीं हो सकती है,
19: कौन सी फील्ड नहीं हो सकती है,
21: या कौन सी फील्ड हो सकती है.
19: फिल्म में भी लीडर हो सकते हैं ना, कि लीडिंग वो फिल्म के बहुत ही माने जाने लीडर थे.
21: नहीं नहीं, लीडर इन्होंने एज अ लीड किया है टीम को.
19: लीड किया है मूवी को, ऐसा भी हो सकता है ना.
21: लीड किया है टीम को, वो लीडर होगा ना.
19: अच्छा अच्छा, वैसा
21: ठीक है. सो नो वन, मैंने आपका इतना काम आसान कर दिया है. वन कैटेगरी इज गॉन फ्रॉम द लिस्ट, वन और टू कैटेगरी इज गॉन फ्रॉम द लिस्ट. नो यू कॉल हेयर 0800 00 हम पर आप सवाल पूछिए एंड आगे बढ़ते हैं. सो फार हमारे पास हिंट है कि ये इंसान जीवित नहीं है.
19: जीवित नहीं है
21: और ये हमारे इर्द गिर्द बहुत रहते थे
19: हमारे. हाँ,
21: ये हमारे इर्द गिर्द बहुत
19: हमारे रहते, मतलब
21: थे.
19: काफी लोगों के इर्द गिर्द रहते थे ये एक टाइम पे.
21: एक टाइम पे ओके. एंड तीसरा है कि वो लीडर रह चुके हैं.
19: हाय, आपका स्वागत है. हेलो, मेरा नाम बोल रहे हो आप? मैं जीवित हूँ.
3: धर्मेंद्र.
19: क्यों लगता है आपको धर्मेंद्र? क्योंकि जीवित नहीं है.
3: पता नहीं तो कहाँ जीवित है.
19: हाँ, मतलब उसके लिए लग रहा है आपको.
3: और फिल्म इंडस्ट्री में वो काफी लीडिंग पोजीशन में थे.
19: वो पॉलिटिक्स में भी थे ना?
21: पॉलिटिक्स में नहीं. हाँ, क्या हेमा मालिनी है
3: उसकी, उनकी वाइफ हेमा मालिनी, वो भी पॉलिटिक्स में थी.
19: दैट्स राइट, दैट्स राइट. क्या नाम है आपका?
3: और ईशा अंबानी, सैंडी ईशा अंबानी डॉटर ऑफ अंबानी फैमिली, नॉट डॉटर इन लॉ.
21: नहीं नहीं, वो उसी समय पता चल गया.
3: मैंने बोला ईशा अंबानी को डॉटर इन लॉ बना दिया यार आप.
21: अभी क्या करें, अंबानी से इतना वास्ता नहीं है ना. वो भी अभी तक उन्होंने मूवीज नहीं की.
3: वो भी है.
19: मतलब वो मूवीज तो नहीं करेगी.
21: हमें हीरो हीरोइन के बारे में ज्यादा पता रहता है ना.
19: हाँ हाँ, आपको, आप जानते हो ईशा अंबानी को?
3: पर हाँ, हम जानते हैं. हमारे
19: उनकी शादी अटेंड की होगी ना आपने, पांच महीनों वाली
21: पांच महीने की शादी.
3: नहीं, गुजराती है वो.
19: हाँ हाँ, okay. नहीं देखो, गुजरातियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं. इसको गुजराती बोल के गुजराती वालों की, गुजरातियों की ये मत करो आप, क्या बोलते, तौहीन मत करो.
3: नहीं नहीं, और दूसरी बात वो जो बंगाल में जो भाजपा आई ना, तो उसके पहले तृणमूल कांग्रेस थी, तो वहां पर भी गुजराती आ गए. देखो
19: हाँ,
21: उससे पहले क्या था,
19: तृणमूल कांग्रेस.
3: नहीं,
19: जोक्स अपार्ट, बोलने के बाद जोक्स अपार्ट. योर जोक इज गेटिंग द कंट्री अपार्ट. नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ.
3: मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र.
19: धर्मेंद्र ठीक है. नहीं, गलत जवाब. क्या नाम है आपका?
21: डेंसी. ठीक है,
19: नाम याद रखना सब लोग. ये इन्होंने जोक मारा था, डेंसी ने जोक मारा.
21: हमने कुछ नहीं किया यार.
3: नहीं, नहीं।
19: वस्ती कर रहे डेंसी. okay, आपको लोग अच्छे से याद रखेंगे.
21: बाय बाय. कुछ आंसर्स आए हैं.
3: चलो,
21: थैंक यू डेंसी. कुछ आंसर्स आए हैं हमारे पास, तो आप भी कॉल कीजिए एंड हिंट एक और पूछिए. सो फॉर द हिंट इज कि इन्होंने,
19: और धर्मेंद्र भी नहीं है.
21: धर्मेंद्र इज नॉट द राइट आंसर. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री.
19: आप कुछ मत बोलो, आपने बहुत बोल दिया. देखो हिंट आ गए यहाँ पे.
21: हाँ हाँ,
19: काफी हिंट आ गए, मतलब काफी आंसर्स आ गए. एक को कट इट शॉर्ट, सो बोरिंग. वेल, यू हैव अ डायल एज वेल.

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: Back your backyard beats. ये हम New Zealand Music Month में ये लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं about our local artist.
3: Yes. So आज के जो हमारे local artist हैं, इनका नाम है AJ Sound. AJ Sound के गाने हमने पहले भी New Zealand Music Month में प्ले किए हैं
2: और ऐसे भी काफी बार प्ले किए हैं.
3: So AJ Sound, इनका नाम ऐसे अर्जुन है, who was born in Mumbai and grew up in New Zealand. Singer है, songwriter है, producer भी है, he is a director also.

0: बेटा मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: Hum. Accurate traffic.
4: Checked your KiwiSaver fees lately?
5: A cloudy evening across Auckland, down to a low of 15 degrees tonight. Out of the city on the southern motorway, it's just shy of an hour to drive to Drury. Looking busy, green lanes Mount Wellington and then again Takanini to Drury. The southwestern is slow south of Puanui Road. On the northwestern, it's pretty heavy all the way to Te Atatū, 40 minutes to Massey. The northern is slow to Esmond and at Albany.
4: See what you could save with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
6: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
7: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदो वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।

0: better.
1: Find the perfect Mother's Day gift at Bunnings. Bring your mum in, have a coffee and have a look around. We've got gifts for the do-it-self mum, the crafty mum and the gardening mum. Get mum a gift she'll love from Bunnings.
2: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
3: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
4: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed Business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
5: The Drive Show with Sandy and Rusby.
6: Hamesha saath dene wale dost.
7: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $4.49. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: Power Drive at 5.
5: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
9: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आज character guess में मैंने आपको सवाल पूछा था. काफी लोगों ने यहाँ पे सही guess कर लिया already. लेकिन Sandy call करके अभी तक किसी ने सही guess नहीं किया है.
10: Yeah, तो अभी भी वक्त है यहाँ पे call करने के लिए. The first hint was
9: कि क्या था ये जीवित नहीं है. और हम इनके इर्द गिर्द थे at some point
10: काफी लोग इर्द गिर्द रहे हैं. एंड थर्ड वॉज कि ये लीडर रह चुके हैं.
9: काफी बार इनका नाम यूज होता है, एसोसिएट होता है विद समथिंग एल्स, एज इन विद मनी.
10: या मनी के साथ एसोसिएट होता है. सो अगर किसी को अभी कॉल करनी है यहाँ पे, अभी कॉल करके यहाँ पे बता सकते हैं 0800 00 हम पर आंसर क्या हो सकता है. अगर
9: मतलब सिर्फ मनी के साथ एसोसिएट नहीं होता है, बाकी चीजों के साथ भी एसोसिएट होता है ना.
10: मनी के साथ तो एंड में आके एसोसिएट हुआ.
9: हाँ, एंड में आके मनी के साथ एसोसिएट हुआ.
10: ये कह सकते हैं
9: जो सबसे लंबा चला.
10: या सो आप
9: जो चले जा रहा है.
10: मेरे को लगता है इनफ हिंट है. ये
9: इनफ हिंट है ना, अभी पता चल गया, इजी है.
10: 0800 00 हम पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो बता दें कि ये सुपर सिटी में जो शोज होने वाले हैं, इसी फ्राइडे को रुजबे जावेद अली परफॉर्म करने वाले हैं, लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. अमेजिंग शो वैसे इनका रहने वाला है. टिकट्स अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है, फ्यू कुछ टिकट्स बाकी है, आप खरीद सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट staralliance.entertainment.com. सिर्फ $59 से ये टिकट है जो आपके नाम हो सकती है.
9: जी, फटाफट टिकट ले लीजिए, इसी वीकेंड पे ये शो है. कॉमेडी अगर आपको पसंद है तो मुनावर फारूकी आ रहे हैं यहाँ पे लेकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो. ब्रूस मेसन सेंटर पे ये होने वाला है 23 मई को, जहाँ पे रॉ रियल अनफिल्टर्ड कॉमेडी आप एक्सपीरियंस करेंगे. फियरलेस स्टोरी टेलिंग होती है, शार्प होता है इनका स्टोरी टेलिंग काफ़ी, और इनका ह्यूमर विदाउट फिल्टर होता है. तो डेफिनेटली इफ यू लाइक बोल्ड एंड अनफिल्टर काइंड ऑफ कॉमेडी, देन दिस शो इज़ फॉर यू. ticketmaster.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. मुनावर फारूकी लाइव इन ऑकलैंड विथ हिज स्पेशल कॉल्ड धंधो.
5: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
11: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
9: And answer देने का time आ गया है. तो answer जो था आज का, जो character guess में हमने सोचा था character, मतलब मैंने जो सोचा था character के बारे में, that was none other than मोहनदास करमचंद गांधी.
10: महात्मा गांधी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे. And thank you so much जिन्होंने यहाँ पे answers लिख के भेजे है 5599 पर.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह plus some important news as well. Sandy, क्या है आपके पास हमारे लिए?
1: या कई बार कुछ important news भी आपके साथ हम यहाँ पे share करते हैं. Well, मेरे पास ये news है कि it's almost tax season.
0: जी.
1: या.
0: तो अभी tax return मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है?
1: So tax season आ चुका है. Will you get a refund or not? So Indian Revenue इस समय पर automatic tax assessments जो है काफी लोगों को भेज देते हैं. So who gets a bill? So, even if you have been earning income in straightforward way, you could end up with a bill or a refund.
0: Oh.
1: So, that can happen जब आपकी income change होती है during the year.
0: जी.
1: तुम्हारी change हुई है अगर तो.
0: So, like for example, अगर आप एक low income पे थे start of the year and then your income has suddenly gone up, there could be a possibility that you might have to pay more tax.
1: Yes,
0: क्योंकि आपका initial taxation शायद कम हुआ होगा और फिर बाद में वो बढ़ गया.
1: Yeah, so sometimes it can happen if income is not taxed correctly as well. So IRD will write off tax to pay if it's less than $50. Yeah, so if you get a bill, you will have until 7th Feb next year to pay it. अगर आपके पास bill आता है तो. What if you are due to refund? So if you have paid too much tax, तो IRD जो है ये आपको refund देगी आपके bank account में. लेटर भी आता है उसका, मतलब आपके IRD में messages में आता है by the way. अगर आपने emails उसका notification on करके रखा है emails पे, तो email पे आएगा वो. बट ईमेल पे ऐसा वो प्रॉपर नहीं आता है, वो ईमेल पे आता है कि जाके वहां जाके पढ़ो,
0: ऑनलाइन जाके चेक करो. मैसेज भी आता है
1: ऑनलाइन जाके चेक करो, या
0: हमने आपको एक मैसेज भेजा है आपके आईआरडी वाले पोर्टल पे जाके आप चेक करो मैसेज. क्योंकि स्कैम्स बहुत होते हैं ना सैंडी, तो इसलिए दे कांट सेंड ईमेल्स और लाइक डिटेल्स ऑन ईमेल्स.
1: जैसे 2025 में ना रुजबे 3.63 मिलियन कस्टमर्स को एंड ऑफ ईयर टैक्स असेसमेंट ऑटोमेटिकली मिला था, जिसमें से 2.37 मिलियन रिसीव्ड रिफंड एंड 30,000 अराउंड हैड टैक्स टू पे.
0: अच्छा.
1: या 34200.
0: सो या इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. आप कौन से साइड पे रहने वाले हो इस साल, आपको लग रहा है इज इट गोना बी दैट यू गोना गेट टैक्स लाइक receive some refunds
1: या bill आएगा?
0: Yeah, bill आने वाला.
1: But like you said, scammers के बारे में. So important point, scammers इसी time का इंतजार करते हैं, उनके पास यही time का advantage होता है pretending to be the tax department. तो be very careful, आपको जिसकी call आ रही है आपको अपने bank account details किसी को provide नहीं करने हैं.
0: जी, आपको make sure करना है कि सब कुछ IRD के website से ही हो रहा है, तो आप IRD के website पे जाके register कर लीजिए आपका profile वहाँ पे and make sure that all the transactions you're doing is through the IRD official website.
1: Official website वो properly check कीजिएगा, किसी भी call पे अपने credit card, debit card, कोई भी details आपको देने की जरूरत नहीं है.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
4: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor raha hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा. प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
4: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM. हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड. यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ, विन अ ट्रिप टू फिजी, ओनली ऑन हम ऑन रोवा. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई. Accurate traffic.
6: What's my house value.co.nz.
7: A low of 15 degrees tonight. Expect it to be cloudy across Auckland. Out of town on the southern motorway, we've got busy patches, Green Lane right through to Papakura. You're looking at 40 minutes to get to Monaco, and about the same time out to Massey on the northwestern. It's slow there all the way out to Te Atatū. On the southwestern, you've got traffic from Massey Road down to the southern, and the northern is pretty heavy to Esmond.
6: Looking to sell your home? Visit whatsmyhousevalue.co.nz.
8: Ek sapna hai, sapna कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का.
9: हम है क्रू केयर. सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स के इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत. Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
10: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
11: क्यों, क्या हुआ?
10: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
12: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
13: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर. फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर. सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार. क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31st May तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
14: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
15: Atakia, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at ikea.co.nz.
16: IKEA.
17: Meniko Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papa Toy Toy mein, jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath. Do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka. Tickets sirf $20 hain. Taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papa Toy Toy mein.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Hamesha saath dene wale dost.
4: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
2: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे Flyaway Frenzy का कोड हम आपको देते हैं, जो आप जाके रोवा ऐप के जरिए या वेबसाइट के जरिए यू कैन पुट इट इनटू द Flyaway Frenzy बैनर.
1: या
0: तो इससे आपका नाम शामिल हो जाएगा टू विन अ रिटर्न टिकट फॉर फीजी.
1: सो आज का कोड है बाइलो, BILO.
0: BILO.
1: या इट्स
0: बिल्लो, बिल्लो रानी,
1: बिल्लो रानी, ये वो वाला बिल्लो नहीं है, लेकिन या ये आज आपके लिए कोड है BILO. सो ये आज आपको एंटर करना है पहुंचकर हमारे रोवा ऐप पे.
0: अगर आपको चाहिए सीधा लिंक चाहिए तो FF5599 पे आप लिखकर भेजिए एंड वी विल सेंड यू द लिंक.
1: ये जगह का नाम है वैसे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक क्लब भी है, मतलब इस नाम के रेस्टोरेंट भी है, पोर्ट भी है वहाँ पे, इस नाम के रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे फीजी में. सो यस, बाइलो, बाइलो इसका नाम है, अगर मैं सही से बोल रही हूँ तो.
0: हंस का हो तो बाइलो, बाइलो वो वाला कोई गाना था ना ऐसा, बाइलो बाइलो बाइलो है. लेकिन आज का फटाफट आप भेज दीजिए BILO.
1: BILO बाइलो इज एक्चुअली, जितना मैं पढ़ रही हूँ, बाइलो इज यूज फॉर ड्रिंकिंग कावा डूरिंग, और ये वो होता है क्या? सो प्लीज कॉल करके बताओ यहाँ पे कोई यार इसके बारे में, व्हाट इज बाइलो. सो जितना मैं पढ़ रही हूँ, बेसिकली वो कप होते हैं जिसके अंदर कावा पी जाती है.
0: वाला.
1: हाँ
0: वो, नाइस, ओके.
1: ये कप्स होते हैं जिसे बाइलो बोलते हैं, जो कि रियल कोकोनट शेल के बनते हैं. सो इसी को बोलते हैं, या फिर जगह का नाम भी है. प्लीज़ कोई इसके बारे में इनलाइटन करे, अगर यहाँ पे कॉल कर सकता है 0800 00 हम पर, या फिर मैसेज करके 5599 पर. बट आपको फ़िलहाल ये कोड डालना है रोवा ऐप पे जाके. अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए कि कहाँ पे जाके इस कोड को एंटर करना है, FF लिख के भेज डालिए 5599 पर.
0: इनसे बात करते हैं, इनको पास है मतलब. हाय,
18: नमस्कारम
0: भाई.
1: नमस्कारम
18: सिंधी
1: जी.
18: ओ
11: बायलो नहीं उसके बिलो बोले
1: बिलो बोले
0: बिलो मैं बोला बिलो
11: हाँ बिलो में वो नमूना पिया जाए बायलो कोई वोट नहीं है
1: ठीक है सो बिलो है बिलो। और ये वही है ना वो कप को ही कहते हैं ये
11: हाँ बिलो जो बोले कहे जैसे फिजियन लोग तानुआ में फिजियन नहीं इंडियन भी पिए जैसे वो तानुआ में को फिजियन हो रहे ना वो तानुआ में वो लोग नमूना बने तो बिलो से चलावे वाला चला के पिए नमूना
1: बिलो है ये या सही
11: बिलो
1: तो बस गाइस बिलो है आज का वर्ड लेकिन बी आई एल ओ
0: थैंक यू सो मच आदि भाई थैंक यू
11: देखो देखो बी आई जो ना है और बी ई है वो पनाउंसके रकम में है
1: ओके
0: नहीं समझ में आया इसको लेकिन कोई बात नहीं थैंक यू आदि भाई थैंक यू
11: कोई नहीं समझ गए समझ गए
1: हाँ समझ गए
0: थैंक यू थैंक यू
1: थैंक यू
0: हाय आपका भी स्वागत है
16: हेलो भैया राइट है
0: राम राम
1: जी राम राम
0: सीताराम
1: सीताराम हाँ
16: हाँ यार नितिन नायडू बात करता है हैमिल्टन से
0: हाँ अरे हैमिल्टन से अभी भी सुन रहे हैं हमें क्या बात है नितिन नायडू जी
16: हाँ भाई हम भी फीजी के जो बिलो आप कहते हैं ना
0: हाँ
16: तो बिलो बाउल को कहते हैं बाउल
0: बाउल
1: वही है ना जिसमें कावा पीते हैं
16: फीजियन लैंग्वेज है वो फीजियन
0: लैंग्वेज
1: फीजियन लैंग्वेज है वो
0: बिलो कहते हैं
1: ओके आपके पास है घर पे
16: हाँ हाँ हमारे घर पे
0: नहीं बढ़िया
1: मेरे को लगता है मोस्टली घर पे रहेगा ना वो
0: चलो बढ़िया है थैंक यू सो मच नितिन नायडू
1: थैंक यू अच्छी बात
0: हाय आपका भी स्वागत है
18: हाय रुस्बे कैसे हो
1: बढ़िया आप कैसे हैं
18: अच्छे जी क्या बायलो बायलो कर रहे हो आप
1: वही ना बिलो हो गया वो तो हम इंग्लिश का बायलो कर रहे थे
0: मैंने अनजाने में मैंने सही गेस कर लिया था
18: आपने सही गेस किया था
0: क्योंकि
18: कावा पीने वाला जो कोकोनट शेल होता है
0: हाँ कोकोनट शेल राइट
1: ओके ओके तो ये वैसे हर जगह पे ओके ठीक है
0: थैंक यू काफी लोगों ने यहाँ पे मैसेज कर लिया है काफी लोगों ने बोला है लाइक अ कप एज यू हैव सेड सैंडी कावा बोल तो आज का ये कीवर्ड आज का ये कोड वर्ड है
1: बिलो
0: को 640 तक टाइम मिलेगा एंटर करने के लिए
1: रिमेंबर द स्पेलिंग इज बी आई एल ओ
0: हाँ बी आई एल ओ बिलो आज मेरे को लगता है बिल्लो रानी गाना सुनना पड़ेगा

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Switch to AMI car insurance.
3: Cloudy tonight and a little warmer with a low of 15. The northwestern most way out of town looking pretty slow all the way to R2, and it's also heavy getting onto the western from the port, 40 minutes out to Massey from the city. On the northern, traffic out to Esmond Road, 35 to Constellation. The southern is busy Market Road to Mount Wellington and at Tuckanini. It's just over half an hour to get to Manukau.
2: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
4: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
5: What kind of businesses run on business fibre? Cloud-thriving businesses, CGI-building businesses, even big file-sharing, video-calling, meme-sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on business fibre.
6: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
7: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ऑलटुगेदर ओकलैंड।
9: Now's the time to send mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make mum's day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
10: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Back-to-back stabbings in Auckland today are being treated as separate and isolated. Police had arrested a woman in residential Rānui and taken her stabbing victim to a medical centre when they saw someone else had been stabbed in the head outside. That attacker then lunged at police officers with a knife before stabbing a member of the public who was waiting for a bus. The victims from the second event have serious injuries. ACT is proposing to let pharmacists manage long-term medication and order blood tests. Leader David Seymour says it's a targeted way to ease pressure on the health system.
15: For most people, the pharmacy is the healthcare professional closest to them. It's not a total solution, but it could help out in some circumstances, and that for me is a win.
14: The High Court has ruled against ANZ in a class action lawsuit. The case related to breaches of loan disclosure requirements. A suspected Hunter virus outbreak has the health community on edge. There are believed to be 7 cases stemming from an Atlantic cruise ship with 3 dead. Epidemiologist Michael Baker says the contained case in hospital should be closely studied.
16: That really needs to be carefully documented because that would really change the way this infection is managed in the future.
14: A New Zealander is confirmed to be on board the ship. To sport, in the wake of Tiger star Jerome Luai joining the PNG Chiefs, NRL clubs are moving to lock in key talent. The Warriors and in-form halfback Tanner Boyd are reportedly in negotiations over a multi-year contract extension. And to football updates brought to you by Hisense, New Zealand football is yet to confirm it, but it looks as if the All Whites have another World Cup warm-up match. The Miami Herald is reporting that the All Whites will play Haiti on June the 3rd in Florida.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
17: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
18: Sujit kya jata hai, Auckland ke Anand Raju aur Purnima Rao ke pita, Swargiya Panjali ke pati, Delhi Lambasa ke Bhutpuru Nivasi aur Esco Motors ke Service Manager Appal Raju ki mrityu Auckland mein ho gayi. Antim sanskar budhwar 6 Mai ko सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-552-677 पर कॉल कर सकते हैं. सुजित किया जाता है, ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता, स्वर्गीय पंजाली के पति, दिल्ली लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 6 मई को सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-552-677 पर कॉल कर सकते हैं. राखी राखी फीजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र कैमरन चंद केव के पिता, गो प्लेज द गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार थर्सडे को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर कॉल कर सकते हैं. राखी राखी फीजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र कैमरन चंद के पिता, गो प्लेज द गार्डन के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार थर्सडे को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर कॉल कर सकते हैं. ताउआ के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र, ऑकलैंड की शारदा मणि के पति रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्ण के पिता मनोरेवा के श्री कृष्णा हेरी की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार फ्राइडे को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0292-6578 पर कॉल कर सकते हैं. ताउआ के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्ण के पिता मनोरेवा के श्री कृष्णा हेरी की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार फ्राइडे को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0292-6578 पर कॉल कर सकते हैं.
17: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. The Drive Show with Sandy and Rusby.
20: Hamesha saath dene wale dost.
21: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
22: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
23: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
18: छह बज चुके हैं, आपका स्वागत है ट्रेंड मेकर्स में. हाय सैंडी, गुड इवनिंग.
24: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. ट्रेंड मेकर्स, ये आवर आपके लिए शुरू हो चुका है, लेकिन थीम पे आने से पहले आपके लिए कंपटीशन है. राहत वदी अली खान जो कि आपके सुपर सिटी में 25 जुलाई को लाइव परफॉर्म करने वाले हैं, इनके शो के लिए टिकट आपके नाम हो सकती है. वेल, अगर आपको डबल पास जीतना है तो रुजबे अभी एक गाना प्ले करने वाला है, आपको जहाँ पे खत्म होगा वहाँ से आगे कंप्लीट करना है. उसकी एक नेक्स्ट लाइन क्या है?
18: चलो ठीक है, तो सुनाते आपको. इजी है थोड़ा, बट लेट्स सी हाउ यू गो. बस इतना ही.
24: इसके आगे क्या है? सो आपने इतना सा गाना सुना, उस गाने के अगली लाइन क्या है आपको लिख के भेजनी है 5599 पर विद द कीवर्ड RFK.
18: RFK
24: कीवर्ड के साथ आपको ये भेजना है.
18: राहत फतेह खान.
24: या तो आपका नाम
18: राहत फतेह अली खान
24: या सो आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहां पे डबल पास आपके नाम हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू द थीम.
18: एक और बार सुना देता हूं ना थोड़ा, एक और बार.
24: ओके सुना दो.
18: इसके आगे बढ़ना है आपको.
24: ओके थोड़ा सा और, एक सेकंड और इससे कर दिया, माइक्रो सेकंड्स का
18: नहीं नहीं
24: डिफरेंस था,
18: उतना ही है. थोड़ा सा किसी को मदद हो जाए तो क्यों नहीं ना.
24: सो अभी आते हैं आज की थीम. आज की जो थीम है ना, आज हम आपके लिए ऐसे गाने प्ले करने वाले हैं इस आवर में जो कि एंटी हीरो गाने हैं. मतलब इसमें जो मूवी में ग्रे शेड में है, विलन है, एंटी हीरो है, वो उसके ऊपर ये गाना है
18: जी. तो आज पूरा पूरा एक घंटा इट्स गोइंग टू बी ऑल मतलब यू नो ऐसे विलेनस वाले गाने.
24: yes.
18: जो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया गाने, लेकिन
24: बड़े अच्छे गाने हैं यार. विलेन वाले गाने ना, ये पहला गाना जो प्ले करने वाले हैं, मेरे को लगता है जहन में सबसे पहले यही आता है सबके.
18: हाँ, विलेन की बात की करी 90s के, अगर आप पले बड़े हैं तो आपको ये गाना ही डेफिनेटली आएगा जहन में. और
24: बल्लू बलराम का रोल था ना संजय दत्त का इसमें.
18: संजय दत्त का ये टाइम पे फेज भी चल रहा था खलनायक वाला, बिकॉज उसके ऊपर केसेस वेसेस हो गए थे, जेल वेल जाने की बातें हो रही थी शायद से वो टाइम पे.
24: या इट वाज ड्यूरिंग द खलनायक ओनली,
18: एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ये दिस मूवी केम आउट.
24: या
18: माधुरी दीक्षित के साथ उनका तभी कुछ था ना.
24: या सपोज टू बी लाइक, पता नहीं, र्यूमर था कि उस समय पर अफेयर था, बट जब उनके ऊपर केस वगैरह हुआ तो ब्रेकअप हो गया. ये सब हुआ था, देन माधुरी दीक्षित की ओवरसीज में मैरिज हो गई.
18: कौन वो डॉक्टर नेने.
24: डॉक्टर नेने के साथ. सो एक कौन सी मूवी है रुस्बे जहाँ पे संजय दत्त माधुरी दीक्षित का गाना सुन रहा है, साजन मूवी का गाना सुन रहा है वो. साजन मूवी में भी दोनों साथ में थे ना.
18: अच्छा.
24: तो देयर इज दिस मूवी, कलंक मूवी आई थिंक, इट्स अ कलंक मूवी, उसमें संजय दत्त है ना.
18: कलंक में वो लोग साथ में काम किया, वो लोग ने.
24: या मतलब ज्यादा काम नहीं किया, थोड़ा ही काम किया है उसमें. बट उस मूवी में ही इज सिटिंग एंड कुछ गाना बज रहा होता है, साजन मूवी का गाना चल रहा होता है.
18: अच्छा.
24: जो कि संजय माधुरी दीक्षित का गाना है, तो कोई इंटरफेयर करता है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ बोलता है संजय दत्त, डायलॉग बोलता है कोई. बट या वो अभी भी उस चीज को यूज करते हैं.
18: I think Madhuri has gotten over him. That.
24: I think so. Yeah. Long time ago.
18: Because Sanjay Dutt, ऐसे नहीं बोल सकते Sanjay Dutt has gotten over Madhuri, क्योंकि yeah. Anyway, तो yeah, ऐसे type के गाने आपको सुनाएंगे और थोड़ी बहुत इसके अराउंड बातें भी करेंगे हम about villains of Bollywood.
24: Yes.
18: आज वो theme है. तो चलो enjoy करते हैं ये पहला गाना.

0: You're listening to हम villains को dedicate कर रहे हैं हम ये hour and सिर्फ villains नहीं anti hero भी बोल सकते because next song जो हम play करने वाले हैं इनको हमने actually में पहला इनका hit role हुआ था as a villain
1: exactly और इनके बारे में ये बात करना चाहते हैं शाहरुख खान कि शाहरुख खान ने एंटी हीरो वाले बहुत रोल किए हैं अगर देखा जाए तो राइट अगर मूवीज गिनो तो
0: बट डर मूवी तो वो स्टैंड आउट मूवी ना डर के बाद ही तो सब हुआ था उनका
1: सब कुछ हुआ एग्जैक्टली डर मूवी एंड देन बाजीगर मूवी
0: ओह यस बाजीगर भी है
1: बाजीगर वाज अनदर वन एंटी हीरो वन एंड देन देयर वाज दो बदला था कहानी में बट एंटी हीरो तो था देन मेरे को लगता है एक और मूवी थी शाहरुख खान की एक ऐसी जहां पे उन्होंने एंटी हीरो
0: चक दे इंडिया
1: डॉन मूवी ऑफ कोर्स डॉन मूवी में सो जिसका भी हम गाना सुनने वाले हैं
0: अरे पठान नहीं पठान नहीं
1: पठान वाज नॉट द एंटी हीरो
0: पठान नहीं वो कौन सी वो दूसरी एक और मूवी यार जवान जवान जवान में
1: नहीं एंटी हीरो नहीं था
0: जवान में दो मैं वो क्या सेंटी था जवान में तो यार था ना एंटी हीरो नहीं
1: याद मुझे
0: एक कैरेक्टर तो एंटी हीरो ही था शायद से
1: ओके
0: बट पता नहीं
1: या नहीं
0: मेरे को भी याद नहीं आ रही मूवी यार जवान एक्चुअली वाज बेटर देन पठान वे बेटर देन पठान बट जवान याद ही नहीं आ रही अभी बिल्कुल
1: मैं जवान पठान के बीच में बहुत मिक्स हो गई हूँ बट एनीवे अभी तो शाहरुख खान की बात कर रहे हैं तो डॉन मूवी की बात कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई डॉन का रोल बड़े अच्छे से किसी ने
0: और
1: किया
0: और कोई अगर हमने मिस आउट कर ली है जहाँ पे शाहरुख खान ने एंटी हीरो प्ले किया डॉन की पूरी सीरीज में एंटी हीरो प्ले किया बट और भी कोई अगर याद आ रही है आपको तो जरूर हमें बताना यहाँ पे
1: यार 5599 पर मैसेज करो मुझे लगता है कि और भी एक आधी होगी शाहरुख खान की
0: डुप्लीकेट मूवी में भी उसने दो रोल थे बट एक जो रोल था वो एंटी हीरो था
1: यस एक रोल हीरो का था एक एंटी हीरो से ज्यादा वो था तेज बंदा ऐसा था वो थोड़ा
0: मतलब एंटी हीरो ही बताया था ना उसको
1: या
0: एनीवे लॉट ऑफ मूवीज दैट वी आर फॉरगेटिंग नाउ बट यस शाहरुख खान एक ऐसे है जिन्होंने ये प्रूव किया था उस टाइम पे दैट हीरोज विलन वाले रोल कर सकते हैं क्योंकि एक जमाना होता था कि हीरो सिर्फ हीरो वाले रोल ही करते थे
1: तब तक यही हो रहा था मतलब उसके बाद भी यही होता है 90s में ऐसा होता आया है कि ये जैसे अमरीश पुरी
0: सलमान खान ने कभी कोई विलन का रोल प्ले किया है क्या
1: नहीं
0: कोई भी मूवी में
1: कोई
0: कभी
1: नहीं किया
0: है
1: नहीं
0: माय गॉड यार
1: वो सिर्फ हीरो ही रहा है
0: हां वाओ दैट्स क्रेजी
1: एक्चुअली मैंने नहीं किया है
0: सो या एनीवे आप भी यहां पे जरूर शेयर कीजिए शाहरुख खान की कोई मूवी अगर हमने मिस आउट कर ली है बट फॉर नाउ दिस इज फ्रॉम शाहरुख खान्स डॉन एंजॉय कीजिए मस्त सा गाना

0: Trend Makers.
1: Get money, get cash.
2: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर
4: At Bunnings Trade, we can help you build big. We've got a wide range of landscaping supplies and building materials to help you get the job done. From Green Life decking and fencing to irrigation, top brand power tools and loads more. Plus our trade team's here to help you get back on site fast. Shop the range in-store or online today. Or call 0800 134 872 for fast quotes and delivery to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
5: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: Award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
11: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
12: World's best hamari good brands nahi hai
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
13: Hamesha saath dene wale dost.
14: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
15: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स ऑन 104.2 एफएम ड्राइव शो में 7 बजे तक आपके साथ रहेंगे सैंडी और उसबे एंड टॉकिंग अबाउट डॉन शाहरुख खान फ्रॉम वन डॉन टू द अदर ये ऐसा मैं बहुत अच्छे से बोल पाता लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूँ मैं बिकॉज रणवीर सिंह इज आउट ऑफ डॉन ना डॉन 3
16: या
15: सो
16: फरहान अख्तर की मूवी में डॉन 3 में रणवीर सिंह को कास्ट किया था बट रणवीर सिंह ने विलन का रोल किया बहुत अच्छे से
15: बहुत कमाल रोल किया भाई ऐसा
16: प्रॉपर विलन
15: और ऐसा विलन का रोल प्ले किया कि उसके बाद वो खुद भी विलन ही हो गया मतलब
16: Yeah.
15: Like he needed therapy and all, na, to get out of the role.
16: बहुत डार्क उसमें चले गए थे वो डार्क साइड में चले गए थे बट रणवीर सिंह ने जिस वजह से ये रोल किया ना मतलब हमें पता है कि वो हीरो है हमारा बाकी मूवीज में हीरो बनता आया है बट सुपर रोल था यार मतलब
15: We're talking about movie पद्मावत जिसमें खिलजी का रोल प्ले किया था
16: या सो ये गाना भी है जो कि खिलजी के ऊपर ही बेस था विक्ट्री सॉन्ग भी था ये कह सकते हैं Pumped up song भी है ये everything
15: ये in no way became like a villain song it became like more of a hero song
16: yeah
15: जिस वे से रणवीर सिंह ने डांस किया था इस गाने पे
16: steps बहुत popular हुए थे
15: everyone was just dancing on this track at one point
16: yeah so पद्मावत का ये गाना enjoy कीजिए

0: यू आर लिसनिंग टू हम. वैसे आज विलन वाले ट्रैक्स हम प्ले कर रहे हैं. विलन बोलना सही नहीं रहेगा, एंटी हीरो.
1: एंटी हीरो, जैसे कि ये गाना अभी आपने सुना,
0: बॉबी देओल के ऊपर फीचर था ये गाना. एंड आई थिंक ये गाने से पता चला था कि जो छोटे छोटे गाने हैं ना, वो भी बहुत ब्लो अप हो सकते हैं. जैसे कि ये गाना सबसे पहला था जिसमें लोग ग्लास अपने सर पे रखकर नाच रहे थे,
1: बॉबी देओल की एक्टिंग कर रहे थे,
0: बॉबी देओल का के ऊपर फीचर था. एंड देन आफ्टर दिस दैट मेड द वेव वाज अक्षय खन्ना का इंट्रो सॉन्ग इन धुरंधर.
1: या वो भी हम बाद में प्ले करेंगे, बिकॉज वो भी एंटी हीरो गाना ही है.
0: वो भी एंटी हीरो गाना ही है वो वाला भी. एंड फिर एक और गाना बना था जो दीदी दीदी वो बना था ना,
1: दीदी या
0: जो रणवीर
1: सिंह की एंट्री में, क्योंकि हाँ, पर रणवीर सिंह को हम एंटी हीरो नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो मूवी में तो वो हीरो ही था, वो एंटी हीरो नहीं था.
0: एंटी हीरो नहीं था. बट या आई थिंक
1: या बट तुम सही कह रहे हो कि ऐसे गानों का ट्रेंड शुरू हो गया.
0: ट्रेंड शुरू हो गया था एनिमल मूवी के बाद.
1: डिफरेंट लैंग्वेज के गाने, नॉट हिंदी सॉन्ग्स,
0: नॉट हिंदी सॉन्ग, अरेबिक सॉन्ग्स या फिर डिफरेंट जो यू नो रिक्रिएटेड वाले गाने दूसरी भाषा में. बट दिस नेक्स्ट सॉन्ग, मेरी मेमोरी है इस गाने को लेकर, आई एम नॉट श्योर अबाउट विलन एंटी हीरो और ये सारी चीजें, बट इस गाने को गाया है सुनील चौहान और अमित त्रिवेदी ने. द सॉन्ग इज बीड़ी जलेले. माई मेमरी, कोर मेमरी ऑफ दिस सॉन्ग इज बीन ओवर रिटन वेन आई सॉ सुनील चौहान परफॉर्म दिस सॉन्ग लाइव. यहाँ पे ट्रस्ट अरीना में शो हुआ था उनका, और उन्होंने लाइव ये परफॉर्म किया था बीड़ी जलेले. ओ माई गॉड, आई कांट गेट ओवर दैट. लाइक दैट वॉज, मतलब मैं,
1: बिकॉज शी इज अ परफॉर्मर,
0: मैं किसी और को अभी याद कर ही नहीं सकता हूँ जब मैं ये गाना सुनता हूँ. मुझे सुनील चौहान ही दिखती है.
1: Wow.
0: And a lot of people who have attended the show know that what I'm saying makes sense. क्योंकि वो जो हिसाब से उसने पिकअप किया था ना इस गाने को, सुनील चौहान was a rock, like is a rock star.
1: Because सुनिधि चौहान का ये है कि वो सिर्फ गा नहीं रही होती है, परफॉर्म भी करती है साथ
0: perform,
1: में. She's a performer, तो जिसके वजह से like it adds to it.
0: So yeah, याद कीजिए सुनिधि चौहान को and enjoy this beautiful track.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: Auckland Airport, park and ride.
3: Cloudy across Auckland this evening. It's a low of 15 degrees tonight. Auckland City to Manukau is a half hour drive now. It's actually pretty good most of the way there. Just a little busy in patches. Although if you're heading further south, it is slow around the Tuckanini interchange. On the northwestern, it's heavy between St. Luke's and Taratatu. Half an hour to get to Massey. The northern is slow from the bridge to Esmond, 25 to Constellation.
2: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
4: अगर आपको कभी भी लगे कि हमने ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है तो आप इसकी शिकायत ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कर सकते हैं और जानकारी के लिए bsi.govt.nz पर लॉग ऑन करें।
0: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल, आए और एंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, टोडा रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
5: Hey, Mum. Hey, sweetheart. How are you? Good. Hey, could I borrow 10K? This is a new phone. Who dis?
6: Well, that's awkward. But borrowing money doesn't have to be with Nectar Money. Using their fast and super simple online process, Nectar Money can lend up to 50K with 7-minute quotes and same-day funding. C's, T's, fees and credit criteria apply. Get lending without the awkward.
5: Nectar Money. Lending sweeter.
7: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन नीलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट्स सिर्फ $20 है। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में।
8: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: There's the mum who raised you, the grandma who spoiled you, and the auntie who knows all your secrets. Buying gifts for all of them? Stressful. Buying a Prezi card? Easy. The Mother's Day gift that always lands. Shop prezicard.co.nz.

0: Trend Makers.
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits and Trend Makers mein aaj anti-hero songs aapke liye hum lekar aa rahe hain.
2: या एंटी हीरो गानों की बात करते हैं तो ये गाना आपके लिए है कंपनी मूवी का, जिसमें एक्चुअली में बात धंधे के बारे में ही हो रही है कि मतलब फुल दो नंबर के काम के बारे में बात हो रही है. जाने से पहले वैसे क्विकली आपको बता देते हैं कि इसी फ्राइडे को भक्ति कीर्तन संध्या होने वाली है, जहाँ पे द्वेनाथ नितिन नलेश लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. टिकट्स अगर आपने नहीं खरीदी है अभी टाइम है टिकट खरीदने का. भोजन मेला फूड कार्निवल हो रहा है 17th मई को, तो वहां पे भी आप जरूर पहुंच सकते हैं.
1: एंड 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे हो रहा है सैटरडे 16th मई को, तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं. मलयोला कम्युनिटी सेंटर मांगरे में ये होने वाला है 4:30 PM ऑनवर्ड्स टिल 8:30 PM. और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से
2: बाय बाय. या यहीं पे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है. अब आपसे मुलाकात कल होने वाली है.
1: व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव द वर्ल्ड सैंडी बिफोर सेइंग बाय
2: टू द वर्ल्ड राइट हियर
1: राइट नाउ टू द वर्ल्ड, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव?
2: वेल राइट नाउ मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, गो फॉर अ वॉक. You will have a very good sleep.
1: अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही आजकल?
2: नहीं, मेरे को ओके नींद आ रही थी, बट आफ्टर डूइंग अ गुड वॉक, वो हाइकिंग वाली करने के बाद मैं एकदम मस्त सोई.
1: ओके, सो या दैट्स अ ग्रेट मैसेज सैंडी.
2: सो मेबी गो आउट एंड समवेयर एंड
1: टेक अ वॉक
2: एंड देन
1: ब्रीथ फ्रेश एयर.
2: एग्जैक्टली. व्हाट अबाउट यू रुज़बे?
1: मैं कल दूंगा मेरा वर्ड मैसेज.
2: Okay, fine.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Happy Hour on Hum.
1: लटके जब कमरिया सारा जिला हिल मो।

0: Happy Hour on Hum.
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली ओ चली
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली चली चली
1: गोकुल की

0: हैप्पी आवर ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
6: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower.

0: crazy man. Power through mess with Morning Fresh.
1: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. RMA Reform Minister Chris Bishop is pledging to push ahead with major local government reform with or without local body input. Councils have been given 3 months to put forward their own proposals following the planned scrapping of regional councils. ANZ's considering whether it will appeal a High Court decision. The ruling favoured a class action case relating to breaches of loan disclosure requirements. A police operation targeting gangs, drugs and firearms in Hawke's Bay has seen 9 people arrested. The multi-agency initiative saw the seizure include 17 guns, over $30,000, plus cannabis and meth. In sport, football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, and no confirmation as yet from New Zealand Football about this World Cup warm-up game for the All Whites against Haiti. It's being reported as being in Florida on June the 3rd. And former Breakers head coach Dean Vickerman is leaving Australian NBL side Melbourne United after 9 seasons. He guided the Breakers to a 4th title in 5 years, and Vickerman has taken up a contract option to explore overseas opportunities.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
5: गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू द शो नाइट कैफे. लेकर मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए, और रात 12 तक हमारा साथ रहेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग खबरें और बहुत सारी जगहों पर आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स भी लेकर आएंगे, और 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक भी रहेगा फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स. अभी फिलहाल देर ना करते हुए आपके लिए जो हम स्पेशल सेगमेंट लेकर आते हैं नाइट कैफे में ऑन ट्यूजडे नाइट्स, विच इज़ कोक स्टूडियो रिलोडेड, जहाँ पर कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने हम प्ले करते हैं. स्वागत है आपका. ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू द शो. गुड इवनिंग वंस अगेन. कोक स्टूडियो रिलोडेड में स्वागत है. भारत और पाकिस्तान के कोक स्टूडियो सॉन्ग्स आपके लिए हम पेश करेंगे, और कुछ कोक स्टूडियो पर जानकारी भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. आपको बस हमारा साथ देना है क्योंकि एक से बढ़कर एक कोक स्टूडियो सॉन्ग्स मैं आपके लिए पेश करूंगा. ट्यूजडे नाइट इट इज़ नाइट कैफे में ये सेगमेंट 9 o'clock तक चलता रहेगा. मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ. वेलकम to the show.

You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और जारी है आपके लिए Coke Studio Reloaded only on Hum और 9 बजे तक ये चलता रहेगा. Coke Studio पाकिस्तान के गाने भी मैं पेश कर रहा हूँ और Coke Studio भारत के शुरू करते हैं. Coke Studio पाकिस्तान पर जानकारी, ये 2008 में शुरू हुआ था और रोहिल हयात ने इसको शुरू किया था. इट वॉज क्रिएटेड बाई हिम. ये कोक स्टूडियो पाकिस्तान इज़ बेस्ड इन कराची और ख़ास तौर पर सूफ़ी कवाली और फोक सॉन्ग्स के साथ मॉडर्न फ्यूजन जोड़ना, इसके लिए कोक स्टूडियो पाकिस्तान सॉन्ग्स मशहूर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइव परफॉर्मेंस फील देता है ये. और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वर्जन बन गया ग्लोबली. कौन कौन से और कंट्रीज इनसे इंस्पायर हुए हैं और क्या कुछ वायरल हिट्स रहे हैं फ्रॉम कोक स्टूडियो पाकिस्तान, वो भी जानकारी बहुत ही जल्दी देंगे. फिलहाल अनूप जैन और लॉस्ट स्टोरीज से हमने लिया है कोक स्टूडियो भारत से ये गाना. आप एंजॉय करें क्योंकि और भी कोक स्टूडियो रिलोडेड में आपके लिए प्यारी सॉन्ग्स हम इंक्लूड करने के लिए अभी लिस्ट बना चुके हैं जो आपको सुनाएंगे आज.

वेलकम बैक एवरीवन टू कोक स्टूडियो रिलोडेड, जहां पर कोक स्टूडियो पाकिस्तान और इंडिया पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान के काफ़ी और भी कंट्रीज इंस्पायर हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया। और वायरल हिट्स देखा जाए तो पसूरी, ये गाना मैंने लास्ट वीक आपके लिए प्ले किया था। ताजदार हरम, ये गाना भी लास्ट वीक मैंने आपके लिए प्ले किया था। आफरीन आफरीन एक और गाना है, राहत फतेह अली खान ने गाया है, और जबकि उनका शो भी आने वाला है, तो ये गाना अभी नेक्स्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और एक डीप कल्चरल स्टोरी टेलिंग होता है जिसमें रो वोकल्स का इस्तेमाल होता है, काफी ऑथेंटिक सोलफुल और ऐसे ही मीनिंगफुल कोलैबोरेशंस पर फोकस किया जाता है। कुछ ही देर में कोक स्टूडियो भारत पर जानकारी देंगे, कब इनका लॉन्च या रीलॉन्च हुआ और किसने क्यूरेट किया इनको और किन प्लेटफॉर्म पर आप इनको सुन पाएंगे। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं।

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Night Cafe Jari Hai, Coke Studio Reloaded segment, 9 o'clock tak chalega, 8 to 9 ke beech mein ye aapke liye lekar aate hain. Coke Studio Bharat ka launch 2023 mein hua tha, in fact inka relaunch hua tha, aur curated initially by Ankur Tiwari, aur platform YouTube aur Jio Cinema mein aap inko sun payenge. Indian classical, Hindustani ya Carnatic music plus indie aur pop ko jod kar ye banaya jata hai. Digital first, shorter song releases हुए थे और goal ये था कि India का regional diversity और new artist को सामने लाया जा सके. Popular tracks कौन-कौन से रह चुके हैं Coke Studio भारत में, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा. फिलहाल सुनाता हूँ आपको एक और बहुत ही प्यारा ये गाना आपके लिए, सज्जद अली और फरहीन और राजा जेफरी ने इस गाने को गाया है, जो अभी आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं. कोक स्टूडियो से हमने इस गाने को लिया है आपके लिए. एंजॉय आप करें, और भी गाने आपको इसके बाद सुनाएंगे.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits, Coke Studio Reloaded. में एक बार फिर आपका स्वागत है. अगर अभी आपने रेडियो ट्यून इन किया है, जहां पर आपके लिए हम 9 o'clock तक प्ले करेंगे Coke Studio भारत और Coke Studio पाकिस्तान के गाने जो आप इन्जॉय कर रहे हैं. वैसे पॉपुलर ट्रैक्स फ्रॉम Coke Studio भारत इज खलासी. ये वायरल हिट रहा है इंडिया में, और इसका आइडेंटिटी ये है कि Coke Studio भारत का, इनफैक्ट कि ये काफ़ी पॉलिश्ड एक्सपेरिमेंटल और मॉडर्न फ्यूजन साउंड देता है. न्यू एज इंडी और कल्चरल मिक्स ये सामने कर आता है. तो और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दूंगा अबाउट Coke Studio सॉन्ग्स, लेकिन फिलहाल एक और गाना मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. बेवजह नबील शौकत अली ने इस गाने को गाया है, और आप ये एंजॉय करें. और इसके बाद और भी Coke Studio के सॉन्ग्स हैं जो आपको सुनाना बाकी है.

0: and radio.
1: Streaming on Rover.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
6: Danny didn't think he needed a DVS system.
7: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
6: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
7: Nah, only one room. It was just too noisy.
6: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: Menakau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein
3: A legacy that built Swarajya. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
9: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
10: Of Bollywood.
11: World's best. Hamari good brands nahi hai. Hum.
10: Night Cafe on Hum. Coke Studio Reloaded.
12: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits, 8 to 9 segment. Aapke liye abhi jaari hai Coke Studio Reloaded, jisme aapke favorite Coke Studio songs hum lekar aate hain, ek-ek karke, aur wo bhi aapke liye pesh kar rahe hain. Pakistan version jo hota hai Coke Studio ka, it has built the Coke Studio legacy. Aur jo Bharat version hai, ye kafi modern reboot hua hai for the digital audience. Aur dono ka yahi aim hai ki ye preserve karte hain culture through fusion music. और difference is mainly style, क्योंकि raw और polished, raw versus polished होता है. और कहा गया है कि यही सबसे बड़ा takeaway होता है कि deep emotional iconic tracks होते हैं पाकिस्तान Coke Studio songs में, और वहीं पर fresh experimental और modern Indian sound होता है भारत Coke Studio song में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक और गाना मैं आपको सुना रहा हूँ. इस बार नेहा कक्कर और कमला देवी ने इस गाने को गाया डिग्वी के साथ में. सोनचड़ी, ये आप enjoy करें हमारे साथ हम पर.

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने। एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
1: हम है क्रू केयर। सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
2: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
3: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
5: An award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
10: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: हम टाइम चेक।
16: इट्स 9 o'clock इन हम स्टूडियो।
15: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. Back-to-back stabbings in Auckland today are being treated as separate and isolated. Police had arrested a woman in residential Ranui and taken her stabbing victim to a medical centre when they saw someone else had been stabbed in the head outside. Iran is warning the US that, quote, we have not even begun yet, unquote, after attacks in the Strait of Hormuz. US President Donald Trump has refused to say whether the Iran war ceasefire is still in effect after the latest attacks. The kidney health crisis has been laid bare in a new industry report. Half of New Zealand's renal hemodialysis machines are operating above capacity, in Auckland at 150%. In sport, rugby league with Machinery House, the impending NRL team additions, the PNG Chiefs and Perth Bears, mean clubs are moving quickly to secure key talent. Warriors halfback Tana Boyd reportedly in negotiations with the club over a multi-year contract extension. And English Premier League leaders Arsenal in the Champions League tomorrow from 7 at home to Spanish club Atletico Madrid. In the second leg of the semi, the first leg finished last week at 1-1.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
18: Night Cafe on Hum.
15: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
12: वेलकम बैक एवरीवन. नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सेकंड आवर इट इज़ आफ्टर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं. वैसे तो कोक स्टूडियो रिलोडेड होपफुली आपने एंजॉय किया होगा. होप आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि बहुत सारे कोक स्टूडियो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आज आपको बताया. इस घंटे पर काफ़ी प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन है आपको बताने के लिए. इवेंट्स के बारे में जानकारी है. मदर्स डे प्रमोशन भी जारी है और ड्रो बहुत ही नज़दीक है. इस पर जानकारी हम लेकर आएंगे आपके लिए. क्रिश का साथ है. वेलकम बैक.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to your number one hum playing Bollywood's biggest hits. बहुत कुछ आपको बताने के लिए है चर्डल. ये एक कंपटीशन है रोवर पर. अगर आप कीवी वर्ड विजर्ड है, यू हैव टू पुट योर टैलेंट टू टेस्ट और विन कैश विथ चर्डल. एक स्ट्रॉन्ग कीवी वर्ड मतलब एक कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज आपको दिया जाएगा विच यू नीड टू क्रैक इट और ड्रो में शामिल होकर आप $100 अ डे जीत पाएंगे. वैसे एवरी डे आप खेल सकते हैं. आप ड्रो में शामिल हो सकते हैं $100 जीतने के लिए. एक गेम इक्वल्स वन एंट्री. फास्ट आंसर्स देते हैं, बोनस एंट्री मिलेगा $7,000 टू बी वन. और जितना भी दिन आप खेलते हैं द बेटर योर ओड्स आर. तो आज ही आप खेले टू विन $100 अ डे ड्रो में शामिल होने के बाद. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं. साथ हमारा रहेगा टिल मिडनाइट.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं

0: on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
2: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates, or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift back from your local Lotto NZ store. R18.
3: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
4: A legacy that built Swarajya. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
5: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
4: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 9439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट एन जेड
0: Bollywood ka asli blockbuster.
12: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Hum.
0: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
13: You're listening to number one, Humpling Bollywood's biggest hits, Krish ke saath hai. Hum Flyaway Frenzy ek aur Rova competition hai. Rova download zarur kar lijiyega kyunki amazing prizes jeetne ka mauka hota hai. Return trip to Fiji jeetne ka mauka hai. This is how it works. Every day, 4 baar aapko codes diye jayenge. Hum special codes. Ek subah 8 baje, din mein 11, phir 1 baje, phir sham 5 baje. Jaise aap codes sunte hain, 60 minutes ke andar, Rova par ye codes aapko enter karna hoga. Draw mein shamil hote hain, return air ticket to Fiji jeetne ka mauka rahega. और स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें अभी आपको दूर रखना होगा और सनसेट्स के लिए आप जाए सनसोक्ड हॉलीडे के लिए जाए अगर आप लकी विजेता होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम नाइट कैफे जारी है आपके लिए

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. मम्स मूड स्विंग्स को आपको गेस करना होगा, रिएक्शन क्या होगा ये बताना होगा, और ड्रो में शामिल होकर $300 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज $200, थर्ड प्राइज $100 जीतने का मौका है. लाइव ऑन एयर गेम रहेगा, समय बहुत ही कम रहेगा. इनफैक्ट 8 मई को ये ड्रो होगा ब्रेकफास्ट शो में. तो हमारे साथ ही अगर आपको इन्वाइट करते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से रेडियो सुनना होगा, एक हिलेरियस सिनेरियो बताएंगे और आपको अपने मम का रिएक्शन गेस करना होगा. एंड वी वुड लाइक टू नो हाउ वेल यू रियली नो योर मम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. मदर्स डे प्रमोशंस जारी है, एक और प्रमोशन है जिस पर जानकारी अगले घंटे पर मैं आपको दूंगा. टॉप ऑफ द आवर पर रहेगा न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट एट 10 PM आपके लिए.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है।
0: 6 to 10 AM।
5: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
6: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
7: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
13: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
12: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
13: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
12: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
14: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
15: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials।
16: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
0: Time check.
17: It's 10 p.m. in Hum Studio.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
18: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Police describe stabbings in West Auckland today as an extremely concerning event. Officers had taken an initial stabbing victim to a medical centre in Oranui when a separate incident unfolded outside involving a person being stabbed in the head. Local Government Minister Simon Watts is batting away the suggestion amalgamating councils could come at a big cost to ratepayers. Councils have been given 3 months to come up with proposals to create fewer but larger entities across the country. The High Court has ruled against ANZ in a class action lawsuit. The case related to breaches of loan disclosure requirements. The bank estimates it could face liability of up to $125 million, depending on how the judgment is applied. In sport, football updates brought to you by Hisense. New Zealand football yet to confirm it, but it looks as if the All Whites have added another World Cup warm-up match. It's being reported in the Miami Herald. The All Whites will play Haiti on June the 3rd in Florida. And basketball, day one of the NBA Best of Seven Conference semifinals, wins for the New York Knicks and the Minnesota Timberwolves.
19: Sports News.

0: Night Cafe. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन. जारी है आपके लिए नाइट कैफ़े और 12 तक चलता रहेगा. नाइट कैफ़े में जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट के लिसनर्स हैं, नाइट शिफ्ट वर्क आप कर रहे हैं, ऑनलाइन लिसनर्स हैं, आपको भी शामिल करते हैं. आपको खासतौर पर ये जो अगला 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूज़िक है वो डेडिकेट कर रहे हैं. ऑल दी सॉन्ग्स आर फॉर यू. आप इन्जॉय करना. होपफुली यू रियली लव देम, क्योंकि एक के बाद एक आपके लिए गाने हम पेश करेंगे 30 मिनट्स के अंदर. इस घंटे पर अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर कैसे क्रिएट करना है इस पर जानकारी, साथ ही में एनजेड म्यूजिक मंथ पर बातें करेंगे. जावेद अली लाइव इन कॉन्सर्ट ये इसी हफ्ते होने को है, फ्राइडे को. इस पर भी जानकारी आपको देंगे. बट फर्स्ट अप 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आप एंजॉय करें.

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम हाँ।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: वेलकम बैक एवरीवन। 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका। अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर कैसे क्रिएट करना है इस पर जानकारी देंगे। $200 जीतने का मौका है 8 मई को ड्राइव शो में ड्रॉ होने जा रहा है। अभी भी आपके पास मौका है पर्सनलाइज्ड वाउचर मम के लिए बनाने के लिए। मदर्स डे गिफ्ट लिस्ट पहले बनाएं, फिर एक वाउचर क्रिएट करें, ड्रॉ कर सकते हैं खुद या फिर आप ऑनलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। जहां पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वहीं पर आप एक बहुत ही क्रिएटिव अट्रैक्टिव वाउचर बना सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज हम 104.2 FM पर शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स को टैग करें और ड्रो में आप शामिल हो जाएंगे। ड्रो 8 मई को होगा और आप ये जो लकी इनाम है इससे अपने मम को और भी एक्स्ट्रा स्पेशल फील करा सकते हैं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। हम पर जारी है आपके लिए नाइट कैफे और सुनते रहो 12 तक हमारा साथ रहेगा।

0: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे एंड अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
1: सोना संसार पापा टोयोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
1: सोना संसार पापा टोयोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटो.
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
6: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: Moisture और ventilation का problem लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papa Toy Toy mein, jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath. Do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka. Tickets sirf $20 hain. Taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papa Toy Toy mein.
11: Of Bollywood.
12: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
11: Night Cafe. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
13: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe jari hai, Krish ke saath hai, and you're humming along with me on Bollywood's biggest hits. NZ Music Month hai ye mein, aur Back Your Backyard Beats is our थीम टू सेलिब्रेट लोकल टैलेंट. अगर आप एक लोकल सिंगर है और ओरिजिनल ट्रैक्स आपके पास है, बायो के साथ अपना बेस्ट सॉन्ग भेजे buzz@humfm.com पर. शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट के गाने रेडियो पर प्ले किए जाएंगे. कोलैब करने का मौका रहेगा विद हम ऑन इंस्टा. और अपने फेवरेट ट्रैक्स को वोट करने के लिए हम लिसनर्स को इन्वाइट करेंगे बोथ ऑन एयर एंड ऑनलाइन. टॉप 3 आर्टिस्ट के गाने रोवा ऐप पर रहेंगे और हैम्पर प्राइज जीतने का मौका रहेगा. विनर विल बी डिसाइडेड बाय टोटल एंगेजमेंट वोट्स और शेयर्स अक्रॉस रेडियो और सोशल मीडिया. तो आज ही आप अपना बायो के साथ अपना फेवरेट सॉन्ग भेजें हमारे पास. कृष्ण के साथ है

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: जावेद अली लाइव इन कॉन्सर्ट होने जा रहा है इसी फ्राइडे को 8 मई को पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज द्वारा ये प्रेजेंटेशन है रफ़ी और मैं टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी बाय जावेद अली इनके खुद के गाने भी रहेंगे जो कि चार्ट टॉपिंग हिट्स रह चुके हैं और अभी भी बहुत सारे न्यू रिलीजेज इनके हो रहे हैं फर्स्ट टाइम एवर न्यूजीलैंड में ये परफॉर्म करने जा रहे हैं ये शो तो मैं देखने जा रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी जाएंगे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर इसी फ्राइडे $59 से टिकट शुरू हो रहा है फूड स्टॉल्स और इजी ऑन साइट पार्किंग रहेगा टिकट्स आप जल्दी से ले लें starlionsentertainment.com से टिकट्स आप जाकर ले सकते हैं फिलहाल जावेद अली की ज़ुबानी कुछ सुनते हैं और फिर इनके ही गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ
3: हेलो ऑकलैंड मैं हूँ आपका अपना जावेद अली दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू ऑकलैंड और मैं आ रहा हूँ 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में जहाँ हम सब याद करेंगे रफी साहब के गोल्डन सॉन्ग्स

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: वेलकम बैक एवरीवन. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक के बाद अभी इंडियाज बोल्डेस्ट कॉमिक पर जानकारी है. मुनावर फारूकी को आप ओकलैंड में देख पाएंगे. धंधो इस इवेंट का नाम रखा गया है. ब्रूस मेसन सेंटा में होगा 23 मई को. रो रियल और अनफिल्टर्ड कॉमेडी ये रहेगा. वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमेडियंस को देखने का मौका, सुनने का मौका मिलेगा, जहां पर ये फियरलेस स्टोरी टेलिंग बताएंगे आपको शार्प नो फिल्टर ह्यूमर के साथ. ticketmaster.co.nz से आप टिकट्स ले सकते हैं. हमारे फेसबुक पेज जाए, वहाँ पर एक पोस्ट होगा और अपने फ्रेंड को टैग कीजिए. ड्रॉ में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका है. 11 मई को ड्रॉ होगा. फिर का साथ है.
3: Love you unconditionally.

0: Cafe on Hum.
1: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. A taste bilkul heartbreak jaisa. Please sir, tu cubicle ke liye nahi bana hai. Tu beach ke liye bana hai. Tu life ko enjoy karne ke liye bana hai.
0: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, एना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
12: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
11: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846 9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
13: Jen didn't think she needed a DVS system.
14: Oh, I've got insulation in that.
13: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
14: Ah, yeah.
13: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
15: On Hum. Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
16: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Rahat Fateh Ali Khan live in Auckland. Aap dekhenge 25th July ko Trust Arena mein. JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Sahzada Production dwara ye laya ja raha hai. Dry tickets se aap tickets le sakte hain. Aur hamare saathiyon dwara ek competition ke dauran aapse pucha jayega ki ye kaun sa gana hai ya lyrics ko aapko complete karna hoga after few seconds of a song is played. 5599 par aap ye jawab bhejenge jaise hi hamare saathi aapse puchhenge double pass jeetne ke liye. To ye show aap miss na kare, powerful vocals aur soul stirring qawwalis bhi aapke liye yahan par pesh kiya jayega. None other than Rahat Fateh Ali Khan द्वारा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा Rahat Fateh Ali Khan गाया हुआ गाना आपके लिए पेश करने जा रहे हैं नाइट कैफे में.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, Humping Bollywood's biggest hits. Yaad rahe, NZ Music Month ke dauran, agar aap apne local artist ko support karna chahte hain, to please aap jaakar jo all month long hum log kuch aise tracks play karenge jo local artist ne bheja hai. Different time slots par play hoga, 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM aur 10 PM weekdays. Aapko gana sunna hai. Do you love that song? Do you want it on repeat? Ya aapko skip karna hai? Aapke votes decide karenge top 3 finalist ko. Text 5599 पर आप कीवर्ड MM भेजते हैं तो फिर आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा और विनर आपके वोटिंग से ही डिसाइड होगा. टोटल एंगेजमेंट थ्रू योर वोट्स और सोशल लव जो आप उनको देंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और इनफैक्ट यहीं पर हमारा साथ ख़त्म होता है. हमारी मुलाकात होती है कल एक बार फिर आपके साथ ऑन नाइट कैफे ऑन वेंसडे नाइट, जहां पर आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे मसालेदार खबरें फ्रॉम 8 to 9 एंड 12 तक आपका साथ देंगे. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट. गुड नाइट एवरीवन.

0: लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, और टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
0: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
4: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट्स सिर्फ $20 है। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में।

0: बेटा मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, TFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

Menikau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe में जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दविन नाथ दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका टिकट्स सिर्फ $20 हैं तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता,

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: बिग बॉस देखा है ना, अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो। मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो।
2: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है।
1: 23rd May, Bruce Mason Center, Takapuna, 7 p.m. onwards. Book your tickets now on ticketmaster.co.nz.
3: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rondh kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
5: Night Flight.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: बस हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: खूब खूब आभार अपना गुजरात में हालो मने नहीं आगे बहुत नाम लोग गाम छे क्या मजूर वर्ग बहु छे तो मने एक गीत नी फरमाइश करी थी अने त्यां कई थाकी ने लोका सांजे मौजू करता हो त्यारे कई आउ गाय

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम, a legacy that built Swaraj, a story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, and Abhishek Bachchan.
2: कभी मुगल, कभी आदिल शाही, इन्हीं सल्तनतों की छाती रौंदकर हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा है हमने।
1: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TPC.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment, rating TPC.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे

0: 10 AM.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
2: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
0: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Companies are bracing for impact with the Inter-Islander increasing its fuel surcharge for commercial vehicles. Billy Clemens from Transporting NZ says it's a bit grim.
5: Increased costs do end up getting passed on to freight customers and consumers in many cases, which I know that our members and road freight companies never want to do.
4: A coroner has been unable to determine the cause of death for a man whose body was found entombed in concrete in Auckland. The remains of David Stanley Hart were discovered during renovations at a Mount Eden home in 2020. Coroner Alexander Ho says he couldn't make the findings as to whether Gabrielle Ormsby, a now deceased prime suspect, was involved. The Pharmaceutical Society believes it's worth exploring the use of AI tools to assess skin issues. ACT wants pharmacists to act as a triage. Society President Michael Hammond says it has merit.
6: Pharmacists are highly trained individuals that are incredibly well skilled in looking for red flags or areas of concern where things need to be referred.
4: The use of so-called kamikaze dolphins by Iran has been raised at a US briefing on the Middle East conflict. It prompted this reply from Defense Secretary Pete Hegseth.
7: And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't.
4: In sport, rugby with shift 4, the Hurricanes have expressed their frustration in losing loose forward Devon Flanders to Japan at the end of the Super Rugby season. Assistant coach Jason Holland.
8: Yeah, it does get disappointing when they get to the stage where they're about to play their best 3 or 4 years in footy. That's where it becomes hard to take.
4: And England rugby coach Steve Borthwick's retained his job following a review into their worst Six Nations campaign in 50 years.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
9: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
10: सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता यानी स्वर्गीय पंजाली के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्कोमोटोस के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-552-677 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता यानी स्वर्गीय पंजाली के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्कोमोटोस के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-552-677 पर संपर्क कर सकते हैं। रकिराकी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र यानी कैमरन चंद के पिता गो प्लेस दी गार्डन्स के बोब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर संपर्क कर सकते हैं। रकिराकी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र यानी कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बोब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर संपर्क कर सकते हैं। यलांड्रू तावुआ के स्वर्गीय मुनसामी के पुत्र ऑकलैंड की शारदा मणि के पति यानी रोनील कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता। मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे मेनकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनुई रोड में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-292-6578 पर संपर्क कर सकते हैं। यालान रोतावुओ के स्वर्गीय मुनसामी के पुत्र यानी ऑकलैंड की शारदा मणि के पति और रोनील कृष्णा पुजारी तथा मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता। मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे मेनकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनुई रोड में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-292-6578 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
10: 14.3 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 21, overnight kam se kam 15 degrees rahega. Badal chhaye rahenge, rehkar halki barish hogi mukhyatah sham ke samay. Sunrise subah 7:03 par aur sunset aaj ka 5:32 pm par hoga.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: up.
1: पांच मिनट हो रहे हैं, छह बजकर नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज बुधवार है, 6 तारीख मई, आज के ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो, और आपका साथ देने के लिए वापस आ गए हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और अभी से ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में होने वाला है, और आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: तो लीजिए भाई, कल वादा किया था, आज एक और सफर के साथ आगे हैं, और इन 4 घंटों में आज के दिन की शुरुआत को आपके लिए अच्छा बनाने की हमारी ओर से कोशिश रहेगी। खूबसूरत गाने होंगे, और साथ में इनाम जीतने के कई लाजवाब मौके, और जो जरूरी जानकारियाँ हैं ये भी आपको हम देंगे।
2: बिल्कुल, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि शुरुआत तो हम करेंगे ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ। क्विक कैचअप भी होगा यहाँ पर आप सभी के साथ, और खबरों में क्या कुछ है ये तो जानेंगे ही, लेकिन सिर्फ खबरों के साथ साथ नहीं, लेकिन बाकी चीजों के साथ भी आपको अपडेटेड हम रखने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज भी खूब भर भर कर देंगे आपको विजेता बनने की, बिकॉज देयर सो मेनी अमेजिंग थिंग्स देयर आर हैपनिंग, जिसके तहत आप विनर जो है ये बन सकते हैं। एक और जहां पर मुनावर फारूकी ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड अपना बोल्ड कॉमेडी शो लेकर धंधो, तो इसके लिए आपके पास डबल पासेस जीतने का मौका। राहत फतेह खास साहब जो है ये भी आ रहे हैं, और ये भी परफॉर्म करने वाले हैं जुलाई महीने में, और इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जीत सके हमारे साथ पासेस। और एक और मदर्स डे कॉम्पिटिशन विच इज कमिंग टू एन एंड वेरी सून, क्योंकि इसी फ्राइडे को होगा ना
1: मदर्स डे कॉम्पिटिशन, जो हमारे फेसबुक पर जारी है, और मम्स मूड स्विंग्स जो लाइव ऑन एयर आपके लिए हम लेकर आते हैं, इनमें हिस्सा लेने के बस आज और कल ही मौके आपको मिलेंगे, जिसके बाद ड्रोज फ्राइडे को होंगे, और संडे को तो आप मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो अगर अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है इसमें हिस्सा लेने का मौका हम आज भी आपको देंगे। प्लस हमारा हम फ्लाई अवे फ्रेंजी रिटेन एयर टिकट टू फिजी जीतने का मौका, ये भी आज 8 बजे के बाद पहला आपको मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रोवर पर चेटल खेलकर $100 कैश जीतने का मौका। लेकिन याद रखिए, आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार, और फ्राइडे को ऑकलैंड में रहेंगे जावेद अली।
2: Yes, that is something so amazing, जो कि इसी फ्राइडे को होने जा रहा है। और सबसे जरूरी बात ये कि जावेद अली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड। इनफैक्ट न्यूजीलैंड में इनका पहला ट्रिप ये रहेगा जहां पर ये परफॉर्म करने वाले हैं, तो इनके साथ आपको एक बार जुड़ने का मौका मिलेगा, इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का मौका जो है ये मिलेगा, जिसके लिए आपको टिकट्स अपने ये जरूर ले लेने हैं।
1: बहुत सारी चीजें हो रही हैं डिटेल में, इन सभी चीजों के बारे में तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन एक बार फिर आज के सुबह के इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा की ओर से, ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर।

0: Sunny Side Up.
1: 17 मिनट हुए हैं 6:00 और आज USA की एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं और कॉब स्कूल्स ऑरेटोरिकल इवेंट जो है ये अभी हाल में हुआ और ये इवेंट जो है उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्हें सुनाई नहीं देता है या फिर जिनके लिए सुनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनसे कहा जाता है कि वो आप कि आप कम्युनिटी के बारे में हमें बताएं, कम्युनिटी को डिफाइन करें। तो एक बहुत ही यंग स्टूडेंट था, उसका नाम है अजेल, और उसको बहुत सालों से ऐसा लगता था कि वो अपने नेबरहुड का हिस्सा नहीं है क्योंकि ही कुड नॉट हियर द किड्स प्लेइंग। बच्चे जब खेलते थे उनको सुनाई नहीं देता था, उसको पता ही नहीं चलता था जब देखते थे, और फिर समझ नहीं पा रहा था कि क्या ही वॉज इन्वाइटेड टू प्ले विद देम, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो बाद में चलकर उन्हें ये एहसास हुआ जो कहानी उन्होंने बताई कि उनके सुनने की क्षमता जो है ये ठीक नहीं हुई, ही वॉज स्टिल द सेम, लेकिन अ ग्रुप ऑफ हिज नेबर्स में जो बच्चे थे उन्होंने 5 बेसिक साइंस सीख लिए सो दैट दे कुड इनवाइट हिम टू प्ले टैग विद देम।
2: ओह दैट्स स्वीट।
1: अजेल ने क्राउड को बताया कि कम्युनिटी इजंट वेयर यू आर, इट्स व्हाट यू डू फॉर द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। तो ये अजेल की कहानी आज सनी साइड अप में, और अभी तो न्यूजीलैंड में साइन लैंग्वेज वीक भी मार्क किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो जिस तरह से बोल रहे हैं या जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आता। इट्स द फैक्ट कि आप कितने एफर्ट्स करते हैं टू लर्न समथिंग, टू पुट इन योर एफर्ट्स टू मेक समवन फील अ पार्ट ऑफ यू नो ऑफ द कम्युनिटी और अ पार्ट ऑफ यू और योर प्लान्स और अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बेसिकली। सो बहुत ज़रूरी है ये, एंड ऑन द अदर हैंड आई मस्ट से इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सनी साइड अप स्टोरी टुडे, एंड उम्मीद है कि इससे आपको भी कुछ सीखने को मिले।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: हे देखो आ गए।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.
2: With a gym personal loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes, with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
3: A legacy that built Swarajya. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar, Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: Global headlines.
11: आज सुबह के

0: हैं। भारत में टीवी के चीफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से सपोर्ट मांगा है, जिसकी पुष्टि केसी वेणुगोपाल ने की है। स्टेट कांग्रेस यूनिट आज चेन्नई में एक सभा करेगी, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि सेकुलर गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस टीवी के को ग्रीन सिग्नल दे सकती है। फिजी में समम्बुलक के जमजम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 9 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें CWM अस्पताल में एडमिट किया गया है। इन विक्टिम्स में से 2 की हालत काफी गंभीर है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं, जबकि बाकी लोगों का बर्न ट्रीटमेंट चल रहा है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार रेस्टोरेंट स्टाफ और ब्लू गैस के कर्मचारियों को सीरियस इंजरीज आई हैं और डॉक्टर्स उन्हें बेस्ट मेडिकल केयर देने की कोशिश कर रहे हैं। UEFA चैंपियंस लीग के रिटेन लीग का एक सेमीफाइनल सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। ये मैच आर्सेनल और एथलेटिको मैड्रिड के बीच होगा। उधर OFC प्रो लीग के अंतर्गत आज लीडर्स राउंड जो है ये शुरू होने जा रहा है। पहला मैच आज 3 बजे गो मीडिया स्टेडियम पर खेला जाएगा, जिसमें बुला FC साउथ आइलैंड यूनाइटेड का सामना करेगा, जिसके बाद 7 बजे ऑकलैंड FC और साउथ मेलबर्न के बीच मैच खेला जाएगा। IPL के एक मैच में आज सुबह चेन्नई सुपर किंग्स की जीत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेट से हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने इनिंग्स में 7 खिलाड़ी खोकर 155 रन बनाए। जवाब में 17.3 ओवर्स में 2 खिलाड़ी खोकर चेन्नई सुपर किंग्स ने 159 रन बना लिए। कल सुबह सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स का मुकाबला करेगा। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
1: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम।
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो लाजवाब गानों का ये बहुत ही दिलकश सफर आपके लिए जारी है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला जो है ये अच्छी चली बॉक्स ऑफिस पर, और उसके बाद बैक टू एक्शन, बैक एंड फोर्थ वो लगातार फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर एक फोटो जो है ये शेयर की है विद विद्या बालन और राशि खन्ना,
1: ओके,
0: जहां उन्होंने बताया है कि केरलम स्केड्यूल रैप्ड। तो केरला में किसी फिल्म की शूटिंग ये कर रहे थे। और उन्होंने कहा है बिग लव टू आवर डायरेक्टर अनीस बज़मी फॉर द मैडनेस बिहाइंड द कैमरा।
1: तो अनीस बज़मी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, मतलब अगली प्रोजेक्ट पे।
0: हाँ, वेल अक्षय कह रहे हैं दिस वन स्पेशल। इस फिल्म में अक्षय के साथ ऑब्वियसली विद्या बालन है और राशि खन्ना है। छोटा राजपाल भी उन्होंने मेंशन किया है। आई डोंट नो ये छोटा राजपाल कौन है, शायद वो राजपाल यादव को ही बोल रहे होंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा इंक्विजिटिव हो गया कि ये क्या है। वैसे इससे पहले अक्षय कुमार और विद्या बालन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तीन फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया है। भूल भुलैया आपको याद होगी, ये फिल्म तो आइकॉनिक है,
1: बहुत बढ़िया थी। और हे बेबी, दैट वाज अनदर मूवी दैट आई एक्चुअली लाइक्ड। एक और एक कौन सी फिल्म है, मुझे अभी तो याद नहीं आ रही है।
0: मिशन मंगल,
1: right? They were not opposite each other, but they played characters in the movie.
0: और ये जो चौथा collaboration है, is positioned as a comedy drama.
1: अच्छा, आर्टिकल पढ़कर जो आपने तीसरी फिल्म का नाम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बताया है ना, बहुत बढ़िया। तो लेट्स सी, चार चार फिल्में हो जाएंगी अब तो, कि विद्या बालन और अक्षय कुमार ने एक साथ इस फिल्म में काम किया है। अभी देखते हैं कि ये फिल्म एक्चुअली है किस चीज के बारे में और कब तक रिलीज होगी। We will get an opportunity to see that once that happens. Dusri aur, I don't know if you've seen this or not, but it's a very beautiful and a very important show to be seen, to be watched, which is Sapne vs. Everyone. और सपने वैसेज एवरीवन जो है, इसके जो ये जो वेब सीरीज़ है, बहुत ही सेंसेशनल वेब सीरीज़ ये रहा है। इसके जो क्रिएटर हैं, जिनका नाम बताया गया है अमरीश वर्मा, अमरीश वर्मा ने अभी एक डील साइन की है विद महावीर जैन फिल्म्स, और ये 2 film deal इन्होंने इनके साथ साइन की है। सो अब आने वाले दिनों में इनकी जो 2 फिल्में होंगी, ये महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही रिलीज करेंगे। लेट्स सी, इनके साथ ये जुड़ तो चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट क्या रहेगा और क्या कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा वंस ही मूव्स अवे फ्रॉम वेब सीरीज की दुनिया से टू फिल्मों की दुनिया में, और क्या ये प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे, सपने वर्सेस एवरीवन अगर आपने नहीं देखी है तो एक हिंदी लैंग्वेज ड्रामा है, और द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर शो इज कि दिस इज समथिंग दैट विल टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू। क्रिटिकली एक्लेम्ड है ये, और आई थिंक इसका पहला सीजन जो है ये लोगों ने बहुत पसंद किया, एंड द टॉक्स इज कि इसका सीजन 2 जो है ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic.
2: Never seen ice hockey before?
3: A bit of sun, mostly cloudy with a high of 21 today. Coming in on the southern motorway, almost half an hour in from Monaco now, 54 minutes dreary to the city. Slow Papa Quarter on and off to Mount Wellington. Southwestern slowing a little bit northbound through Whitty. Northwestern 27 from Massey, slow there, the causeway and Greyland to the city. Northern 24 from Constellation. Heavy gravel to Sunny Nook, slow to the bridge.
2: Ice hockey games this weekend. Fast, exciting, family-friendly entertainment. Search ice hockey tickets.
4: Ek sapna hai. Sapna kuch apna करने का सपना एक अपने बिजनेस का।
5: हम है क्रू केयर। सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स के इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
6: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
7: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
8: क्या बनाते हैं कबाब के स्पेशल Chef Alex?
7: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
8: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
7: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
9: 100% authentic and pure as mother's love.
10: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटो C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटो ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
12: जबरदस्त हिट्स
13: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
12: Playing Bollywood's biggest hits.
14: हम
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर। अभी तो 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। वैसे आपको अगर पता नहीं है, कल ऑकलैंड के रनुई में दो अलग अलग स्टैबिंग वाले इंसिडेंट सामने आए हैं, जहां पर कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें एक बाईस्टैंडर और एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। इस पर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ये 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस में हम आपके लिए लेकर आएंगे। और भी तमाम चीजों के बारे में खबरें जो है, ये नेक्स्ट आवर ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपके लिए रहेगा। लेकिन अभी कुछ गुड मॉर्निंग मैसेजेस आपके आए हैं।
16: बिल्कुल, तो सबसे पहले अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को विश कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए। मिस्टर माठा माठा, राम राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन, हैप्पी वेडनेसडे, हैव अ ग्रेट डे, इन्होंने कहा है।
15: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ गुड डे। मैंडी, आपको भी वेडनेसडे की बहुत सारी शुभकामनाएं।
16: और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज एक और एक मैसेज जो है ये आया हमारे पास विमलेश एंड प्रिया की ओर से। गुड मॉर्निंग, राम राम विजय जी, पूजा जी, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। विमलेश एंड प्रिया, थैंक यू सो मच आपके भी साथ के लिए, आपके मैसेज के लिए। एंड बिफोर यू मूव ऑन, बॉबी मान जी, इन्होंने भी अपना मैसेज सेंड किया है सेइंग गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव अ वंडरफुल डे, गणपति बप्पा मोरिया, गणेशस ब्लेसिंग्स अपॉन यू। थैंक यू सो मच बॉबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी साथ के लिए।
15: वैसे आपको तो पता ही है कि उस्ताद राहत फतेह अली खान ये आ रहे हैं ऑकलैंड परफॉर्म करने के लिए, और जैसे ही इनका कॉन्सर्ट जो है ये अनाउंस हुआ, एक्साइटमेंट जो है ये बढ़ गया। द ट्रस्ट एरिना में 25 जुलाई को ये रहेंगे। जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश।
16: तो आपके पास मौका है कि आप इनको लाइव परफॉर्म करता हुआ देखें, बिकॉज ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते ना. पिछली बार जब ये आए थे तो डेफिनेटली बहुत से लोगों ने मिस किया था एंड बाद में निराश हुए थे व्हेन दे हर्ड द शो वाज सो अमेजिंग. एंड इस बार तो आपको और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बनता है क्योंकि देयर आर सो मैनी अमेजिंग थिंग्स जो होने वाले हैं. सूफी गानों से लेकर कव्वाली तक, कव्वालियों से लेकर बॉलीवुड एडिशन तक ये आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं. और एक बहुत ही बड़ा बैंड इनके साथ आ रहा है ऑल द वे, जो ट्रेवल कर रहे हैं टू न्यूजीलैंड और यहाँ पर आकर परफॉर्म करने वाले हैं आपके लिए खास रूप से. सो 25th ऑफ जुलाई को एट द ट्रस्ट एरिना इनका ये शो रहेगा. dryTickets.com ये आपको विजिट करते हुए अपने टिकट्स ग्रैब कर लेने हैं. बट इफ यू वांट टू विन सम पासेस तो अपॉर्चुनिटी चलिए अब हम आपको दे रहे हैं.
15: आपको हम उस्ताद राहत फतेह अली खान के एक गाने के कुछ लाइन सुनाएंगे और अगला लाइन जो है ये आपको हमारे पास टेक्स्ट करना होगा. जैसे ही हम आपको ये सुनाएं उसके बाद RFK, रिमेम्बर RFK कीवर्ड है वो लिखना जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद गाने के जो बाकी का लाइन है वो और अपना नाम, ये लिखकर आप 5599 पर हमारे पास भेजे. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली डू अप्लाई. डबल पास जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं तो तैयार हैं होपफुली आप सुनने के लिए लाइंस. और आज का जो गाना है इज दिस वन. तो अब इससे आगे आपको हमें सुनाना है या बताना है जो भी आप कहना चाहें.
16: लाइन कंप्लीट करनी है आपको तो जल्दी से लाइन कंप्लीट कीजिए और हमारे पास बाकी के जो वर्ड्स हैं, ये लिरिक्स हैं, ये आप सेंड कीजिए. सबसे पहले RFK राहत फतेह अली खान का जो शॉर्ट फॉर्म है इनके नाम का RFK, ये आपको लिखना है. फिर उसके बाद में गाने का जो बाकी का लाइन है आगे का ये आपको टेक्स्ट करना है और अपना नाम लिखकर भेज देना है हमारे पास 5599 पर. इट्स दैट सिंपल.
15: तो एक बार फिर जो गाना है ये आप सुन लें. तो अब इससे आगे का लाइन आप हमारे पास भेजे. अराउंड 6 मिनट्स का टाइम है आपके पास.

0: भाई आज तो कमाल हो गया, डबल पास हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तीन ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि गाने का अगला लाइन जो है ये आप हमें बताएं।
1: आई डोंट थिंक सो कि इतना डिफिकल्ट है, बट शायद हो सकता है कि लोगों को डिफिकल्टी हो रही है। I mean, I'm just trying to work out ways कि क्यों सिर्फ तीन लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया। ऐसे करते हैं, एक बार फिर से सुना देते हैं जो गाना है, एंड लेट देम डिसाइड आफ्टर दैट।
0: यस, शिखा है, ज्योति और रोनाल्ड, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, थैंक यू सो मच। तो ये गाना है, डबल पास जीतने का मौका है आपके पास टू वॉच उस्ताद राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट। इस गाने को हम थोड़ा सा आपको सुनाएंगे, अगला लाइन जो है ये आपको हमें टेक्स्ट करना होगा, तो सुने अच्छी तरह से गाना जो है ये। तो इससे आगे का जो लाइन है ये आप हमें भेजें, RFK अपना आंसर और नाम, ये 5599 पर आपको हमारे पास टेक्स्ट करना है।
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: बस 8 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे और अगले घंटे राशि वाइब्स, बर्थडे और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स, न्यूज हेडलाइंस, ये सब कुछ होगा। कई कॉम्पिटिशन्स भी होंगे जिनमें पार्टिसिपेट आप कर सकेंगे, तो सो स्टे विद अस। इतना टाइम हमने आपको दिया, दो और लोगों ने अपने आंसर्स या तीन लोगों ने अपने आंसर्स भेजे हैं। कवनीत हैं, प्रिया और प्रनीका, आपने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं, थैंक यू सो मच। तो ऐसा करते हैं, 7 बजे के बाद हम करेक्ट आंसर आपको बताएंगे कि गाने का अगला लाइन जो है ये क्या है।
1: तो इसके लिए आप हमारे साथ ही रहिएगा, पर अगर आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा मुझे पता है, लेट मी ट्राई। आरिफ का लिखना है आपको, फिर उसके बाद में आपको अपना आंसर लिखना है, मतलब आगे के जो लाइन है इसे कंप्लीट करना है करेक्टली, और तभी आप इस ड्रो का हिस्सा बनेंगे। और फिर अपना नाम लिखकर आप हमारे पास इसे 5599% कर दीजिए, बिकॉज दैट्स द वे आप इस ड्रो का हिस्सा बन सकेंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Close to 14 degrees है टेम्परेचर आज का हाई 21 ओवरनाइट कम से कम 15 डिग्रीज बादल छाए रहेंगे और आज रहकर बारिश भी होगी मुख्यतः शाम के समय सनसेट आज का 5:32 PM पर होगा

0: Go.nz.
1: मॉर्निंग मैडर्स की शुरुआत चलिए आप सभी के साथ ओनली ऑन हम करने जा रहे हैं. अब हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं. 3 मिनट हो रहे हैं, समय 7:00. आज है वेंसडे द 6th of May. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम.
2: इस घंटे 7:30 न्यूज हेडलाइंस, उसके बाद बर्थडे और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स, लेकिन कुछ ही देर में आज के आपके राशि वाइब्स और फिर सेलिब्रिटी अलार्म भी हम आपके साथ खेलेंगे.
1: लेकिन सबसे पहले चलिए इस घंटे की शुरुआत, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक मौके के साथ. आपको विजेता बनाना है हमें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या आप विनर बनना चाहते हैं या नहीं. अगर आप विनर बनना चाहते हैं, यू वांट टू विन योर शेयर ऑफ $600, क्योंकि थर्ड प्राइज में $100, सेकंड प्राइज में $200 और फर्स्ट प्राइज में $300 हम गिव अवे कर रहे हैं, जिसका ड्रॉ इसी फ्राइडे को होगा. तो उसके लिए आपको हमारे इस अगले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है.
2: और ये है मदर्स डे के मौके पर मम्स मूड स्विंग सिनारियो हम आपको देते हैं. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस बताना है अपने मम्मी के स्टाइल में, अपने माँ के स्टाइल में कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगी.
1: सिचुएशन हम देंगे, रिएक्शन आपको देना है. इट्स दैट सिंपल. तो पहले तो हम सिचुएशन बता देते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए. आफ्टर लिसनिंग टू द सिचुएशन फटाफट हमारे पास कॉल कीजिए 0800 00 हम पर. रिमेम्बर 0800 00 हम, दैट्स द नंबर जिस पर आपको कॉल करना है और बताना है कि इस सिचुएशन में आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा. एंड जैसे जैसे आपकी मम्मी का रिएक्शन होगा वैसे वैसे आप हमें बताइए और बदले में ड्रो में शामिल हो जाइए. इट्स दैट सिंपल. तो आज का सिचुएशन ये है कि आप पूरी फैमिली आराम से बैठकर आफ्टर डिनर थोड़ा जो फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे, वाचिंग सम टीवी एंड ऑल, एंड देन योर पेरेंट्स डिसाइडेड कि अभी हमें जाकर सोना है. लास्ट पर्सन आप बचे थे तो आपको बता दिया कि रिमेंबर सोने से पहले स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द लाइट्स जो जलने नहीं चाहिए, एंड देन जस्ट गो टू बेड, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स. एंड यू लाइक या ऑल गुड. एंड देन आपके पेरेंट्स चले जाते सोने, आप चले जाते सोने. अगली सुबह मम्मी बीइंग मम्मी द फर्स्ट पर्सन टू वेक अप, एंड देन शी वॉक्स इनटू द लिविंग रूम एंड शी सीज कि जो लाइट्स आपको बताया था रात को स्विच ऑफ कर सोने के लिए वो अभी भी जल रहे हैं. इट्स स्टिल स्विच्ड ऑन. अब क्या होगा?
2: यू वेक अप एंड यू कम इनटू द लिविंग रूम, मम्मी है वहां पर, क्या होगा उनका रिएक्शन? वही रिएक्शन आपको अब हमें देना है. 0800 00 हम. और आज सुबह आप में से किसी एक का नाम ही ड्रो में शामिल होगा. सो देयर इज ओनली वन अपॉर्चुनिटी, इसीलिए अब आपको जल्दी से कॉल करना है 0800 00 4866.
1: ये हमारा फर्स्ट पर्सन टू कॉल एंड गिव द रिएक्शन, उन्हीं का नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे.
2: या और रिएक्शन वो भी आपकी मम्मी के स्टाइल में ही होना चाहिए. तो टाइम बहुत कम है हमारे पास. मॉर्निंग मैडनेस है, आपको तो पता ही है, हर कोई इधर से उधर भाग रहा होता है. तो
1: बिजी आवर ना,
2: हाँ बिजी आवर में, बिजी टाइम पर आपको ये अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, जहाँ पर $100 कैश, $200 कैश या $300 कैश, इन तीनों में से कोई एक इनाम आपको मिल सकता है, बशर्ते आप रिएक्शन तो दें.
1: चलिए इंतजार करेंगे हम अनदर 30 seconds. कॉल आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो विल मूव आउट विदाउट एनी एंट्री. एंड ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज टाइम एक ऐसी कीमती चीज है जिसके साथ चलना बहुत जरूरी है ना. सो 0800 00 हम, 0800 00 4866 दैट्स द नंबर यू हैव टू कॉल ऑन.
2: गुड मॉर्निंग. हेलो,
3: गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग विजय जी. सोम बोल रहा हूँ.
2: कैसे हो सोम?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: हम लोग भी बढ़िया हैं एकदम सोम. सफर पर मेरे ख्याल से आप निकल चुके हैं तो हम बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका. आप बताना,
1: फटाफट बता दो मम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी सिचुएशन पर.
3: मम्मी तो डेफिनेटली, मेरी मम्मी बहुत चिल है, उसको वो सबका कोई फर्क पड़ता नहीं है. बट डैड बहुत वो है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से डैड चिल्लाएंगे तो मम्मी आके उल्टा रोकेगी, अरे ठीक है कुछ नहीं है छोड़ दो. तो फिर पापा मम्मी को बोलेंगे पैसा क्या तुम भरोगे कि मैं भरूंगा, ऐसे करके.
2: अच्छा, तो मम्मी और पापा में झगड़ा हो जाएगा.
3: हाँ, तो बेसिकली सुबह सुबह ऐसा हो जाएगा. ऐसा हुआ भी है जब छोटे थे हम. अच्छा. तो टीवी देखते देखते छोड़ देते थे, तो मेरे घर में मम्मी बहुत चिल है, पापा ज्यादा चिल्लाते हैं.
1: पापा चिल्लाते हैं, मम्मी चिल करती है, क्या बात है यार.
3: मम्मी बहुत मस्त मौला है, बचपन से देखा है. मम्मी सब तब चिल्लाती है अगर मम्मी के सीरियल के बीच में हमने चिल्ला दिया.
1: मुझे लगा मम्मी सिर्फ पापा पर चिल्लाती है.
3: उनका तो वो तो चलता रहता है बट मम्मी हम पे कम चिल्लाती है, पापा पे ज्यादा चिल्लाती है, पापा हम पे ज्यादा चिल्लाते
1: हैं. ओह दैट्स नाइस यार, यू आर सेफ यार ना.
2: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. आपका नाम हम डेफिनेटली ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं मदर्स डे मूड स्विंग्स के लिए. सुनते रहें फ्राइडे को, किस्मत अच्छी रही तो आप के इनमें से कोई एक इनाम जीत जाएंगे. फिलहाल जो गाना है ये भी सुनाना है ना, राहत फतेह अली खान के लिए या जो कॉम्पिटिशन के लिए आपको नेक्स्ट लाइन हमारे पास भेजना था. सो हैव अ लिसन, ये है नेक्स्ट लाइन.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: राशि वाइब्स।
2: अपने राशि वाइब्स का आप बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। तो आज सबसे पहले मेष यानी एरीज, आपका ट्रेवल अच्छा जाएगा। आज तो कहीं से कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको मिल सकता है और कोई बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बड़ी इजीली आपको मिल जाएगा। समय अच्छा है लेकिन हेल्थ आज आपका थोड़ा कमजोर हो सकता है।
3: वृषिनी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि परिवार के किसी भी सदस्य के हेल्थ को लेकर आज आपके पैसे खर्चे होंगे, यूड बी वरीड एज वेल। और साथ में आपके लिए बताया गया है कि चिंता और तनाव, ये दोनों परेशान करने वाले हैं आपको। किसी भी काम में आज के लिए जल्दबाजी ना करें और किसी भी तरह के फालतू खर्च को बढ़ावा ना दे, ये सलाह आपको दी जा रही है।
2: आज मिथुन यानी जेमिनी, इनकम आपका बढ़ेगा, फायदा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और ऑफिस में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। सारी अच्छी चीजें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। समय अच्छा है, आप फायदा उठा सकते हैं।
3: एंड उसके बाद कर्क यानी कैंसर, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज फाइनेंशियली प्रोग्रेस आप जरूर देखेंगे। बिजनेस आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आपका खुद का बिजनेस है तो। जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे और ये आपके हित में होंगी। सम पॉजिटिव चेंजेस ये आपके लिए बताया जा रहा है। सो ऑल इन ऑल यू विल हैव अ हैप्पी डे टुडे।
2: सिंह यानी लियो, आज आप कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। किसी रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिजनेस ठीक ठाक चलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें।
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है बनते कामों में एक विघ्न आ सकती है जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। चिंता और तनाव रहेगा आज। बेकार बातों की ओर ध्यान ना दे, अदरवाइज इससे आपका नुकसान होगा। बिजनेस है अगर जो आपका, ये ठीक ठाक चलेगा आज।
2: तुला यानी लिब्रा, आज रिस्क आप ले सकते हैं, भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। कुछ रेस्टलेस सा फील करेंगे लेकिन सभी तरफ से सक्सेस ही सक्सेस है आज आपकी खातिर।
3: एंड उसके साथ साथ आज बताया जा रहा है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज बढ़ सकती हैं और प्रोग्रेस जरूर देखेंगे आप जिसकी वजह से खुश रहेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे थे इतने दिनों से तो मनचाही नौकरी आज आपको फाइनली मिल जाएगी, ऐसा आपके लिए बताया गया है।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ऑफिस में इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा। कुछ लीगल प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं तो आज अच्छा होगा कोई रिस्क आप ना लें।
3: एंड मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए बताया गया है कि आज मेहनत अधिक करनी होगी तभी फायदा हाथ लगेगा और साथ में बेचैनी रहेगी। मानसिक रूप से तो थोड़ा कुछ आप परेशान रहेंगे ही, चीजों के बारे में सोचेंगे, आज बिजी रहेंगे बेसिकली और कीमती चीजों को संभाल कर रखें, ऐसा भी आज आपके लिए कहा गया है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐशो आराम पर कुछ ज्यादा ही पैसे आज आप स्पेंड करेंगे। घर बाहर सुख शांति आपके लिए बनी रहेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ मिलेंगी और हाथ आएंगी और मेहनत का पूरा फल आज आपको मिलेगा।
3: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, आज आपके लिए कहा गया है बहुत एक्साइटेड रहेंगे, कोई अच्छी खबर भी मिलेगी आपको, आत्मसम्मान बना रहेगा और आप जो कोशिशें कर रहे हैं एक प्रोग्रेसिव लाइफ पाने की, फाइनेंशियली स्टेबल होने की, वो कोशिशें सफल होती हुई नजर आएंगी आज। सो दीज वर योर स्टार्स फॉर द डे। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद आज आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म एक बार फिर, एंड वी विल सी कि आज क्या आप इनकी आवाज पहचान पाते हैं या नहीं।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फिजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत, एक हफ्ता हो गया। गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
8: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: सेलिब्रिटी अलार्म जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी होता जा रहा है और बीते दिनों में देखिए तो कई लोगों ने सही जवाब जो हैं ये दिए हैं। आज की सेलिब्रिटी को पहचानना मेरे ख्याल से शायद उतना ईजी ना होगा।
1: Okay, we'll see about that. But remember कि जैसे ही आप इनकी आवाज सुने and if you feel like you know the voice, तो आपको बस इनका नाम हमारे पास लिख भेजना है। सबसे पहले BF लिखे, फिर उसके बाद जो कोई भी सेलिब्रिटी आपको लगता है ये है वो लिखे और अपना नाम लिखे और 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर दे आप।
0: बहुत छोटा सा जो सेगमेंट है ये या छोटा सा पोर्शन है कि हम आपको सुनाएंगे, इसीलिए आपको ये

0: ही हैं।
1: ओके चलो, एक तो मिल चुका है मैं हिंट की,
0: दूसरा शी इज फ्रॉम इंडिया।
1: ओके तो दो बड़े क्लूज मिल चुके हैं, एक तो कोई एक्ट्रेस नहीं है और इंडियन है, तो लेट्स सी कि क्या आप पहचान पाते हैं इनकी आवाज देने। एक बार फिर हो जाए,
0: एक बार फिर हो जाए, होने के लिए तो मेहनत जो है ये करनी पड़ेगी। अच्छी तरह से आप सुन ले, थोड़ा सा ही आपको हम सुनाएंगे।
2: Place back home, which is famous for bail. So whatever diet I am on, I pass by it. I can't resist that.
0: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी की आवाज। अब वक्त आपके पास है BF आंसर और नाम, ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है।
3: Bollywood's most wanted. सीधा अंदर आऊं,
4: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Co.nz.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड के रनुई में दो अलग अलग स्टैबिंग इंसिडेंट्स के बाद दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस हमले में एक पुलिस ऑफिसर और एक बायस्टैंडर भी जख्मी हुए हैं। पहली घटना स्वानसन रोड के एक घर पर हुई, जिसके बाद पुलिस विक्टिम को मेडिकल सेंटर ले गई तो वहां बाहर एक दूसरा अनरिलेटेड अटैक शुरू हो गया। छुरी लिए हुए ऑफेंडर ने पुलिस और बस स्टॉप पर खड़े एक व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया गया है और अब दोनों सस्पेक्ट्स पर चार्जेस लगाए गए हैं। बे ऑफ प्लेंटी के नोथ में कल शाम 3 एर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए, जिनमें सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड 5.6 का था। जियोनेट के मुताबिक पहले झटके के बाद 4.2 और 2.7 मैग्नीट्यूड के दो और क्वेक्स रिकॉर्ड किए गए, जो ऑकलैंड और वेकाटो तक महसूस किए गए थे। यूएफए चैंपियंस लीग रिटेन लेग सेमीफाइनल के मैचेस आज से शुरू हो चुके हैं। पहला मैच अभी आर्सेनल और एथलेटिको मैड्रिड के बीच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और दोनों टीमें अभी नील ओल से बराबर हैं। एग्रीगेट पर भी दोनों टीमें बराबर हैं और आज के सेमीफाइनल मैच में एक विजेता जो है ये डिसाइड किया जाएगा। ओएफसी प्रो लीग लीडर्स कंपटीशन आज से शुरू हो रहा है। गौ मीडिया स्टेडियम में आज 3 बजे बुला एफसी साउथ आइलैंड का मुकाबला करेगा, जिसके बाद 7 बजे ऑकलैंड एफसी और साउथ मेलबर्न एफसी का खेल होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
4: 80s ke retro gaane.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Sell or loan against your gold at Cash Converters.
3: A little sun, a lot of cloud, a high of 21 today. Into the city, Southern Motorway, we're 45 minutes now. Manukau to the city, slow all the way in from Papakura with heavy patches on and off. Southwestern, slow northbound through Whitty. Northwestern, 42 minutes, Massey to town, slow from Upper Harbour with frequent heavy patches. Northern 39 from Constellation, heavy at Silverdale and Greville right to the bridge.
2: Visit your local store and turn your gold into sold. Valid ID, lending criteria and terms apply.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: The InvestNow KiwiSaver scheme provides access to a wide range of investment opportunity options, including the Foundation Series Funds. The Foundation Series Funds invest across global markets, helping investors spread their investments across different regions and asset types. Some funds may include buy and sell fees and all carry risk. Returns aren't guaranteed. The issuer of the InvestNow KiwiSaver scheme in the Foundation Series Funds is Fundrock NZ Limited. To learn more and read the product disclosure statement, visit investnow.co.nz.
7: Pacific Electrical Services presents Javed Ali, live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Muhammad Rafi Saab in Rafi or Meh, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Centre, 8th May, 7pm onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184. Ek din tera ho jaunga.
8: Stuck in the daily grind? Discover where your next adventure could take you at the Auckland Travel Show this Saturday and Sunday at the New Zealand International Convention Centre. With over 60 exhibitors, discover destinations like Sri Lanka, Europe, China, the Pacific Islands, loads of cruising, tours and more. Plus, go in the draw to win business class flights with Malaysia Airlines. T's and C's apply. Go to travelshow.co.nz for info and tickets. Discover, plan, book.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: Birthday greetings.
12: इसका बर्थडे है?
13: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ.
14: Happy birthday to you.
15: आज 6th ऑफ मे सबसे पहले अनिल पटेल जी आज सनी न्यूक में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के इस मौके पर आज तमाम परिवार वालों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिली हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और आज विमल और शशि जी हैं मनुरेवा में शादी की 26वीं सालगिरह मना रहे हैं हैप्पी 26th एनिवर्सरी आप दोनों को और also thanking Almighty and Hubby for our togetherness despite ups and downs in life but we will be together and always be तीन बेटे हैं आपके शिवि दिवनेश और बंकू कृषांत साथ में नॉट फॉरगेटिंग गोविंद शेफ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खास जगह रखते हैं जितने भी फैमिली हैं फ्रेंड्स हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में एंड अब्रॉड सभी ने आज आपको याद किया है और शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं तो हम सभी की ओर से विमल और शशि जी शादी की 26वीं सालगिरह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो सुनीता कुलदीप जी हैं ऑकलैंड सीबीडी में और आशा भी गुप्ता जी माउंट रस्किल में आज अपना जन्मदिन आप मना रहे हैं खुशी के इस मौके पर आपके तमाम परिवार वाले सुबह से ही शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी की ओर से भी आज का ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सानवी चंद, आज आपके लिए भी एक मैसेज आया है टू आवर प्रेशियस डॉटर सानवी चंद, मे योर 16th बर्थडे बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मम एंड डैड। अरिश्मा और अतनेश हैं, भैया युवान हैं। कजन्स हैं आपके रायनल और मनीषा जी आ जाए हैं। राम स्वरूप जो सिंगटोका फीजी से आए हुए हैं, साथ में नानी है, मामा, मौसी, मौसा फीजी से, और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको याद कर रहे हैं और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सानवी, अ वेरी वेरी हैप्पी 16th बर्थडे आपको हम कहना चाहेंगे। इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपके लिए। साथ ही में आज राजवंत बैंस जी हैं द गार्डन्स में, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

Go.nz. 19 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में और आज का जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म था, आवाज़ जो हमने आपको सुनाई, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आज हमारे पास आए। सानिया मिर्जा का नाम आया, उसके अलावा निया शर्मा का नाम जो है ये हमारे पास आया, और जमैमा रोड्रिगस, साथ में अन्य रुजुता दिवाकर, ऐसे बहुत सारे नाम आए, लेकिन द करेक्ट आंसर आज सेलिब्रिटी अलार्म में वॉज स्मृति मंदना। कई लोगों ने सही जवाब भी आज भेजा है, थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी। थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट, अगले घंटे हम फ्लाई अवे फ्रेंजी का आज का हमारा पहला कोड वर्ड रिवील होना है, होपफुली तैयार आप रहें। एंड दूसरी तरफ सुबह आपको हमने ब्रीफली बताया था कि आप लगभग 350 टिकट्स जो हैं ये कल तक बाकी थे और जावेद अली फ्राइडे को रहेंगे इन ऑकलैंड एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। पहली बार ऑकलैंड में इनका धमाकेदार परफॉर्मेंस जो है ये होने जा रहा है। अलग अलग सेगमेंट्स, रफ़ी साहब के लाजवाब गाने, अनप्लग्ड सेशंस और साथ में जावेद अली के खुद के सुपरहिट गानों का आप मज़ा ले सकेंगे। टिकट्स जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम $59। अभी तो मुझे पता नहीं है कि कितने टिकट्स बाकी रह गए हैं,
1: जैसे ही पता चलेगा विल डेफिनेटली बी अपडेटिंग ऑन दैट कि अभी कितने टिकट्स बाकी हैं। पर फिलहाल आपको ये हम जरूर बता सकते हैं कि आपके लिए टिकट बाकी है ये नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर यू विजिट StarAllianceEntertainment.com, रिमेंबर StarAllianceEntertainment.com, और यहाँ से अपने टिकट्स जो है ये आप फटाफट ग्रैब कर ले ताकि आपको आसानी हो जाए। एंड व्हेन यू हैव अ टिकट यू आर रेस्ट श्योर कि अच्छा ठीक है भाई, एटलीस्ट टिकट है, मतलब आई कैन गो दिस फ्राइडे एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, आई हैव नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। एंड आप आराम से देख सकेंगे जावेद अली का ये बहुत ही खूबसूरत शो रफ़ी और मैं, टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी बाय जावेद अली। कमाल की बात ये है कि ये इनका पहला ट्रिप है टू न्यूजीलैंड, लेकिन इससे पहले ये मेलबर्न में परफॉर्म कर चुके, नहीं ब्रिस्बन मेरे ख्याल से, हाँ ब्रिस्बन में परफॉर्म कर चुके हैं। एंड ब्रिस्बन में इनका जो शो था इट वॉज अ हाउसफुल शो, सोल्ड आउट शो बेसिकली। अब अगला शो इनका जो है या ब्रिस्बन के बाद आई थिंक अगला शो इन्होंने सुबह में परफॉर्म किया ऑन द 3rd of May एंड दैट टू वॉज सोल्ड आउट। अब तीसरा शो है ये, पहली बार न्यूजीलैंड आ रहे हैं, दो शोज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर न्यूजीलैंड वालों ने इज्जत नहीं रखी तो अगर ये शो सोल्ड आउट नहीं हुआ, इमेजिन इफ सुवा फिजी एंड ब्रिस्बन ऑस्ट्रेलिया कैन बी सोल्ड आउट, देन व्हाई नॉट ऑकलैंड न्यूजीलैंड। जस्ट 350 मोर टिकट्स टू गो, आई थिंक उससे कम बाकी होंगे बिकॉज द लास्ट वी नो मंडे से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि 350 टिकट्स ही अब रह चुके हैं।
0: तो आप जल्द से जल्द टिकट्स अगर आपने नहीं लिए हैं, जावेद अली लाइव इन कॉन्सर्ट, स्टार अलाइंड एंटरटेनमेंट की ये पेशकश प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, टिकट्स जल्द से जल्द आप ले ले टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग दिस फ्राइडे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 13.5 डिग्री टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 21, ओवरनाइट कम से कम 15 डिग्रीज रहेगा। बादल छाए रहेंगे, कुछ हल्की बारिश हो सकती है खासतौर पर शाम के समय। सनसेट आज का 5:32 पीएम पर होगा।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: तो आज का ट्रेंड पेट्रोल बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है एंड दिस इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर एंड ऑनलाइन। जस्ट इन केस इफ यू मिस दिस आउट, तो चलिए आपको बता दे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर जितने भी 6 विनर्स हैं ऑफ द ग्रीन नोबेल प्राइज, ये सभी महिलाएं हैं। एंड ऑल दी 6 विनर्स ऑफ 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, द ग्रीन नोबेल जो है, इन महिलाओं ने इतना कमाल का काम किया है। अलग अलग कंट्रीज को ये बिलोंग करती हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है। एंड टू लेट यू ऑल नो कि ये कौन है, एलाना एकेक हर्ली, ये यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। इन्होंने हेल्प किया टू स्टॉप वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट प्रपोज्ड माइंस, प्रोटेक्टिंग 25 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड एंड वाइल्ड लाइफ, जिनकी वजह से इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरी है इरोरो तानशी, और ये नाइजीरिया के हैं, या नाइजीरिया की है, माफ कीजिएगा। इन्होंने प्रोटेक्ट किया एन एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज बाय लीडिंग कम्युनिटी एफर्ट्स टू स्टॉप वाइल्ड फायर्स इन अ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरी है सैरा फ्लिंच, ये यूनाइटेड किंगडम की हैं। इन्होंने सिक्योर किया एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो रिक्वायर करता है फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स टू अकाउंट फॉर देयर क्लाइमेट इम्पैक्ट। और जो चौथी रेसिपिएंट, ये पापुआ निगिनी की है, इनका नाम है थियोनीला रोका मतबोप, और इन्होंने फोर्स किया था एक ग्लोबल माइनिंग कंपनी को टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज एंड बिगिन क्लीनअप एफर्ट्स। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी हैज डन। एंड फिफ्थ पर है साउथ कोरिया की बोरिम किम। बोरिम किम जीत चुकी है एशियाज फर्स्ट यूथ लेड क्लाइमेट लॉ सूट, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू सेट लीगली बाइंडिंग एमिशंस टारगेट्स। और जो छठा नाम है इस लिस्ट में, ये है यूवेलिस मोरालास ब्लैंको, कोलंबिया की है ये। शी लेड अ मूवमेंट दैट स्टॉप्ड फ्रैकिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटेक्टेड हर कम्युनिटीज एनवायरमेंटल राइट्स। तो ये जो 6 महिलाएं हैं, दे वर द विनर्स दैट इंक्लूडेड एक्टिविस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि हमने मेंशन किया, एंड ईच लीडिंग एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम और टू स्टॉप हार्मफुल डेवलपमेंट्स, एंड गवर्नमेंट को यहाँ तक उन्होंने पुश किया टू एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से न केवल 1-2 कंट्रीज लेकिन पूरी दुनिया जो है एक सिचुएशन फेस कर रही है। जो कंट्री इसे एक्सेप्ट कर उस पर काम कर रही है, डेफिनेटली दे विल सी द रिजल्ट्स, लेकिन जो इसको बस एक थियरी मानकर यू नो डिनाई कर रहे हैं, उनका तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट डेफिनेटली अगर ऐसे सिटीजन्स हैं उनकी कंट्री में तो उनका फ़ायदा हो सकता है।
1: एंड इट्स गुड कि उनके काम को पहचाना गया, उनके काम को सम्मान जो है ये भी दिया गया है। थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक भी आपके लिए होगा इस प्रोग्राम में, प्लस इसी घंटे हमारा पहला काउट वोट भी रिवील होगा हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए।

0: Backyard Beats.
1: पूरे महीने हम न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पर और अपने कलाकारों को पेश भी कर रहे हैं. तो आइए आज के जो हमारे कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल कुछ देर बाद हम आपको देंगे, लेकिन उनका गाना अभी एंजॉय करते हैं एहफाज़ ललानी से.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Whether mum's into movies, meals, or mountain adventures, Gift Station has a gift card for that. Choose from event cinemas, Uber, or MacPack and give her exactly what she loves this Mother's Day. Shop the range at giftstation.co.nz.
5: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected Sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
6: वो indelible homes वाली कहानी सुनाओ ना.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: Big Boss, देखा है ना? अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो. मुनावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो.
11: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है.
10: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना 7 PM onwards. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: What's your take?
14: 18 मिनट हो रहे हैं अब 8 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और व्हाट्स योर टेक में अब आज जो विषय है ये हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसे सुनने के बाद 0800-004-866 इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा. एक्स पर जाकर एक शख्स जो है इन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जिसके बाद दुनिया भर में इंडियंस जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनके बीच काफ़ी बातें डिस्कशन जो है ये शुरू हो गया है. तो प्रियांश अग्रवाल नाम के जो शख्स हैं उन्होंने आई थिंक जाकर इसे 3-4 दिन पहले इसे एक्स पर शेयर किया था और उन्होंने लिखा, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस आई हैव बीन लिविंग अलोन नाउ एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव व्हेन आई एम कम्प्लीटली अलोन. I don't have to justify any of my actions to anybody and I don't get distracted by what others are doing. It comes at a cost of having to pay a higher rent, but that gets nullified with the money I save as I don't go out as much. ये इन्होंने जाकर शेयर किया एक्स पर कि तकरीबन 1 साल हो गए हैं वो अकेले रहते हैं और उन्हें ये एहसास हुआ है कि जब से ये अकेले रहते हैं He's been the most productive. उनको अपने किसी एक एक्शन के लिए किसी को जस्टिफाई नहीं करना होता, किसी को ये सामने जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे इन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता. हालांकि अकेले रहने की वजह से पूरा खर्चा घर का इन्हें उठाना पड़ता है, रेंट वगैरह, लेकिन बाहर बहुत कम जाते हैं तो ही इज़ एबल टू सेव ऑल्सो. तो भाई अब देखो, एक दौर था जहाँ पर एकदम एक्सटेंडेड फैमिलीज जो है ये होती थी हमारी, है ना, दादा दादी पर दादा दादी, उसके बाद यू नो 3-4 generations जो है सभी एक साथ रहते थे. फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा होकर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे, और उसके बाद अब ये चलन आ रहा है. आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बातें की थी कि जहाँ पर एक शख्स ने कहा था कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ जनरेशनल होम लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है ये जीनी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ बच्चों के एम्बिशंस, करियर फोकस सब कुछ चेंज हो रहा है। और जो घर आप अपने परिवार के लिए बना रहे हो या सपना देख रहे हो वो प्रैक्टिकल शायद ना हो पाए। और उसके बाद ये जब पोस्ट मेरी नज़रों में आया तो इट वॉज़ लाइक अ बिल्डअप टू दैट पोस्ट जो काफ़ी पहले किसी ने किया था। तो आज इसके बारे में हम आपकी राय जो है ये जानना चाहते हैं। कई लोगों ने ऑलरेडी अपने व्यूज़ इस बारे में शेयर किए हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? ये कह रहे हैं कि ही इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव व्हेन ही इज़ कम्प्लीटली अलोन, ही डजंट हैव टू जस्टिफाई एनी ऑफ हिज एक्शंस टू एनीवन, एंड ही डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट अदर्स आर डूइंग। ऑब्वियसली ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है। आपकी राय में क्या अभी के वक्त पर जिस तरह से समय बदला है, लोगों के सोचने का तरीका बदला है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, सब कुछ चेंजेस के बाद इज इट स्टिल यू नो प्रेफर्ड टू बी लिविंग विद फैमिली या फिर अकेले रहना ज़्यादा बेहतर होगा? ये आज का हमारा टॉपिक है, या आज इस पर आपका टेक हम जानना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक? एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग परविंदर।
13: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
14: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
13: बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। मेरा तो मिक्स थॉट्स है, जैसे यहाँ पे हम अकेले रहते हैं ना, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा,
14: हाँ।
13: सारा काम खुद करना पड़ता है, वो अलग बात है, अपनी मर्जी से होता है।
14: ओके।
13: बट अभी जब मैं इंडिया गई थी तो मेरे हस्बैंड की जॉइंट फैमिली है और जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली है। तो मतलब इतना रिलैक्स होता था, मैंने वहाँ पे एक महीना जितना भी मैं रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इतने लोग थे,
14: सब करने वाला कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई था,
13: कोई ना कोई था। और उसके अलावा मतलब ये काम तो और बात है ना कि खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब करना, ये तो और काम है। पर्सनल कामों के लिए भी इतने लोग थे, जैसे बालों में तेल लगाना है, हाथों पैरों की मालिश करनी है,
14: okay.
13: इसके लिए भी इतने लोग थे। तो मेरे मिक्स थॉट्स है कि प्रोज भी है कॉन्स भी है। एक सबसे बड़ा प्रो जॉइंट फैमिली का तो ये है कि हेल्प हो जाती थी मुझे मेरे बेटे के रिगार्डिंग,

0: जी, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर की फैमिली, मेरी भाई की फैमिली और हमारे पेरेंट्स, तो हम सभी लोग साथ में रहते हैं एक ही घर में।
1: अब कैसा है आपका ये एक्सपीरियंस?
0: बहुत अच्छा है, हमें हो गए आराम से, आई थिंक वी जस्ट डिसाइडेड बिफोर 7-8 years हो गए हमें साथ में रहते हुए। और बच्चे भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं,
1: सब कुछ सही जा रहा है अभी,
0: सब कुछ टच होट अभी तक। यस,
1: ओके, दैट्स नाइस। तो ये जो शख्स कह रहे हैं कि यू नो अकेले रहते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं when he is completely alone and he doesn't have to justify any of his actions to anybody, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
0: नहीं, I don't think so. Like it depends on person to right, कि उनका क्या है क्या नहीं है, उनका जो view है, point of view. लेकिन मेरे ख्याल से कि जब हम लोग साथ में रहते हैं then ज़्यादा productive होते हैं, because then you don't have to worry about the other aspects of the life, right? कि जैसे अभी अगर मैं हूँ, अगर मेरे कोई ऑफिस की कोई मीटिंग है या कुछ ऐसी चीज मैंने जो करनी है जिसको मुझे 3-4 घंटे लगेंगे, तो मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं होती सोचने की कि डिनर में क्या बनेगा या बच्चों को कौन लुक आफ्टर कर रहा है। राइट, सो आई कैन स्पेंड मच टाइम ऑन माय वर्क इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ ये नहीं है कि बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा या बच्चों का होमवर्क रहता है उनको कौन देखेगा, सो ऐसा कुछ भी थॉट्स नहीं आते हैं।
1: इंटरेस्टिंग, दैट्स रियली गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच अपनी राय शेयर करने के लिए। गुड मॉर्निंग एफआरएस, हेलो
2: हेलो,
1: हाँ गुड मॉर्निंग एफआरएस, हाँ हम ठीक हैं, आप कैसे हो?
2: मैं भी ठीक हूँ। टॉपिक तो काफी अच्छा है। वैसे लास्ट कॉलर से मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ आई मीन जब जॉइन, जैसे बैक टू इंडिया व्हेन आई वाज इन जॉइन फैमिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर समवन ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू आउट इफ यू स्टक समवेयर। बट उसने जो स्टेटमेंट दिया है फ्रॉम हाउ, मैं उससे भी अग्री करता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर ऐसी हालत हो जाती है जहाँ पे लोग खुल के नहीं रह पाते। तो उसमें फिर यानी जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हुए हैं लाइफ में, तो उसमें ऐसा दिखता है जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना, वो काइंड ऑफ जैसे जबरदस्ती रह रहे हो और फिर अब खुश नहीं रहते, या कोई जगह पे ऐसे ज्यादा डोमिनेटिंग लोग हो जाते हैं, फिर उसके वजह से दूसरा बंदा अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जीत पाता, तो ऐसे भी एक्सपीरियंस है। तो आई वुड से 50-50 वो सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है।
1: ओके, थैंक यू एफआरएस आपके भी कॉल के लिए एंड टाइम के लिए। और 800-00 हम अलग अलग राय जो है, प्रियांश अग्रवाल जो है इन के पोस्ट पर आया है, किसी ने जाकर उनके पोस्ट पर कमेंट किया कि लिविंग अलोन, इनका जो पोस्ट या रिस्पॉन्स है वो देखेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आपको।
3: नमस्ते सर।
1: नमस्ते
3: मैडम, की आवाज नहीं आ रही है?
1: है मैडम जी, बैकेंड में ऑफिस में लगी हुई हैं।
3: अच्छा, उनको भी नमस्ते
1: जी।
3: सर पता नहीं आपकी बात का जवाब तो कोई सही या गलत हो नहीं सकता।
1: हाँ बिल्कुल,
3: लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस है अपनी लाइफ में,
1: क्या?
3: वो ये है कि हम, मैं जॉइंट फैमिली में रह नहीं पाया। मेरी नौकरी, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब मुझे इंडिया में जहाँ कहीं ले गई, उसके बाद तो इंडिया से बाहर ही ले आई। तो फिर हम मतलब कभी भी जॉइंट फैमिली में रहने का मौका नहीं मिला। एंड आई मस्ट टेल यू, मैं आपको मतलब विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरे दिल में एक बहुत बड़ा रंज है कि मैं नहीं रह पाया। अगर मौका मिलता तो मैं कभी नहीं छोड़ता। अच्छा, आई हैव ट्राइड टू पे इट बैक इन द सेंस कि मैं साल में कम से कम एक या दो बार जो भी फैमिली बची है अब उनके पास जरूर जाता। लेकिन वो बात कभी नहीं हुई। I'll much prefer to stay in a joint family than a nuclear family.
1: Thank you sir, thank you so much आपके भी राय के लिए। देखिए ना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मन में ये एक इच्छा इनकी बाकी रह गई कि कभी joint family में रह नहीं पाए। तो जो जो टॉपिक रेज हुआ है यू नो, उसके बारे में कभी कभी ये भी एहसास होता है, जहाँ शायद इनको, प्रियांश को एहसास हुआ होगा क्योंकि इतने दिनों तक वो जॉइंट फैमिलीज में रहे और उसके बाद अभी एक ही साल लगभग उनको हुआ है और

0: कोई भी चीज़ हो, ये भी कहते हैं कि उसका हनीमून पीरियड होता है, एंड व्हेन इट ऑल सेटल्स, व्हेन द डस्ट सेटल्स, तब शायद इनको एहसास हो कि मे बी इट इतना भी आसान नहीं है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब इनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनीथिंग दैट ही डज और थिंक्स, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी जो है ये खुद ले रहे हैं. किसी ने मैसेज किया है, लिविंग अलोन नॉट ओनली मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव बट ऑल्सो हेल्प्स यू ग्रो एज अ पर्सन, बट अ स्लाइट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट आई'ड लाइक टू ऐड इज अ ग्रेट कंपनी अराउंड यू ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे एंड हेल्प्स यू व्हेन यू आर at your lowest and questioning life. ये किसी ने मैसेज किया है. सो थैंक यू सो मच. आप भी अगर कोई राय रखते हैं प्रियांश अग्रवाल के इस पोस्ट से रिलेटेड, तो 5599 पर उसे हमें जरूर भेज सकते हैं.
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बड़ी देर से शायद आप इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या है, अभी तक कोडवर्ड जो है ये रिवील नहीं हुआ है हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए, जिसके तहत रिटेन एयर टिकट टू फिजी जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं ओनली ऑन हम। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, जस्ट कीप लिस्निंग। जैसे ही कोडवर्ड आपको बताया जाए, एक घंटे के अंदर आपको जाकर रो पर इसे एंटर कर देना है।
1: It's that simple. So, बस आपको कोड वोट सुनना है और फिर गिवन टाइम के अंदर अंदर इसे रोवर पर जाकर या फिर hum.rover.nz पर जाकर एंटर करें। पर सबसे जरूरी बात यह है कि कोड वर्ड एंटर करना, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। रोवर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज रोवर ऐप इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऐप जिसके जरिए आप हमारे साथ बने भी रह सकते हैं और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर इनाम भी जीत सकते हैं। तो चलिए अब रिवील करते हैं ना आज का कोड वर्ड।
0: बिल्कुल, आज का कोड वर्ड है न्यू।
1: न्यू मतलब,
0: न्यू का मतलब होता है कोकोनट।
1: कोकोनट नारियल,
0: हाँ। न्यू स्पेल्ड NIU।
1: ध्यान से सुन लो, गलत स्पेलिंग अगर आप एंटर करोगे तो भी आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी, इसीलिए पे अटेंशन टू द स्पेलिंग एज वेल।
0: इट्स जस्ट NIU। तो अब एक घंटे का वक्त है आपके पास, गो विजिट रोवर और जल्द से जल्द अपना जो कोड वर्ड है ये एंटर करें, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao papi ho, chup ho jao.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: KitchenMania.co.nz.
3: Mostly cloudy, some fine spells, 21 hour high today. Motorways slowly easing. The southern still quite heavy though, 54 minutes Manukau to the city. We're slow from Papakura, heavy patches most of the way from Otahu. Southwestern, a little slow northbound through Whitty, southbound at Mount Roskill. Northwestern, 42 Massey to the city, heavy patches from Up Harbour to town. Northern, 35 from Constellation, heavy gravel to the bridge.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
7: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with our new winter workwear range. From trusted trade brands like Hard Yakka and Sitco, you'll find a range of jackets, hoodies and more, so you can keep warm on and off the site. Get set for winter with Bunnings Trade.
8: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
9: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
10: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein, jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath. Do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka. Tickets sirf $20 hain. Taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein.
11: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoi and Hamilton.
13: The Rush Hour on the Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और हम playing Bollywood's biggest hits पर आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM पर या Rova app के जरिए. So thank you so much आप सभी के साथ के लिए. आज वैसे आपने सुना जो गाना हम आपके लिए लेकर आए थे in our back your backyard beats. हमारा जो New Zealand Music Month हम celebrate कर रहे हैं और न्यूजीलैंड में मई महीना जो पूरा होता है ये लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करने का, उनको सेलिब्रेट करने का टाइम होता है. एंड दैट्स व्हाट वी डू एवरी ईयर एज वेल. एंड दिस टाइम सिंस मई इज हियर, न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ इज हियर, एंड वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि आप भी बैक योर बैकयार्ड बीट्स कर सके, एज इन अपने लोकल टैलेंट को सपोर्ट कर सके. नाउ आज के जो आर्टिस्ट है उनका गाना आपने सुना, एफाज लालवानी. और एफाज के बारे में हमने आपको बताया भी है कि ये कई सालों से गाते आ रहे हैं. इनफैक्ट फॉर द पास्ट 3 years ही हैज़ बीन सिंगिंग एंड ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन स्टेज एज वेल अ फ्यू टाइम्स. ये इनका पहला कंप्लीट कवर है एंड ही हैज़ रिकॉर्डेड इट हिमसेल्फ एट होम, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, किसी भी बिना किसी प्रोफेशनल स्टूडियो के. एंड इट्स अ स्पेशल माइलस्टोन फॉर हिम, सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट विद हिम. एंड अगर आपको इनका ये गाना पसंद आया तो डेफिनेटली इसके लिए आप वोट भी कर सकते हैं. दैट्स वॉट यू गॉट टू डू. आप अपना जब भी कोई गाना सुनते हैं हमारे बैक योर बैकयार्ड बीट्स के लिए न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के तहत, तो जो भी आपको सबसे अच्छा लगा, जो गाना आपको बहुत पसंद आया, बस उस गाने के लिए आपको वोटिंग करनी है. एंड आपका वोट डिसाइड करेगा कि क्या वो आर्टिस्ट और वो गाना टॉप 3 में जाता है या नहीं. वोट करने के लिए आपको बस गाने का टाइटल और फिर MM गाने का टाइटल और अपना नाम लिखकर भेजना होगा 5599 पर। और उसके अलावा अगर आप हमारा सोशल मीडिया विजिट करते हैं इंस्टाग्राम, तो वहां पर भी आप वोट कर सकते हैं। वंस यू डू दैट, तो जो टॉप 3 आर्टिस्ट होंगे इनके गाने को हम रोवा पर अपलोड करेंगे और उनको कुछ प्राइजेस जीतने का मौका जो है ये भी मिलेगा।
5: तो बैक योर बैकयार्ड बीट्स हम पर आपके लिए हर दिन महीने भर हम अपने यहाँ लोकल कलाकारों को उनके टैलेंट को आपके सामने लाने की कोशिश जो है ये करते रहेंगे।

0: Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
1: Final weeks to sea sharks.
2: A lot of cloud, a bit of sunshine, a high of 21 today. Coming in on the Northern Motorway now, 32 minutes in from Constellation Drive. Little heavy at Silverdale and heavy most of the way in from Greville. Northwestern, it's eased up, 36 minutes in from Massey. Slow from Massey, heavy Te Aratu south to Point Chev. Southern 47 from Monaco, slow patches, heavy a lot of the way from Otahuhu. Southwestern, heavy northbound at Whitty.
1: Don't miss the popular sharks exhibition, closes June 1st. Book now at AucklandMuseum.com.
3: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
4: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
5: With a Gem Personal Loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes, with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
6: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the stepmums and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.
7: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Moto C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. सिर्फ 44,990 plus on-road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Moto Green Lane or Botany. T's and C's apply.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: बस थोड़ी देर बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये मैं पढ़ रहा था और रिसर्चर्स ने इसके बारे में कहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ लुवन जो बेल्जियम में है, उन्होंने एक रिसर्च किया वहाँ के स्टूडेंट्स ने, जिसके बाद ये पाया गया कि सैडनेस इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इमोशन.
11: अच्छा.
10: हाँ,
11: दुखी रहना.
10: यस, टिपिकली लगभग 120 आवर्स लगते हैं टू स्टॉप फीलिंग सैड, बट जस्ट 30 मिनट्स टू गेट ओवर द फीलिंग ऑफ डिसगस्ट एंड शेम. हेट्रेड लास्टेड फॉर 60 आवर्स फॉलोड बाय जॉय फॉर 35 आवर्स. कैन यू इमेजिन दैट? सैडनेस जो है ये सबसे देर में खत्म होने वाला इमोशन बताया गया है.
11: 120 hours equates to 5 days basically. आपको पता है?
10: हाँ.
11: 5 दिन लगते हैं इससे उभरने में.
10: Yeah, I mean obviously ये एक क्या बोलते हैं उसको, वर्कआउट किया गया है किसी एक पैमाने में. लेकिन obviously अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टाइम फ्रेम जो है ये होता है, अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है. कुछ लोग तो जिंदगी भर किसी एक इमोशन के साथ रहते हैं.
11: डिफरेंट लोगों के लिए भी डिफरेंट होता है ना ये.
10: या तो ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं जो हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आते रहेंगे.

0: computer traffic.
1: Moody's giving you a Range Rover.
2: Supposed to be mostly cloudy, but a lovely start, a high of 21 today. And on the Northern Motorway, under half an hour from Constellation now. Not bad at Silverdale, heavy patches, Greville to the bridge. Northwestern, just over half an hour from Massey. We're slow in patches from there, a bit heavy around at Point Chef. Southern, 42 in from Manukau. Fine most of the way to Otahu, but then quite heavy there to Remuera.
1: Shop Moody Plant Protein Balls in supermarkets for your shot at 5K and a Range Rover. T's and C's apply.
3: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
4: Kyun? Kya hua?
3: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
5: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
6: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails, sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
7: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
12: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. An investigation has been launched after two people were knocked off their dirt bikes in Northland, including one fatally. Their body was found on Ngāpi Petal Road in Kaikohe late last night. A second person was seriously injured on Tana Road in Moriwa. Ambulance staff are sounding the alarm as Hātohone St John looks to cut down on cleaning costs. Employees claim the organisation wants to reduce its commercial cleaning contracts from July. The Ambulance Association's Mark Quinn says it falls on frontline staff.
15: These are health professionals and their time is better used trying to respond to emergencies and care for their patients.
14: Rover News has approached St John for comment. The Pharmaceutical Society is excited for the chance to expand services. ACT has proposed allowing pharmacists to assess skin lesions and order blood tests. Society President Michael Hammond says it will need sustained investment though.
16: We could do with more pharmacists and more pharmacy technicians and more adoption of things like pharmacy robotics. There are certainly ways of freeing up more pharmacist time.
14: The reported use of kamikaze dolphins by Iran has been raised at a US briefing on the Middle East conflict this morning. It prompted this reply from Defence Secretary Pete Hegseth.
17: And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't.
14: To Rugby League with Machinery House, the Warriors are unsure how long they'll be without Roger Tuivasa-Sheck. The centre suffered a shoulder injury in last weekend's NRL win over the Eels and is without a time frame to return. The All Whites have announced a second FIFA World Cup warm-up match. They'll face world number 83 ranked Haiti on June 3rd in Florida.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: Close to 18 degrees temperature ho chuka hai aaj ka high 21, overnight kam se kam 15 degrees aaj rahega. Din bhar badal chhaye rahenge, kuch barish bhi ho sakti hai khas taur par sham ke samay, aur aaj ka sunset 5:32 pm par hone ko hai.
13: Breakfast Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
13: What's going on? Kya bakte ho?
0: Are kehna kya chahte ho?
4: तो आज आपके लिए जो स्टोरी हम लेकर आए हैं, व्हेन आई रेड दिस आई लिटरली सेड इट कि क्या बक रहे हो यार, ऐसा भी होता है क्या? अपेरेंटली गुजरात की एक कहानी है और गुजरात में कहा गया है कि एक फैमिली है जिनकी 16 साल की बेटी है हु इज एडिक्टेड टू हर मोबाइल फोन. वो मोबाइल फोन इतना यूज करती है, इतना यूज करती है कि जब भी उन्हें रोका जाता है शी टर्न्स वायलेंट कि उनको मोबाइल फोन छोड़ना ही नहीं है अपना. तो उनके फैमिली वालों ने उनको डॉक्टर को दिखाया एंड डॉक्टर के एडवाइस पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन जो है इन पर करने के लिए कहा गया. एंड वेन एवर शी बिकम्स अग्रेसिव तो फैमिली के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनको मैनेज करना. नाउ इनकी फैमिली ने क्या किया, अपनी बेटी का स्क्रीन एडिक्शन कंट्रोल करने के लिए और ये जब जब अग्रेसिव होती है इसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बाउंसर्स हायर किए हैं. बाउंसर्स हायर किए हैं जो मॉनिटर करते हैं कि इनकी बेटी जो है कितना स्क्रीन टाइम जो है ये यूज करती है अपना जो मोबाइल फोन. और जब उनको मना किया जाता है एंड शी बिकम्स अग्रेसिव तो दीज फोर बाउंसर्स इनफेक्ट हायर किए गए हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं फिजिकली, ये किसी को चोट ना पहुंचाए, अपने आप को चोट ना पहुंचाए इसलिए. और इनकी फैमिली जो है करीबन 65,000 इंडियन रुपीज मंथली स्पेंड करते हैं इन चार बाउंसर्स के पैसे के लिए, इनको हायर करने के लिए. एंड कमाल की बात ये है कि 65,000 इंडियन रुपीज टू न्यूजीलैंड डॉलर्स इक्वेट्स टू 1,160 और 1,200 तक पर मंथ.
12: या दैट्स आई मीन पैसों की तो बात छोड़ दो
4: बट द सिचुएशन ना
12: इटसेल्फ इज
4: I know.
12: Yeah. और भी कई चीजें हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. थोड़ी देर बाद कम्युनिटी की खबरें आपकी खातिर होंगी.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: 13 मिनट हुए हैं 9:00 याद रखें, इसी शुक्रवार को मैनिकाओ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज आपके लिए लेकर आ रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और ऑकलैंड के दवेन नाथ। वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोयोटोय में ये प्रोग्राम होगा रात 7 बजे से। टिकट सिर्फ $20 हैं।
4: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि एक और एक बहुत ही खास इवेंट जो है ये होने जा रहा है और इसका हिस्सा आप ज़रूर बन सकते हैं, जो कि है भोजन मेला यानी कि फूड कार्निवल नेक्स्ट वीक संडे 17 मई को दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 378 आरआरिमू रोड रामारामा यहाँ पर ये रहेगा। और ये खास रूप से हो रहा है लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो टेम्पल प्रोजेक्ट है इसके लिए। एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स और खाना वगैरह भी आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ रिटेल स्टोर्स रहेंगे जहाँ पर आप जाकर ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं और जितने भी पैसे उससे इकट्ठा किए जाएंगे उस जरिए आप अपना जो योगदान है इसके ज़रिए दे सकते हैं फॉर दिस टेम्पल प्रोजेक्ट। हिना आर्टिस्ट्स यहाँ पर रहेंगे, अगर आपको मेहंदी लगाने का बहुत शौक है या फिर फेस पेंटिंग, बच्चों के लिए बाउंसी कासल, ये सब कुछ आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं।
3: फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड आपके लिए 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे लेकर आ रहे हैं। शनिवार 16 तारीख मई को यानी 16 मई को मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाइकाउरी प्लेस मैंगरी में ये रहेगा। शाम 4 बजे से दरवाजे खोल जाएंगे, 4:30 बजे से नेटवर्किंग और 5 बजे से औपचारिक प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें कैंडल कमेमोरेशन, आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और भी तमाम चीज़ें होंगी। स्पॉट प्राइजेस वगैरह भी रहेंगे आपके लिए। एंट्री यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, तो आप जाकर ज़रूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
4: और इसके अलावा याद दिला दे आपको कि इसी फ्राइडे को यानी कि ऑन द 8th मई आ रहे हैं जावेद अली सुपर सिटी ऑकलैंड अपना बहुत ही शानदार रफ़ी और मैं टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी ये बहुत ही खूबसूरत शो लेकर प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड ब्रॉट टू यू बाय स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट। तो याद रहे ये इसी फ्राइडे को होने वाला है, आज वेंसडे है, कल थर्सडे एंड देन फ्राइडे, बस आज का दिन अगर निकाल दे तो एक दिन बाद, और अगर आज का दिन काउंट करना है तो 2 दिनों बाद आपके लिए रहेगा। सो दिस इज योर फाइनल रिमाइंडर टू ग्रैब योर टिकट्स जितना जल्दी हो सके, एंड द टिकट्स जो है ये आप स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट .com विजिट करते हुए जरूर ले सकते हैं। दे आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम $59 जो आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर रहेगा। जावेद अली इतने खूबसूरत गायक हैं, ये इतने कमाल के सिंगर है ये, इनकी खुद की आवाज़ और इनके खुद के गाने तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अपने आवाज़ और अंदाज में जब ये मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाएंगे तो माहौल ही कुछ और होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर रफ़ी साहब के दीवाने आपके घर में है, प्रोबेबली योर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर अगर आपको ये एक शिकायत थी कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स मेंट स्पेशली फॉर फैमिलीज लाइक दिस। सो आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, एक और आप जावेद अली को इन्जॉय कर सकते हैं, उनके गाने इन्जॉय कर सकते हैं, दूसरी ओर उनके द्वारा गाए हुए रफ़ी साहब के गाने आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इन्जॉय कर सकते हैं, एंड एक स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल नाइट जो है इसका मजा उठा सकते हैं।
3: और साथ ही में आपके पास कम्युनिटी की कोई खबर है जो और लोगों तक आपको पहुंचानी है, buzz@hamfm.com buzz@hummfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें जरूर भेज सकते हैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो आ गए।
6: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी? टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा। प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
0: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM। हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड। यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ, विन अ ट्रिप टू फिजी, ओनली ऑन हम ऑन रोवा। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
6: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: There's the mum who raised you, the grandma who spoiled you, and the auntie who knows all your secrets. Buying gifts for all of them? Stressful. Buying a Prezi card? Easy. The Mother's Day gift that always lands. Shop prezicard.co.nz.
7: In this final hour, when lives hang in the balance, will you answer NZ Blood's call?
8: I do biscuits.
7: Of course.
9: Join forces and save lives. Plasma donations help create up to 11 life-saving products. NZBlood.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी तो 21 मिनट हुए हैं 9 बजकर इन केस यू मिस्ड आउट यूएफए चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था आर्सेनल और उसके साथ एथलेटिको मैड्रिड के बीच ये जबरदस्त मैच पूरा हो चुका है एंड आर्सेनल की जीत रिटेन लीग में 1-0 से हुई है यानी ऑन एग्रीगेट आर्सेनल हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग 2-1 से इनकी जीत ऑन एग्रीगेट हो चुकी है और अब दूसरा सेमीफाइनल जो है ये कल खेला जाएगा
3: तो आपके लिए डिटेल्स हम जरूर लेकर आते रहेंगे इसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है बट डोंट फॉरगेट देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग एंड अनदर अपॉर्चुनिटी आपके पास है टू बी अ विनर विद अस क्योंकि मुनावर फारूकी ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड एंड दैट टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको पता है अभी हाल ही में इनके घर एक नन्ना मेहमान आया है ही इज वेलकम्ड अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल
2: ओके
3: तो ये एक और ये सेलिब्रेशन अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ सुपर सिटी ऑकलैंड में होगा इंडिया के बहुत ही जाने माने एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमेडियंस हैं ये फिलहाल के लिए जिनको आप विटनेस कर सकते हैं इनका अनफिल्टर्ड रॉ रियल अंदाज इनके कॉमेडी शो धंधों में जो ब्रूस मेसन सेंटर में रहेगा ऑन द 23rd of May मतलब बहुत दिन नहीं बाकी है कुछ ही दिन बाकी हैं टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम इसे इवेलुएट करें तो इट्स गोना हैपन आफ्टर नेक्स्ट वीक सैटरडे
2: सो दैट्स लाइक सॉलिड
3: 13 days, yeah. So that's like not far away. And इसी वजह से we are trying to let you know कि अगर आपने tickets नहीं लिए हैं ticketmaster.co.nz आप विजिट कीजिए और टिकट जरूर ग्रैब कीजिए और अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं एट ब्रूस मेसन सेंटर ऑन द 23rd of May फॉर द लाइव शो धंधो जो आपके लिए मुनावर फारूकी लेकर आ रहे हैं सो ticketmaster.co.nz याद रहे ये आपको विजिट करना है टिकट्स के लिए एंड अगर आपको पासिस जीतने हैं तो एक सिंपल सी चीज आपको बताते हैं हम फटाफट फेसबुक पर जाए विजिट करें हम 104.2 FM और वहां पर आपको फीचर्ड फोल्डर में सबसे पहला पोस्ट दिखेगा विन अ डबल पास फॉर द मुनावर फारूकी शो आप उस पोस्ट पर क्लिक करें इट्स अ रील बेसिकली आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है उस रील को देखने के बाद वो जो पहले शख्स आपके दिमाग में आते हैं या फिर आपके जो फ्रेंड लिस्ट में आपका कोई भी एक ऐसा फ्रेंड उस रील को देखने के बाद आपके दिमाग में ये आते ये शख्स आते आपके ख्याल में तो बस उनको आप टैग कर दीजिए इट्स दैट सिंपल आप वंस अपने किसी एक फ्रेंड को टैग कर देते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर तो आप इस ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे एंड आप में से वो कोई एक शख्स होगा जिनको मिलेगा मौका टू विन अ डबल पास टू द लाइव शो धंधो जो मुनावर फारूकी आपके लिए लेकर आने वाले हैं
2: 23rd of May को ये होने जा रहा है पूजा है साथ में फाज है मोनिशा चेट्टी है नीतिका कुमार हैं और मुनेश हैं हिना है आप सभी ने जाकर अपने अपने यू नो जो फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स जिनको आप टैग करना चाहते हैं आपने टैग किया है थैंक यू सो मच आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है ऐसी चीज़ों के लिए आप नो ये ना सोचे कि बाद में कर लेंगे क्योंकि कभी कभार हम भूल जाते हैं इट स्लिप्स आवर माइंड एंड वी

0: कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज बिफोर क्या है इसके पीछे कहानी, कुछ बातें थोड़ी देर बाद हम करेंगे।
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: बॉम्बे रॉकर्स को आप सुन रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और अरोबा पर। 27 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में। नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट जो है इसमें इमरान खान नजर आने वाले हैं।
1: अच्छा,
0: I can't remember last इमरान खान की कौन सी फिल्म मैंने देखी थी।
1: हैप्पी पटेल में आई थिंक इन्होंने एक छोटा सा कुछ एक सीन किया था ना।
0: I can't remember। लेकिन अब ये फिल्म जो है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। दानिश असलम इस को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टीम ने फिर डिसाइड किया, प्लान किया 4-day एक्सटेंडेड स्केड्यूल का। इमरान खान और साथ में भूमि पेडनेकर इस फिल्म में काम कर रही हैं। गुरफतेह पीरजादा, इनका नाम भी आया है इस फिल्म के साथ कि ये भी होंगे इस प्रोजेक्ट में और इस नए एक्सटेंडेड स्केड्यूल शूट में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। एंड वंस दैट दैट इज डन देन द मूवी विल रिटर्न टू द एडिटिंग टेबल वंस अगेन। और नेटफ्लिक्स जो अधूरे हम अधूरे तुम जो हैं ने अधिकारियों ने या जो बॉसेस हैं उन्होंने ये फिल्म देखी और सजेस्ट किया कि इस फिल्म के नैरेटिव को थोड़ा और सुधारा जाए। और इमरान और दानिश दोनों ओपन थे टू द फीडबैक एंड दे प्लान्ड अ शॉर्ट स्केड्यूल फॉर द न्यू मटेरियल।
1: ओके, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। और अभी आई थिंक इमरान खान जबकि वापसी कर ही रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से उन्होंने शुरुआत की, अब इज कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर गेम, बिग गेम। तो आई एम 100% श्योर कि उनके अभी भी बहुत सारे फैंस हैं जो उनको देखना पसंद करेंगे।
0: और आपकी पसंद की भी एक और बात हम आपको बता दें कि अभी 6th of May आ चुका है, बहुत जल्द चैटल का खेल जो है रोवा पर ये भी खत्म होने को है। तो
1: अब coming to an end very soon.
0: Very soon, अगर अभी तक आपने नहीं खेला है, यू गॉट टू प्ले चैटल ऑन रोवा, क्योंकि ऐसे खेल में हर दिन $100 कैश आप जीत सकते हैं।
1: बिल्कुल, $100 ईच डे जीतने का मौका है, विच मींस अराउंड $7,000 टोटल जो है ये, जबकि गिव अवे किया जा रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस गेम टिल द एंड डे तक, टोटल जो है इतना रहेगा। सो आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, बस रोवा ऐप पर जाना है और जो विन वाला टैब है उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन जो है ये दिख जाएंगे ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन दैट यू कैन टेक पार्ट एंड यू नो विन समथिंग। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो विजिट hum.rova.nz। अगर आपके पास ऐप नहीं है, डाउनलोड कीजिए, बट द अदर वे इज hum.rova.nz पर जाए। अगेन विन वाले टैब पर आप जाओगे तो वहां पर आपको प्ले चर्डल एंड न्यूजीलैंड मीनेस्ट न्यू वर्ड गेम ये बताया जाता है, इसका बेसिकली टैग है ये, एंड यू प्ले दैट। वहां पर आपको हर रोज के लिए एक कीवी फ्रेज या फिर एक कीवी जो सेइंग है, स्लैंग है, ये वहां पर लिखा जाएगा। एंड ऑल यू नीड टू डू इज क्रैक इट। बेसिकली आपको गेस करना होगा कि वो क्या है, कौन सा वर्ड है, क्या मतलब है उसका। एंड इफ यू डू दैट विदाउट टेकिंग एनी हिंट्स या फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, देन ऑफ कोर्स आप एक ड्रो में जाते हैं जहां पर आपके पास मौका है टू विन $100 ईच डे या फिर टोटल में से जो $7,000 है उसमें से अपना शेयर जीतने का मौका है आपके पास।
0: और अगर आपने नहीं खेला, आपके पास रोवा का ऐप नहीं है, तो ROVA ये लिखकर आप 5599 पर हमारे पास भेजे, लिंक आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगा और बड़ी आसानी से रोवा ऐप जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं।
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Beta, mera phone kidhar hai?
5: Abhi bataya to slide chappal confirm hai.
6: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? फ्रॉम ब्रोकन फ्लावर वाजेस टू लौकी की सब्जी एक्सपेरिमेंट्स, गेस कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे क्वर्की सिनेरियोस ऑन एयर और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। गेस एंड एंटर द लकी ड्रॉ टू विन बिग कैश प्राइजेस। तो तैयार हो जाइए फॉर द अल्टीमेट गेम शो मम्स मूड स्विंग्स ऑन हम, ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, PFSL, अम्मा'स फूड and Malabar Gold and Diamonds.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: For the mum, stepmum, grandma or auntie who says, don't get me anything, then totally expect something, give a Prezi card. Use it anywhere Visa's accepted and add it to Apple Pay or Google Pay. Easy win. PreziCard.co.nz.
10: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein
3: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
5: What's going on?
6: 20 मिनट रह गए हैं फिलहाल अभी 10 बजने में सलेश अपहट से आपने जानना चाहे किस किस टाइम पर जो Back Your Backyard Beats के गाने आप सुन सकते हैं weekdays 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM और रात 10 बजे के बाद दूसरा गाना जो है ये Backyard Beats का होता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो फिलहाल कल रात साउथ ऑकलैंड के एक सबेब में एक एक्सप्लोजन जो है ये सुनने को मिला जिसके बाद नेबरहुड के लोग जो हैं इनमें काफ़ी अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने अब कन्फर्म किया है कि उन्हें कल रात 8:30 के वक्त सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट मिली थी इन पापाकुरा और वहाँ पर एक लाउड बैंग जो है ये भी सुना गया था और इंक्वायरीज करते हुए पुलिस पहुँचे एक घर पर ऑन एनक्रॉफ्ट स्ट्रीट जहाँ उन्हें एक ऑपरेशनल क्लैन लैब जो है ये मिला है एंड इस मामले के संबंध में 42 इयर्स के एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है एंड आज उन्हें पापाकुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश भी किया जाएगा
7: ओके तो विल डेफिनेटली गेट अपडेट्स इन रिगार्ड्स विद दिस एज वेल और दूसरी ओर साउथ आइलैंड के लिए बताया जा रहा है हैवी रेन वार्निंग्स जो है ये इशू किए गए हैं वेट वेदर आज के लिए शुरू हो जाएगा और ऐसे में मोस्टली क्लाउडी एंड आइसोलेटेड डेज जो है ये बताया जा रहा है अहेड आज के दिन के लिए फॉर नॉर्थ आइलैंड बेसिकली ऑकलैंड के लिए कहा गया है कि पार्टली क्लाउडी रहेगा फ्यू शावर्स मेनली नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड के लिए जो बताया गया है तो इट्स नॉट एज बैड एज इट वॉज सेड कि रहेगा आज बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी
6: आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है किस या क्या मई के आपको पता है
7: पता नहीं नो आइडिया नया इतना पता है
6: यू जस्ट ड्राइव
7: आई जस्ट ड्राइव दैट्स व्हाट मैटर्स सी मेरा फोन मेरे लिए मेरा फोन का मॉडल क्या है वो भी मुझे नहीं पता आई लिटरली हैव टू गो ऑन माय फोन इन्फो एंड देन फाइंड आउट क्योंकि मेरे को मतलब इसी बात से कि उससे कॉल आ रहा है मैसेजेस जा रहे एंड आई कैन सिट एंड वॉच व्हाटएवर आई वांट दैट्स इट दैट्स व्हाट मैटर्स Okay. गाड़ी मेरी अच्छी है अच्छी खासी चल रही है फ्यूल है उसमें एंड आई एम एंजॉयिंग माय राइड व्हाइल ड्राइविंग दैट्स इट मुझे नहीं पता कितना साल पुराना है
6: 2023
7: अच्छा ओ अच्छा
6: इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन 2023
7: ओ वाओ आई डिडंट नो दैट
6: माइन वाज 2013
7: वेरी गुड
6: The interesting thing is न्यूजीलैंड में लाइट पैसेंजर व्हीकल फ्लीट ऑन एवरेज 15 ईयर्स पुराने होते हैं
7: ओ अच्छा
6: 15 इयर्स पुराने
7: उससे ज्यादा पुराने होते हैं पर शायद कम होते हैं
6: हाँ ऑन एवरेज 15 इयर्स ओल्ड 2014 में एवरेज जो था वाज अराउंड 14.3 इयर्स
7: ओके
6: ऑस्ट्रेलिया में इट्स अराउंड 11.6 इयर्स एंड यूके में जो लाइट पैसेंजर व्हीकल फ्लीट ऑन एवरेज अंडर 10 इयर्स पुराने होते हैं नई नई गाड़ियां चलती हैं यूके में तो और न्यूजीलैंड में अब 14 इयर्स से बढ़कर ऑलमोस्ट 15 इयर्स एक साल और हो चुका है लंबे समय तक गाड़ी रखते हैं देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस कहते हैं कि एक तो इकोनॉमी जो है उतनी अच्छी नहीं है शायद लोग व्हीकल्स चेंज नहीं कर रहे हैं दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी का माइलेज गाड़ियाँ कम चलती होंगी जिसकी वजह से लंबे समय तक गाड़ी जो है ये लोग अपने पास रखते हैं तो ये खबर जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा चलो आज हम सभी से पता करते हैं आपकी गाड़ी अगर आपको पता है कितनी पुरानी है किस ईयर में अगर आपको पता है व्हिच ईयर वाज योर व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन और अगर कार है या ट्रक है वो भी बता दे तो अच्छा होगा. लेट्स सी सबसे पुरानी अभी
7: हमारे लिसनर्स के बीच में किसके पास है?
6: हाँ, सबसे पुरानी और सबसे नई.
7: Right.
6: और हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे बीच में ऑन एवरेज जो है ये क्या आता है. यूज्ड जो इम्पोर्टेड कार्स हैं वो भी अब आउट पुराने हो रहे हैं एंड अप टू एन एवरेज ऑफ 9.8 इयर्स. पहले अराउंड 8 इयर्स ये होते थे. मोटरसाइकल्स आर द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ व्हीकल इन द फ्लीट. एवरेज एज जो है एवरेज होता है 22 इयर्स ओल्ड.
7: राइट.
6: मोटरसाइकल्स का ऑन एवरेज 22 साल पुराने मोटरसाइकल्स ऑन एवरेज लोग रखते हैं अपने पास इन न्यूजीलैंड. सो अभी आप हमें टेक्स्ट करके बताएं आपका व्हीकल जो है ये
7: कितना पुराना है.
6: हाँ, कितना पुराना,
7: किस साल में ये बना था, बेसिकली मैन्युफैक्चर हुआ था.
6: या और किसी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग टू यू बोथ. ओल्ड इज
7: गोल्ड.
6: ये क्या समझ में तो नहीं आया लेकिन
7: किसके बारे में बोल रहे हैं आप? गाड़ी के बारे में, खाने के बारे में, गाने के बारे में, इंसान के बारे में? बनो ना.
6: या तो आप 5599 पर अब हमें टेक्स्ट करें और बताएं कि आपका व्हीकल किस ईयर का मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है. लेट्स सी द ओल्डेस्ट वन एंड
7: द न्यूएस्ट वन.
6: हाँ, कौन कौन
7: तो
6: सी
7: अभी है? के हिसाब से हमने जबकि शुरुआत की है आपका 2013 है, मेरा 2023 है.
6: यू हैव द न्यूएस्ट वन.
7: या सो लेट्स सी इफ एनीवन कैन बीट आवर रिकॉर्ड. लेट्स सी हाउ इट गोज.

0: Shafqat Tamannat Ali ko aap sun rahe the on hum playing Bollywood's biggest hits the breakfast show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai aur is program mein back your backyard beats ye bhi chal raha hai in dinon
1: हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं इनके गाने हम आपको सुनाएंगे और फिर आपका रोल ये है कि जो गाना आप सुनते हैं उसे सुनने के बाद आप वोट अपना जो ये कर सकते हैं कि आपके हिसाब से वो टॉप गाना कौन सा था एंड टॉप 3 सॉन्ग्स विद द मोस्ट वोट्स जो होंगे ये जाएंगे हमारे रोवर ऐप पर और उनको इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा और आज के आर्टिस्ट जिनका गाना हमने आपको सुनाया था आफ्टर 8 AM एफाज लालवानी जिनके बारे में हमने आपको बताया भी है बहुत आर्डेंट लिसनर भी है ये हमारे इनसे भी फिलहाल बातें करने की कोशिश की जा रही है लेट्स सी इफ वी कैन गेट हिम ऑन द लाइंस सो आज इनकी जुबानी कुछ और जाने इनके गानों के बारे में
0: सो लेट्स सी होपफुली वी मैनेज टू गेट हिम ऑन और उनसे कुछ बातें हो जाए बैक योर बैकयार्ड बीट्स न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में जबकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग एफर्स
2: गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग
1: बढ़िया जी आप सुनाओ आप कैसे हो
2: मैं तो आपके राज में बहुत
1: क्या बात है आज वैसे आपके गाने के बारे में हम बातें कर रहे थे हमने आज इसे प्ले भी किया एंड वी वांटेड कि इसके बारे में आप थोड़ा कुछ अपनी मतलब अपनी ओर से बता दें बेसिकली हमने वो बातें तो बताई हैं जो आपने इस गाने के बारे में मेंशन किया है बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द सॉन्ग ये हवा जो आज हमने ऑन ब्रेकफास्ट शो प्ले किया
2: ये जो सॉन्ग है ये 20s में काफी इंडी पॉप में बहुत फेमस सॉन्ग था और ये तब से मुझे बहुत पसंद था तो मैंने इस सॉन्ग को इसीलिए चूज किया और मुझे पता है कि ज्यादातर शायद मे भी लोगों को इस सॉन्ग के बारे में आइडिया नहीं है बट हाँ ओवरऑल अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो इसमें मेरी मॉम मेरी वाइफ और हम ऐसे तीनों का बहुत बड़ा साथ है कि आज मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी अलग स्टोरी है
0: तो वो स्टोरी तो हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे
2: जी तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि मेरी मॉम लेने सॉन्ग का उन्हें बहुत शौक था तो बचपन से मैं सॉन्ग तो सुनते ही जा रहा था घर में और जब रेसिडेंसी हो गई सब सेट हो गया लाइफ में तो मेरी वाइफ वाज सेइंग कि तू इतना चिल्ला चिल्ला कर गाने गाता है कार में तो व्हाई डोंट यू ट्राई समवेयर और उसके बाद में हम FM पे एक एड आती है कैरियोके कॉम्पिटिशन की
0: ओके
2: और उसमें मेरी वाइफ मुझे भेजती है कंपटीशन में और मैं बोलता हूँ कि यार मैंने तो आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया तो बस ऐसे गा रहा हूँ पार्सल सिंगर जैसे और मैं वहां जाता हूँ मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ और मैं परफॉर्म भी करता हूँ और समहाउ मैं उसमें सेकंड रनर अप भी हो जाता हूँ
0: अरे वाह
1: अच्छा,
2: उससे मुझे मोटिवेशन बढ़ जाती है जी उससे मेरी मोटिवेशन मुझे बहुत मिलती है और उसके बाद में फिर मैं दूसरे कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ हम FM में वो भी मुझे मेरी वाइफ ही बताती है कि फेसबुक पे ये आया हुआ है कि मोहम्मद फैज का कॉन्टेस्ट है और उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और उसमें मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ और मैं मोहम्मद फैज के साथ स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो बेसिकली मॉम मेरी वाइफ जो मुझे पुश कर रही थी और हम FM एक्चुअली में ये मेरी सारी जर्नी का क्रेडिट आप तीनों को ही जाता है
1: क्या बात है विल टेक द फुल क्रेडिट
2: यस ऑफ कोर्स आई मीन ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मे बी वो अपॉर्चुनिटी ना होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता और मुझे आज सिंगिंग स्टार्ट किए हुए हुआ ही काफी कम टाइम है और मैंने जैसे वो रिकॉर्डिंग भी जो की है वो एग्जैक्टली यानी सिर्फ यूट्यूब से देख करके कैसे होता है और बेसिक सॉफ्टवेयर और बेसिक चीजों को इस्तेमाल करके क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बचा है बट होपफुली आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं और भी आगे जाऊंगा और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करूंगा फ्यूचर
1: थैंक यू एफाज एंड दैट वाज रियली रियली वंडरफुल आपकी कहानी सुनकर समझ में आया कि पैशन है इसीलिए तो आप यू नो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इतनी सारी चीजें जो ये कर रहे हैं
2: पैशन भी जरूरी है और आप जैसे जो कॉन्टेस्ट रखते हो और जैसे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हो और जैसे आप इनकरेज करते हो दैट इज वंडरफुल आई मीन अगर शायद ये ना होता तो मे बी मैं यहाँ ना होता तो बेसिकली एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर
1: Thank you.
2: I really appreciate and thank you so much, Hum FM, for your support all the time. And it was fantastic journey. Yeah.
0: Thank you.
1: Wish you all the very best for your future.
0: तो आज एफाज से बात हुई ऐसे और भी अपने कलाकारों से हम बातें करते रहेंगे उनके गानों को भी आपको सुनाते रहेंगे
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ.

0: दो बातों में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले कौन सी बात आपको बताएं, तो चाहे ये चाहे वो बात तो वही है। कहते हैं कि सुकून चाहिए तो अपने से नीचे देखो,
1: अपने से नीचे देखो।
0: बहुत से लोग तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं।
1: अच्छा, ओके।
0: दूसरी बात, जिंदगी के मसले जिंदगी भर खत्म नहीं होते। कल कुछ और थे, आज कुछ और है।
1: और कल कुछ और होंगे।
0: कल कुछ और होंगे।
1: बिल्कुल। तो आपको बस यू नो स्ट्रॉन्ग रहना है, मतलब मेंटली फिजिकली, टू कीप फेसिंग देम, नेवर लूज होप। चलिए, इन बातों के साथ उम्मीद करते हैं आपका बाकी का दिन अच्छा गुजरे। हमारी रात की मुलाकात अब होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा, लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ music नहीं, ये है emotion, passion और थोड़ा सा desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, जहाँ हर गली, हर corner से निकलता है एक नया superstar. आज का local artist, कल का global sensation. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने backyard beats को दो full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz.
4: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited-time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world-famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
5: Love that chicken from Popeyes.
6: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
0: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A loud bang has led police to uncover a clan lab in South Auckland. It was heard in Papakura last night with an address of interest on Ancroft Street looked into. Officers found an operational drug lab and arrested a 42-year-old man who'll appear in court at some time today. Frontline ambulance staff are a bit worried about Hotohone St John's plans to cut down on its cleaning budget. Workers claim they were told the responsibility of cleaning vehicles will fall on them from July. The Ambulance Association's Mark Quinn says there was no consultation.
9: It just shows an organisation that's not supporting their staff, who are immensely under pressure, and that's well documented.
8: A trial here has found smartwatches can help predict potential asthma attacks early. University of Auckland's Amy Chan says they can help identify a user's digital fingerprint.
10: Unique to the individual in terms of the changes that we're seeing in their physiological parameters.
8: And overseas, the US has declared the aggressive phase of Operation Epic Fury in Iran is over. Secretary of State Marco Rubio says freeing up the Strait of Hormuz is now the priority.
11: We're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal.
8: In sport, to football first, and Premier League leaders Arsenal are into the Champions League final for the first time in 20 years. Bukayo Saka scoring and delighted to do so in the 1-0 second leg semi-final win over Atletico Madrid in London.
12: It's so beautiful, you'd love to see what it means to us, what it means to the fans. Yeah, we're all so happy.
8: Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup. And Spanish golf star Jon Rahm will be eligible for next year's Ryder Cup after striking a deal to continue playing on the DP World Tour.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: The highs of 21, overnight temperature of 15. Aaj ka forecast bataya ja raha hai, it's going to be a partly cloudy day. Kuch showers north ki taraf Harbour Bridge ki aur ho sakti hain. It feels like 20 degrees right now, 5:32 par sunset bataya gaya hai.
0: Non-stop Bollywood.
14: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
0: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Ladies and क्योंकि आ रही
0: My Time with Kashika.
13: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 10:03 हो चुके हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ. 12 तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है. मदर्स डे बिल्कुल इसी संडे के दिन है और मेरे पास अब 2 हैं जिनमें मैं आपकी एंट्री लूँगी, तो आई थॉट मैं मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और बस 2 के बाद मैं आपके साथ आपकी एंट्रीज लेना चाहूँगी ताकि आपके चांसेस और भी ब्राइट हो जाएं. चलो यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं, लेकिन एक खुशखबरी मुझे आपके साथ शेयर करनी है. रोवा ऐप के ज़रिए अगर आप हमें सुनते हैं तो बता देती हूँ, रोवा पे बहुत सारे म्यूज़िक स्टेशंस हैं, बहुत सारे. उनमें नंबर 1 म्यूज़िक स्टेशन है हमारा हम रिवाइंड, जिसमें बॉलीवुड के गोल्डन सॉन्ग्स जो 60s-70s के हैं आपको सुनने के लिए मिलते हैं. इसके बाद नंबर 2 पोजीशन पे रोवा पर आता है जूक बॉक्स, जहाँ 80s के बॉलीवुड के नॉनस्टॉप हिट्स आप कंटिन्यूसली सुनते चले जाते हैं. बातें जब हम कर ही रहे हैं अबाउट आर म्यूज़िक स्टेशंस, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ रोवा के बारे में, जहाँ चोडल के ज़रिए $7,000 के साथ हमने शुरुआत की थी और इन्हें बांटना शुरू किया, क्योंकि हम चाहते हैं हर रोज़ कोई कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज आप क्रैक करें और उसके बाद आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड करें $100 कैश जीतने के लिए. टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए भी आपको हमारा साथ देना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स ध्यान से सुनिएगा, फटाफट क्रैक कीजिएगा. एंड नॉट टू फॉरगेट अ चांस टू गो टू फीजी. जब रोवा पर है तो बता ही देती हूँ कि अगले घंटे पर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कोड, जिस कोड के ज़रिए हम का स्पेशल कोड आप बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे टू विन अ रिटर्न टिकट टू फीजी. अब वो क्या होगा बस अगले घंटे में आपको पता चलेगा और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने का मौका भी मिलेगा. वेलकम ऑन माई टाइम मेरे साथ कशिका के साथ 12 तक 10 से 12 आपके लिए मुमकिन हो जाता है, जहां पर कशिश फूड्स के सौजन्य से ये मुमकिन होता है. वेलकम ऑन दिस हम पवार विद मी.

0: Mother's Day Song, brought to you by
1: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. A must food. 100% authentic and pure as mother's love. And Malava Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
2: सो जब बात कर रहे हैं मदर्स डे के बारे में, ऑफ कोर्स दो ही दिन बचे हैं जहाँ पर माय टाइम में मैं आपकी एंट्री ले सकती हूँ. मेरे पास एक सिचुएशन है, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट यू कैन विन, $300, $200 एंड $100 रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज. अब ये आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपकी एंट्री ऐड कर सकती हूँ. मेरी आज की एक मूड स्विंग, जो मम का मूड स्विंग है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. मम एक चीज़ बहुत बढ़िया बनाती हैं, ठीक है, और आप कहते हैं भाई माँ जैसी ये चीज़ कभी बना ही नहीं सकता कोई. एक दिन मम्मी से वो जो चीज़ है ठीक नहीं बनी, ओके, और आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं बनी है, लेकिन उनको भी पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं बनी है, बट शी इज़ ट्राइंग टू यू नो नॉट शो हर एम्बैरेसमेंट, बट शी इज़ एक्चुअली अंदर से क्वाइट डिस्टर्ब की ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं बनी. टेबल पर जब ये परोसी गई तो अरे ये चाहे वो कढ़ी हो या राजमा हो या कोई चिकन मटन हो, आज वैसा नहीं बना जैसे आप पहले बनाते हो. आपने कभी इस तरह के कमेंट किए हैं अपने मम्मी के लिए? और अगर किए हैं तो उसके बाद मम का मूड क्या होता है? बस यही मुझे जानना है. इस गाने के ठीक बाद आई विल टेक योर एंट्री.

0: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: वैसे एक बात तो है कि न्यूज में कौन है, न्यूज में इस समय तो हमारी माँ है, क्योंकि ये माँ हमारे साथ हमारे दिलों में हमेशा रहती है। तो भाई ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी, डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ है और उसके बाद जब मम ने खाना परोसा तो कहीं आपके मुंह से, या एक्चुअली अगर देखा जाए तो किसी के भी मुंह से, यू नो, चाहे पापा हो या फिर कोई भी हो, उनके मुंह से निकल गया, अरे आज वो वैसा नहीं बना जैसे पहले बनता था या बना, तो कुछ ऐसे रिएक्शन, मम्मी का कोई मूड जो है उस समय खराब होता था कि क्या होता था, बस मुझे आपसे यही जानना है। 0800 004 866 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 0800 004 866 पर जब आप कॉल करेंगे, मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूंगी, जहां पर परसों ये ड्रॉ होगा विजय एंड पूजा के साथ, और पता चलेगा कि कौन विजेता हो रहे हैं फॉर सो मच कैश, यू नो, विच इज़ दैट 300, 200 and $100 कैश। तो देखते हैं कि अगर आपका नाम उसमें आता है कि नहीं, बट मेरी कोशिश है हमारे माय टाइम के जो लिसनर्स हैं आप ज़रूर कॉल कीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक के पेज पर भी ये कॉन्टेस्ट परसों ख़त्म हो जाएगी, जहां पर आप एक पर्सनलाइज वाउचर अपनी मम के लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को टैग कर सकते हैं और हमारी पोस्ट के नीचे आप उसे ऐड कर सकते हैं। चलो टाइम शुरू हो रहा है, जल्दी करो, फिर आप ये मत कहना कि मैंने आपको सुनहरा ये मौका नहीं दिया अपना, यू नो, प्यार जाहिर करने के लिए। ठीक है, चलो वी विल टेक आवर फर्स्ट कॉल। हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
2: वेरी गुड मॉर्निंग, राजन फ्रॉम दिस साइड।
1: जस्ट अ मिनट सर, मैं आपके डिटेल्स ले लेती हूँ। सागर नाम बताया आपने?
2: राजन, राजन, आर ए जे ए एन,
1: राजन। बोलिए राजन जी।
2: अभी तो खैर मम्मा नहीं है, हाँ जी। बड़ा हो गया तो मैं, तो जब छोटा रहा तब एक ही आती थी कि चिया चप्पल आएगी या सब्जी आएगी, देखो क्या पसंद है। जब भी बताते थे कि ये नहीं अच्छा नहीं है, मैंने ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं बना, तो फिर कहते थे यार चप्पल आएगी तो या फिर सब्जी आएगी, देख लो क्या खाना है।
1: चलो अच्छा, ये नखरा भी आपने देखा हुआ है। आपकी मम्मी का मूड होता था गुस्से वाला, है ना? ठीक है राजन, मैंने आपका नाम ऐड कर लिया इन द ड्रॉ, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये पहली बार आपने कॉल किया है ना?
2: नहीं, मेरी पहले जब ब्रेकफास्ट शो में होती है कभी कभी बात हो जाती है।
1: हाँ, तो मैं लकी हूँ आज आपने मुझे माय टाइम में मुझे फोन किया था, इस समय भी सुनते ही हैं आप, इसका मतलब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉल। हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है? हेलो,
3: हेलो,
1: हाय, किन से बात हो रही है?
3: मैं रविंदर बोल रही हूँ, कशिका जी। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग दविंदर, कैसे हो?
3: मैं ठीक हूँ।
1: हाँ जी
3: कशिका जी, जोन सा आपने बताया उस सिनेरियो में मेरी मम्मी तो कहेगी खुद बना लेना फिर।
1: अच्छा, ऐसा हो चुका है?
3: बहुत बार।
1: अच्छा। ओके, अच्छा मतलब पसंद नहीं आया तो मतलब मूड एकदम से चेंज हो जाता है उनका, है कि उन्हें तारीफ।
3: मम्मी ऐसा वैसा नहीं बना लास्ट टाइम जैसे बना था।
1: हाँ।
3: अच्छा, खुद बना लो।
1: गुड वन, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम ड्रॉ में डाल दिया मैंने। एफआर्स गुड मॉर्निंग, बताओ आपके साथ क्या हुआ है?
4: गुड मॉर्निंग, कैसे आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, बताइए।
4: वैसे बेसिकली मैं ऐसे ज्यादातर तो बोलता नहीं था, पर कभी कभी ऐसे मेरे शक्ल पे दिख पड़ता था मॉम को। तो मॉम सपोज टू से कि अगर मैं के क्या हुआ अच्छा नहीं बना, नहीं थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, नहीं नहीं ऐसे ही बना था लास्ट टाइम, मेरे तुझे बहुत पसंद आया था।
1: अच्छा,
4: और वैसे ही करते थे, और जो भी ग्रीन वेजिटेबल भी होते थे ना, तो वैसे दो एक ग्रीन वेजिटेबल होते जो सिमिलर काइंड दिखते, एक मेथी होती है और एक चौलाई कुछ एक होती है, वो दोनों सिमिलर दिखते ना।
1: अच्छा,
4: तो उनमें से मुझे एक बहुत ज्यादा पसंद थी, तो जब सेकंड वाली जब बनाते थे ना तो बोलते थे नया ये है वो जो तुझे पसंद थी, और जब नेक्स्ट टाइम दूसरी बनाते थे बोलते थे ये है वो जो तुझे पसंद है, और ऐसे बोलते खिला देते थे,
1: पलट जाती थी।
4: जी।
1: चलो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी, थैंक यू सो मच एफआर। अगले घंटे में वैसे आपका गाना हमने शॉर्टलिस्ट किया है तो हम वो प्ले करने वाले हैं
4: जी,
1: तो सुनते चले जाइएगा ध्यान से।
4: श्योर श्योर, थैंक यू,
1: बाय बाय।
4: Yeah, bye.
5: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
6: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
8: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
9: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
8: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
9: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tāmaki showroom. It's worth the visit.
8: Elite Bathroomware.
9: A reflection of you.
10: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cosy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
11: Did you know a simple clean of your heat pump filter could save you up to $50 a year on your energy bills? All it takes is a quick vacuum or a light wash every few months. Search EECA, that's EECA, Get Winter Ready.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
13: हाँ. अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
13: मिसेस सिंह.
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
5: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: तो मुझे आपको बताना है कि ये आपका ऑफिस शाउटआउट जो है, फटाफट 5599 पे मेरे साथ टेक्स्ट कर सकते हैं. प्लस आपकी कोई ड्रीम है जो अगर आप इंटरप्रेट करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मुझे आप कॉल कीजिए या 5599 पे बताइए कोई ऐसी ड्रीम जो आपको लगता है आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है. अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं. आपको बता देती हूँ, बहुत कम टिकट्स बची हैं फॉर द लवली शो ऑफ जावेद अली रफ़ी और मैं. ये एक कमाल के सिंगर हैं बॉलीवुड के, जो एक आपके लिए ट्रिब्यूट लेकर आ रहे हैं फॉर मोहम्मद रफ़ी साहब, और उसके साथ साथ वो अपने खुद के भी गाने गाने वाले हैं जावेद अली जी, और ये पहली बार न्यूजीलैंड में पधार रहे हैं. आइए इनको एक मिलके हम ऐसे वेलकम करें, क्योंकि इनके जितने शोज़ अभी तक हुए हैं सोल्ड आउट हो गए हैं. सो कुछ ही टिकट्स बची हैं, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया जल्दी जाइए staralliance.com के ज़रिए जाकर ये टिकट आप फटाफट खरीद लीजिए. और $59 ऑनवर्ड्स ये टिकट्स हैं. 8th of May यानी परसों एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, भूलिएगा मत. इनके गाने बहुत सोलफुल हैं. नाउ टाइम आ रहा है ऑफिस शाउटआउट का, तो अगर आप रेडी हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए फटाफट फटाफट आपको एक शाउटआउट दूंगी.
5: ऑफिस शाउटआउट.
13: ओके.
5: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: तो ऑफिस शाउटआउट में मेरे पास एक टेक्स्ट आया है दैट

0: अनगुद।
1: थोड़ा तो हॉल बना दे।
2: वैसे माहौल बनाने के लिए आपके लिए हमारी सुपर सिटी में पधार रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या लेकर देवेनाथ और नितिन नीलेश, और इनका स्वागत कीजिएगा क्योंकि ये परसों आपके लिए शाम को परफॉर्म करने वाले मैनेकाओ चैरिटेबल क्लब और भक्ति सत्संग बॉयज। ये $20 की टिकट है एंड साथ में शाम 7 बजे से वैदिक सेंटर में ये अपना रंग जमाने वाले हैं, तो जाइए फटाफट जाके टिकट आप खरीद सकते हैं। अगले सैटरडे के दिन होने वाला है 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, जाओ आप पहुंच सकते हैं मलायोला कम्युनिटी सेंटर में मांगरी में, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री एंट्री है। 4:30 से 8:30 बजे तक ये इवेंट होने वाला है, और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिजी गिरमिट न्यूजीलैंड के आप फाउंडेशन के न्यूजीलैंड के पेज पर जा सकते हैं। अगर आप वॉलंटियर भी करना चाहते हैं वो भी आपके लिए मुमकिन हो जाएगा।

0: Factor.
1: ऐसा कितनी बार होता है ना कि हम आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे सिटीजन्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नए सिटीजनशिप का टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम लेट 2027. जो लोग अप्लाई करेंगे फॉर न्यूजीलैंड सिटीजनशिप बाय ग्रांट, तो ये ग्रांट जो है उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, विच विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द बिल ऑफ राइट्स एक्ट, certain criminal offences, voting rights, democratic principles and the structure of government and travel and to and fro from New Zealand. Applicants ko 75% jo questions hain unke correct answers dene padenge in order to pass the test. ये मल्टी चॉइस भी होने वाली है. सो न्यूजीलैंड सिटीजनशिप बाय ग्रांट जो है इसमें जिनका रेजिडेंट वीज़ा है वो आर होल्डिंग इट फॉर 5 years, बेसिक इंग्लिश, गुड कैरेक्टर एंड बीइंग प्रेजेंट इन द कंट्री फॉर मोर देन फॉर 240 days पर ईयर या 1350 days इन टोटल होने चाहिए. तो जो अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए बाय ग्रांट, करेंटली उनका एक साइन किया जा रहा है डिक्लेरेशन स्टेटिंग कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेजेस समझ सकते हैं एज अ न्यूजीलैंड सिटीजन. लेकिन अब ये जो टेस्ट अनाउंस हो रहा है इससे ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आएगी दैट दे अंडरस्टैंड जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रिविलेजेस, और इससे क्या होगा कि एक स्ट्रेंथनिंग होगी टू बिकम अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड. आई डो नॉट नो, ये टेस्ट इज गोइंग टू बी क्वाइट ईजी, जहाँ काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगे टिक मार्क करने के लिए और 75% आपको पास करना पड़ेगा. मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल होने वाला है, बट जितने लोग अप्लाई करेंगे प्रॉबेबली उनके लिए 2027 ऑनवर्ड्स लेट ये टेस्ट जो है कंपल्सरी हो जाएगा.
2: बेटा मेरा फोन किधर है?
3: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है.
4: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? फ्रॉम ब्रोकन फ्लावर वाज़ेस टू लौकी की सब्जी एक्सपेरिमेंट्स, गेस कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश. हम पेश करेंगे क्वर्की सिनेरियोस ऑन एयर और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी. गेस एंड एंटर द लकी ड्रॉ टू विन बिग कैश प्राइजेस. तो तैयार हो जाइए फॉर द अल्टीमेट गेम शो मम्स मूड स्विंग्स ऑन हम, ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, TFSL, अम्मा'स फूड एंड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
5: डेनी डिडंट थिंक ही नीडेड अ DVS सिस्टम.
6: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
5: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
6: Nah, only one room. It was just too noisy.
5: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: Scammers want you to go fast, because when you rush, you can make mistakes. Like signing up for work email with a love you. Jumping into a stranger's car, thinking it's your Uber.
8: Oh, wrong one.
7: Choosing a tattoo.
9: I think it's a dragon.
7: Or transferring funds to a new bank account you've just received in a text. Mm-hmm. Security features in the BNZ app help to slow you down when scammers want you to speed up. Bank of New Zealand. Let's find a way.
10: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
11: Dash! Savior of the lunchbox!
10: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
11: Dash!
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
15: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटो C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटो ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
16: माई टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर, लिव बेटर. ड्रीम डायरी.
1: सपने सबको आते हैं, बट मेरी कल विजय भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा आपको कितने सपने आते हैं, कहते भाई मुझे कोई सपना नहीं आता, शायद बहुत डीप स्लीप में सोते हैं और उसके बाद सीधे उठते होंगे, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि रात को लेट नाइट तक वो काम भी करते हैं, सुबह सुबह आपके पास आ भी जाते हैं। लेकिन एक सपना ऐसा है जब कभी आप को लगता है यू आर ड्रीमिंग ऑफ समवन, है ना, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप ड्रीम करना शुरू करते हैं। अब साइंटिफिकली यू नो इट डज नॉट रियली मीन कि वो आप उनके बारे में सोच रहे हैं या कुछ, ये कोई एक मिथ है कि टेलीपैथिक सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी ड्रीम्स जो हैं ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स प्रोसेस हो रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, कोई मेमोरी है ऐसी, या फिर कोई फीलिंग है जहाँ आप बहुत दिनों से किसी से मिले नहीं हैं। जो लोग इस तरह से लोग मोस्टली ड्रीम करते हैं किसी के बारे में कि भाई सो एंड सो पर्सन है, मैंने उसके बारे में सपना देखा या वो मैंने उसे सपना देखा, तो जनरली ये होता है कि आपका ब्रेन इन बातों को बताता रहता है, कोई और कोई इनपुट नहीं होता इसमें। इससे एक चीज़ सिंबलाइज ज़रूर होती है कि करेंटली आपका माइंड क्या प्रोसेस कर रहा है फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन, रियलिटी में क्या हो रहा है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ये थॉट्स आपके जो होते हैं ना कई बार माइंड में रह जाते हैं कि सबकॉन्शियसली आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, दिन में, शाम में, रात में, आप कभी कभी कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो या मोस्टली व्हाट हैपेंस इज दैट यही लोग आपको सपने में आके याद दिलाते हैं कि भाई मैं यहाँ हूँ या कुछ हूँ, तो वो आपके माइंड में प्ले करते करते वो आ ही जाते हैं, ठीक है ना।

थ्रोबैक मैं आपके लिए एक ऐसा गाना लेकर आ रही हूँ जहाँ पर एक बेटे ने एक फादर को, जो अच्छा मैं नाम ही ले देती हूँ, यश चोपड़ा जी को, एक्चुअली आदित्य चोपड़ा ने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक काम करो, मैं तो नहीं ये करूँगा, तुम ही इसे डायरेक्ट कर लो. काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स के बाद एक फाइनली राज और सिमरन की वो कहानी बिल्कुल अमर हो गई और अब वो गाने भी और वो मूवी भी, वाओ.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
6: Now's the time to send Mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make Mum's Day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
7: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
0: हम टाइम चेक, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Police have referred reports of an explosion in Auckland's Long Bay to the Defence Force. RNZ News reports an unidentified canister has washed up on the beach. Fire and Emergency says they believe it's likely to be a marine marker. More help is on the way for young people facing mental health crises in Northland. The government is investing $1.7 million into a new youth service, along with additional suicide prevention roles for the region. Mental Health Minister Matt Ducey says it's about stopping vulnerable young people from falling through the cracks. Ambulance staff are voicing some concern over plans to cut the cleaning budget. Employees claim Hatohone St John wants to reduce its commercial cleaning contracts from July. The Ambulance Association's Mark Quinn says it's a blow for some of the busiest stations in the country.
12: The trouble is, like anywhere, is just keeping on top of it and maintaining an operational station to a state of cleanliness that's acceptable.
11: And overseas, the US Secretary of State warns against normalising Iran's control on the Strait of Hormuz. Marco Rubio says it makes it easy for other countries to follow suit.
13: You have to coordinate with Iran, you have to pay them a toll in order to go through the Straits of Hormuz. Not only is that unacceptable in the Straits, you're creating a precedent that could be repeated in multiple other places around the world.
11: In sport, English football giants Arsenal have beaten Atletico Madrid 1-0 today and 2-1 overall to reach the Champions League final for the first time in two decades. Manager Mikel Arteta stoked to do it in front of their fans in London.
14: To live this kind of moment with our people, our players, everybody at the club, it's just an incredible feeling.
11: They'll face either PSG or Bayern in the final, who clash tomorrow. And staying with football, the All Whites have locked in another World Cup warm-up match. They'll take on Haiti in Florida on June 3rd. Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
2: सूचित किया जाता है कि राकी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने, राकी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0219326666 पर आप संपर्क कर सकते हैं। याला द्रो तावुआ के स्वर्गीय मुनसामी के पुत्र, ऑकलैंड की शारदा मणि के पति रोनील कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता मानुरीवा के श्री कृष्णा हेरी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार फ्राइडे के दिन दोपहर 1 बजे मेनका मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0210296572 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, यालाद्रो तावुआ स्वर्गीय स्वर्गीय मुनसामी के पुत्र, ऑकलैंड की शारदा मणि के पति रोनील कृष्णा पुजारी और मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पति मानुरीवा के श्री कृष्ण हेरी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार फ्राइडे के दिन दोपहर 1 बजे मेनका मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0210296578 पर आप संपर्क करें।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 21, overnight temperature of 15. आज का forecast बताया जा रहा है partly cloudy day रहेगा. थोड़े ब्रिज के हाबर ब्रिज के उस पार शायद बारिश पड़ सकती है. It feels like 20 degrees right now. 5:32 पर sunset बताया गया है.

वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में 11:05 होने वाले हैं। आपका साथ निभाने के लिए कशिश फूड्स के सौजन्य से मैं काशिका पहुंच चुकी हूं। एक्चुअली 10 बजे से पहुंची हूं और 12 बजे तक आपका साथ निभाने वाली हूं। उसके बाद यहां पे कीर्तन आपका साथ निभाएंगे। लेकिन इस घंटे पर मेरे पास जो मे का एनजेड म्यूजिक मंथ है उसमें हम सेलिब्रेट करेंगे एक आर्टिस्ट को, लोकल आर्टिस्ट को, और उसके साथ साथ मैं आपको मौका दूंगी जहां पर आप शायद इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहें। राहत फतेह अली खान साहब आ रहे हैं और इसके अलावा आपके लिए मुनव्वर फारूकी भी आ रहे हैं, एंड इनको इनके पास जीतने का मौका मिलेगा। साथ में आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ 6 वर्ड स्टोरी और रेस्क्यू मी में आप देखते हैं रिसाइकल में आज क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन बस थोड़ी देर बाद हमारी सुपर सिटी में लैंड होने वाले हैं नन अदर देन जावेद अली। बॉलीवुड के ये कमाल के कलाकार हैं जो पहुंच रहे हैं अपने अमेजिंग गानों को आपके सामने गाने के लिए, और ये होने वाला है परसों विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। $59 की ही खाली टिकट है। आप starallianceentertainment.com के जरिए जाकर टिकट फटाफट खरीद सकते हैं। लास्ट फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट, सो डेफिनेटली पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना पीना का स्टॉल भी वहां पर होने वाला है, और ये एक ट्रिब्यूट देने वाले हैं रफ़ी साहब को। तो भाई अगर आप इस स्पेक्टेकुलर से शो को देखना चाहते हैं, रूबरू सामने जावेद अली जी के उनके पर्सनल फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो बॉलीवुड में उन्होंने गाए हैं, तो जल्दी जाइए starallianceentertainment.com के जरिए ये टिकट्स खरीद सकते हैं, जो इसे प्रेजेंट कर रहे हैं पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज भी। बचाओ

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: मई का महीना जो है वो न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ है और जहां हम लोकल टैलेंट को ज़रूर प्रमोट करते हैं, और आपके लिए मैं एक गाना जब जो लेकर आने वाली हूं वो है ऑफ एफाज ललवानी, और ये आपके एफाज ललवानी राइट ओके। और ये पिछले 3 साल से गाना गाते चले जा रहे हैं, कई बार स्टेज पे भी इन्होंने परफॉर्म की जो मैंने खुद भी देखा है, और इन्होंने अपना पहला कवर तैयार किया, इन्होंने घर पर इसे रिकॉर्ड किया विद द बेसिक सॉफ्टवेयर, कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं था, लेकिन फॉर हिम इट्स अ माइलस्टोन जो उन्होंने शेयर किया है। और इस समय ये गाना मैं आपके लिए अब शेयर करने वाली हूँ। आपको ये गाना, ये ट्रैक कैसा लगता है बस आपने बताना है, और एफाज को अगर आप टॉप 3 में देखना चाहते हैं तो आप MM लिखे और उसके बाद एफाज लिखे, एंड आप जो हम पोस्ट करने वाले हैं वहाँ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए सोशल्स पर, और देखते हैं कि विनर की इंगेजमेंट किस तरह से होती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम विनर को डिसाइड करने वाले हैं। गाना सुनिए और आप खुद इंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आप खुद गा रहे हैं, खुद गाते हैं, तो दिस इज़ द मोमेंट आप अपना ट्रैक अपने बायो के साथ buzz@hamfm.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं।
3: Celebrating NZ Music Month.
4: Back your backyard beats.

0: वैसे ऐसे कितनी बार होता है ना दैट हम यहाँ लौट कर आए हैं, जब जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पे आके कई लोगों को एस्थमा होने लग जाता है. अब ये पोलन की वजह से भी हो सकता है. एस्थमा ऑल्सो इज़ वन थिंग जो कि एक कुछ लोगों को स्लोली स्लोली बढ़ के बढ़ना लगता है. डिपेंड्स ऑन द एयर कितना पोल्यूशन है, या घर में भी कितना पोल्यूशन है. आउटडोर जो एयर पोल्यूशन जो होता है, इट इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, खासतौर पर यंग इंडिविजुअल्स में. बट जो हमारे घर के अंदर जो हवा है एक्चुअली, उसे हम किस तरह से ठीक ठाक कर सकते हैं, कई लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जो इंडोर हमारे जो एलर्जेंस होते हैं हमारे लंग्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज जो आगे चल के ब्रीड होता है एस्थमा. डस्ट माइट्स कहते हैं कि मैट्रेसेस, पिलोज, कारपेट्स में होते हैं, जिन पर डेड स्किन सेल्स ज़रूर गिर जाते हैं. वो इरीटेशन जो है हमारी एयरवेज के थ्रू चली जाती है. और ये पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, हमारी लंग में किस तरह घुस जाते हैं हमें नहीं मालूम पड़ता. कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं वो कॉफ करने लग जाते हैं, उनको टाइटनेस होने लग जाती है स्किन में. और कई बार ऐसा होता है, एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है जो बहुत अच्छा काम करती है, अपने बेडिंग जो अपने लिनन होते हैं उनको हॉट वाटर और कुछ एलर्जन प्रूफ चीज़ें जैसे यू नो डिसइंफेक्टेंट वगैरह डाल के धोएं तो अच्छा रहता है, और धूप में सुखाएं तो भी अच्छा रहता है. पेट्स हमें कंफर्ट ज़रूर लेकर आते रहे हैं, लेकिन इनकी स्किन फ्लेक करती है, और इनके जो फर होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो ट्रिगर करते हैं एस्थमा. और कभी कभी हमारे क्लोथ्स में, वॉल्स में, फर्नीचर में, कारपेट्स पर रह जाता है महीनों. और फिर कभी हमें जब एक माइल्ड ब्रेथलेसनेस होती है अपने पेट्स की वजह से, ये ट्रिगर भी कर सकता है. देर आर सो मैनी रीजन्स विच कैन बी देर. कभी कभी धूप, अगरबत्ती या फिर मच्छर की जो कॉइल्स मिलती हैं वो भी. लॉन्ड्री का जो डिटर्जेंट होता है, कई बार आप कपड़े अच्छी तरह नहीं धो पाते हैं, वो जो कपड़ों का एक रेसिड्यू होता है ना वो इरिटेट करने लग जाता है. मोल्ड और जो फंगल जो चीज़ें घर के या बाथरूम के वहाँ आसपास होता है वो भी आपके पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स में रह जाता है. अब ये इजीली आपके पूरे घर में ट्रैवल करता है, और दिस कैन प्रॉब्ली कॉज अ बिग प्रॉब्लम. फ्रेग्रेंसेस, केमिकल्स जो होते हैं ये, जैसे कि क्लीनिंग के स्प्रेज वगैरह होते हैं, फ्रेश पेंट होता है, कुछ लोगों को उससे फर्क पड़ सकता है. सो बी वेरी वेरी माइंडफुल जब आप ये कुछ कर रहे होते हैं.
1: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. पर ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.

0: Brooklyn तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
1: Hey, Mum.
2: Hey, sweetheart, how are you?
1: Good. Hey, could I borrow 10K?
2: This is a new phone. Who dis?
3: Well, that's awkward. But borrowing money doesn't have to be with Nectar Money. Using their fast and super simple online process, Nectar Money can lend up to 50K with 7-minute quotes and same-day funding. C's, T's, fees and credit criteria apply. Get lending without the awkward.
4: Nectar Money. Lending sweeter.
5: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz
9: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
10: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
11: All right, we all know legendary singer Rahat Fateh Ali Khan sahab pahunch rahe hain hamari super city mein. To bhi main aapke liye gana play karne wali hoon aur is gaane ko aapko complete karna hai. Theek hai, main aapka naam draw mein add karne wali hoon aur aap ho sakta hai double pass bhi jeet jaye. RFK aapko likhna hai gaane ke pure ek line ka jo jaise maine kuch bola usko aapko pura जैसे कंप्लीट करना है थोड़ा सा और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि आपको गाना पता है कौन सा है या पूरा गाने के उनके वर्ड्स आपको पता है वो आपको लिखना है अपना नाम लिखना है हम तक पहुंचा देना है सो इसके बाद सिक्स वर्ड स्टोरी भी आ रही है थैंक यू सो मच एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ मैं जब आपके लिए ये प्ले करने वाली हूँ आप इसे कंप्लीट कीजिए 5599 पे RFK आप लिखे हम तक पहुंचा दीजिए याद रहे ये जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव साथ साथ ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस शहजादा प्रोडक्शंस ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को इनको लेकर आ रहे हैं और ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल इवनिंग होने वाली है तो इसके पास जीतने के लिए तैयार हो जाइए गाना कंप्लीट कीजिए आप

0: है क्या कि आप लोग लिखते नहीं है कि आप लोग कौन हैं? अच्छा, मैंने कहीं पे अभी ये टेक्स्ट था, हाँ, फोकस ऑन कन्वेइंग पावरफुल इमोशनल मोमेंट। अच्छा, ओके, बहुत हैवी है ये मेरे लिए भी, बट इट्स ऑल राइट, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू ट्राइंग टू से. फोकस ऑन कन्वेइंग पावरफुल इमोशनल मोमेंट एंड आपके लास्ट फोर डिजिट्स हैं 1294. थैंक यू सो मच फॉर दिस.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

मैं अगर सिक्स वर्ड स्टोरी बोलती हूँ ना कि बताओ, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं गाना बजाती हूँ, कहती हूँ इसे कंप्लीट करो, तो देखो धड़ाधड़ टेक्स्ट आने लग जाते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट आया है आपका 9432 9830 3151 3159। आप एश वेलिंगटन से सुन रहे हैं, और साथ साथ 2299 आपने भी, मितेश जी आपने भी टेक्स्ट किया है, विशाल आपने भी टेक्स्ट किया है, एफाज आपने भी टेक्स्ट किया है, जिन्होंने ये टेक्स्ट किया है ना 9830 आपने अपना नाम नहीं लिखा। एंड रोनल्ड थैंक यू सो मच, आपने अपना नाम लिखकर हम तक पहुंचाया, आप सबका नाम ड्रॉ में चला गया।

सरबजोत कौर, मैंने आपका नाम ऐड कर दिया है एंड नेव, यस ये कोड जो आ रहा है फ्लाई वे फ्रेंजी का ठीक इस गाने के बाद. स्टे ट्यून्ड एंड कीप हमिंग.

0: chacun.
1: Wow. Adbhut.
2: Achha, adbhut baat ye hai ki Sid, I can say that you're a champion in six-word story. I just love it. 2299 पर आपका last digits है. आपने मुझे six word की story बताई है. Important to learn power of now. Important to learn power of now. I think it speaks volumes about it all. I can only say that. Fantastic. I just loved it. मतलब इसके मायने कितने ज़्यादा बड़े हैं ये भी आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, as promised, आपने रिक्वेस्ट किया है नेव और मेरे पास ये स्लॉट अभी खुल चुका है जहाँ पर मुझे आपको बताना है इसके बारे में. तो द कोड वर्ड इज यूटो. आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड इट राइट. यूटो इन फिजियन लैंग्वेज जो है इसे कहते हैं ब्रेड फ्रूट या एक स्टेपल स्टार्ची फूड जो कि कुक करा जाता है, बॉयल किया जाता है या बेक या फ्राई किया जाता है. इट्स अ वेरी पॉपुलर इन्ग्रीडियंट यूटो, UTO. तो आपके लिए आज का कोड वर्ड है UTO. यूटो. एंड जल्दी जाइए फटाफट आप रजिस्टर कीजिए. हो सकता है आप फ्लाईवे कर जाएं और फिजी का टिकट आप ही चीज जाएं. तो ये एक घंटे तक आपके लिए कोड बिल्कुल वैलिड है और उसके बाद लंच बॉक्स में एक कोड आपके साथ नया कोड शेयर किया जाएगा. तो फॉर 1 आवर प्लीज़ गो अहेड एंड रजिस्टर.
3: Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
4: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates, and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
5: Right now at Woolworths, collect double bonus points on every $50 shop. Plus, boost your budget and collect 10 times points on some of your favourite brands. Boost in the app, shop in store or online, and scan your everyday rewards card at checkout before Sunday 10th of May.

तो रेस्क्यू मी रिसाइकल में की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास यू नो कल आप मुझे कॉल कर रहे थे और आपने कहा कि ऐसा क्या हो सकता है जो हम बच्चों के लिए सोच सकते हैं. अच्छा देखो, घर में कार्टन्स आते हैं, कार्डबोर्ड्स आते हैं, राइट, आप इनको फ्लैट कर सकते हैं और उसके बाद आप डेफिनेटली यू नो उनके आप छोटे छोटे पोर्शंस या पार्टीशंस भी बना सकते हैं इसको, एंड यू कैन एक्चुअली सेव स्पेस एज वेल, कुछ सिंबल्स बना के कि हाँ इसका सो एंड सो प्ले एरिया है, वहाँ पे आप उससे पेंट करवा सकते हैं किसी से, कुछ यू नो बच्चों से कि हाँ ठीक है चलो इस जगह को पेंट कर दो और इस जगह में आप ये ऐड कर दो, तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है. अच्छा कोड मैंने शेयर कर दिया, चलो इट्स प्रोनाउंसड ऊ टू सॉरी माई बैड 3631 माई अपॉलॉजीज, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. ऊ टू, आई होप आई सेड इट राइट, बट स्पेलिंग इसकी UTO है ना, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई थी, UTO है मगर हम ऊटू बोलेंगे तो लोग इसको WOTO लिखेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन मुझे हो गया था. थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी. 3631 इट इज़ प्रोनाउंसड एज ऊटू बट इट इज़ नहीं ऊटू करेक्ट एंड इट इज़ UTO ऊटू. ओके ओके अच्छा एक चीज़ जो मुझे पता चली, न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स ने कंफर्म किया एक मरीन मार्कर फ्लेयर जो हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था आज सुबह ऑकलैंड के नॉर्थ शोर में, ठीक है, और ये जो एक्सप्लोजन हुआ था एक रेजिडेंट थे बाउंटी रोड पे लॉन्ग बे में, उन्होंने बताया कि एक बहुत ही बड़ा सा बूम करके आवाज़ आई करीब 9:15 के करीब. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने बताया, ये आइटम जो इन्वेस्टिगेट किया गया उससे पता चला कि इट वाज अ मरीन मार्कर विच फ्लेयर्ड अप और उसकी वजह से यू नो इट वाज प्रीटी सेफ सो डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड फायर इमरजेंसी जो है उन्हें कॉन्टैक्ट किया भी गया लेकिन कोई भी पोटेंशली डेंजरस आइटम वहाँ पर नहीं पाया गया. सो Yeah, we are all safe over there, so do not worry about it.

Amrit Prasad ji, thank you so much. Uto, it's called, pronounced as Uto. So I have corrected myself. So jitne bhi log Fiji se hain, unhe to definitely Uto ka matlab pata hi hai. But it is spelt as U-T-O. Uto. I hope I've said it right now. My apologies agar mere pronunciation, kyunki नहीं हो सकता कई बार, क्या कैन नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो इसलिए मैंने अपॉलॉजीज मांग ली. अच्छा, याद है 23rd ऑफ मई के दिन आ रहे हैं ब्रूस मेसन सेंटर में धंधो द लाइव शो लेकर मुनव्वर फारूकी. एक बहुत बड़ी बोल्ड कॉमेडी है ये, तो हमारे फेसबुक के पेज पे आ जाएं, टैग कीजिए उन्हें जिनको आप लगता है अपने साथ शो में लेके जाना चाहते हैं टू विन अ डबल पास. ठीक है, ये ड्रॉ 11th मई के दिन होने वाला है, तो जल्दी जाइए फटाफट. आप अपना नाम जो भी है जिसके साथ आप जाइए रजिस्टर कीजिए. लेकिन टिकट खरीदनी है तो ticketmaster.co.nz के जरिए जाकर आप ये टिकट भी खरीद सकते हैं. लेकिन जाने का वक्त इस समय मेरा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने का वक्त आ रहा है ऑफ केतन. तो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे मेरी मुलाकात होती है. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ. आशा करती हूँ आपके लिए हम्पवार और भी ज़ोरदार, दमदार और शानदार बना रहे. डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड आपका भला हो, बस यही सबसे कहना चाहती हूँ. अपना ख्याल रखिएगा, अपने जितने आसपास के लोग हैं उनका भी आप ज़रूर ये ख्याल रखिएगा. चलो चलते हैं.